يوجهون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं, मेरी मुश्किल नू हल करी आका तेरे वास्ते कोई महाल नहीं। मैं तर पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं, मेरी मुश्किल नू हल करी आका तेरे वास्ते कोई महाल नहीं। मैं तर पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं। ओ मेरी अकल भी नहीं मेरी,

रूप भी नहीं किस गल दिया सोनिया मान करा मेरा इश्क भी जामी वांगा नहीं मेरा होश भी वांगे बिलाल नहीं मैं तड़पां दूर मदीने से इत्थे बचण दा कोई हाल नहीं मेरी मुश्किल नूं हल करियां का तेरे वास्ते कोई महाल नहीं मैं तड़पां दूर मदीने से इत्थे बचण दा कोई हाल नहीं ए अवेसी अरीजां करें दाई नित नातियां तेरियां पढ़दाई खुश्ती फरीद खुश्ती फरीद ते शाद वल

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हाँ, हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पंजाबी हो, पख्तून हो, सिंधी हो, बलोची हो, चाहे कोई भी जबान बोलने वाला हो, सबके सब यक जबान होकर कहते हैं मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। जमीन

रोशनी का आलम था। अरे नहीं नहीं, आपके तो नक्शे कदम रोशनी के मीनार बन गए। मुल्क अरब जिंदा हो गया, अरब के बाशिंदे जिंदा हो गए। अरब गल्लावालों की गरीब कौन थे, चटिया मैदानों में फिरा करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, छोटी छोटी बातों पर बरसों तलक लड़ा करते थे। किसी को इनका ख्याल भी ना आता था, कोई इनके मुतालिक सोचता भी ना था। इस कौम में एक उलूल अज़म पैगंबर मबूस हुआ और एक ऐसी किताब आया, एक ऐसा नुस्खा कीमिया साथ लाया, जिस पर वो दिलो जान से ईमान ले आए, जिस पर वो दिलो जान से कुर्बान हो गए। फिर क्या हुआ, उसका सारे आलम में चर्चा होने लगा, उसके गीत गाए जाने लगे। जिस कौम को कोई जानता ना था उसको सब जानने लगे, जिस कौम को कोई पहचानता ना था उसको सब पहचानने लगे। एक और सदी के अंदर अंदर अरब के एक तरफ हंगामा था और दूसरी तरफ दहली के अंदर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। इस्लाम की अजमत और इस्लाम की रोशनी और सैदराज से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर चमकती रही। वो एक चिंगारी रेगिस्तान की जुल्मत कदे में गिर पड़ी और वो बारूद बनकर फट गई और अन्नाता से लेकर दहली तक की फजाओं को रोशन कर गई, पैगाम मुहम्मदी आम कर गई। अरे मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ, क्या मेरे हुजूर ने सनत काम की है, क्या मेरे हुजूर ने शहर आबाद किए है? अरे नहीं नहीं, आपने तो दिल आबाद किए है और दिल क्या आबाद हुए, सारा जहाज आबाद हो गया। जहाँ में सवेरा किया है नबी ने, उजाला उजाला किया है नबी ने, कबीलों में बरसों लड़ाई

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आमना हुरमत से बरपास से ईरान सा चक्रन बाजू जंगबंदी बरकरार आए ईरान सा गाली जारी आए माय तो कहम पे नी थी सके तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आए त अमेरिका जा टे जंगी बेड़ा कामयाबी सा आमना हुरमत पार करे बया अमेरिकी चाहन ते हमला पड़ के बया पर उनन के को भी नुकसान न पे तो हमले आवर ईरानी नंडे बेडन के तबाह के बियो ईरान नॉर्मल मुल्क न आए ईरान जी क्यादत जुनून जे हथ में आए जिनके एटमी हथियार इस्तेमाल करने जो मौको मिले हाँ त हमले में देर न कन हाँ ट्रंप जो एक भेरो बीहर वजीर आजम शहबाज शरीफ आई फील्ड मार्शल आसिम जीवा खां सदर ट्रंप जो है तो पाकिस्तानी क्यादत के चवण से अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम से अमलदार मंत्रो

अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते जंगबंदी नुमाइंदे जे भञकड़ी जा इल्ज़ाम। अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ में ॿ ईरानी सामूंडी जहाज़ तबाह करे छॾिया। ईरानी ॿेटनि ते बि शदीद बमबारी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मूजिबि अमरीकी फ़ौज फुजरा ऐं जासम में ईरानी बहरी खे निशानो बणायो ऐं खुमेर ऐं सरक कुसम ऐं बंदर अब्बास गाह ते बंदरगाह ते हमला कया। ख़ातमुल अंबिया फोर्स जा बि कार्रवाई कंदे चा ॿारहवें जो अबनाए हुर्मुज़ जे ॾखण में अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणायो। सेंटकॉम जो चवणु आहे त ईरान नंढनि ॿिन्हिनि ते हमिलो कयो। जवाबी कार्रवाई तौर ते उन्हनि हंधनि खे निशानो बणायो जितां हमिलो कयो वियो। अमरीकी फ़ौजी असासनि खे को बि नुक़सानु नाहे पए थो। उहा मुख़्तसिर कार्रवाई हुई जेका मुकमल थी वई आहे। उन सां सीज़ फायर मुआदे ते फ़र्क़ु न पवंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जे सुप्रीम लीडर मुश्तफ़ा ख़ामेनेई सां मुलाक़ात। मसूद पज़ेशकियान चयो त आयतुल्लाह मुश्तफ़ा ख़ामेनेई सां मुलाक़ात एतमाद, आजिज़ी ऐं पुरख़लूस माहौल में थी। आला तरीन अथार्टी जी आजिज़ी ऐं अख़लाक़ी वर्ताउ मुल्क जे इंतज़ामी मिसाल लाइ आहे। ईरान ते हमले खां पोइ दुश्मन जो ख़्यालु हो त माण्हू रोडनि ते अची वेंदा। दुश्मन उन करे सिक्योरिटी ऐं फ़ौजी मर्कज़नि खे निशानो बणायो। दुश्मन ईरान खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। मुश्तफ़ा ख़ामेनेई पंहिंजे हिकु बयान में चयो आहे त एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न थींदियूं। अबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल बि ईरान वटि ई रहणु घुरिजे। गैर मुल्की फ़ौज अमरीकी हुजे या यूरोपी खिते मां निकिरी वञे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां फ़ोन ते राब्तो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई मूजिबि ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि खे जे हाणोकी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। इस्तक़ाम बरक़रार रखणु ऐं शिकतान घटाइण लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी वारे अमल जारी रखण ते ज़ोर ॾिनो।

0: भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ दहशतगर्द तंज़ीमुन खे फंडिंग करे रहियो आहे। भारत सां मौजूदा शिकताण कंहिं बि वक़्तु वधीक तकरार जो सबबु बणिजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो फ्रांसी टी वी खे इंटरव्यू। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त अब्दुल हुर्मुज वारे मसइले जो को बि फ़ौजी हल न आहे। ईरान अमरीका जंग ॿीहर शुरू थी त हुन जा असर महदूद न हूंदा। समूरी दुनिया खे हिन तकरार जा नतीजा भोगणा पवंदा।
1: जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायदे आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने। वी हैव री एस्टेब्लिश, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस री एस्टेब्लिश की मिनटों में की। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के आवाम के सामने खड़े हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कराया था?
0: अल्लाह जे फजल सा कवारी जंग में पान का वड़े दुश्मन के हर महाज से बरतनाक शिकस्त दिनी। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी जो हर कीमत से दिफा क्यों भी दो। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आए था पाकिस्तान ए फील्ड मार्शल डी रात भारत के ख्वाब में इंदा है। बालियारन कश्मीर भारत जो हिस्सों न पर आलमी सतह से मंजिल तकरारी इलाको है। पाकिस्तान में थींद दहशतगर्दी में भारत मुलवस है। पाक फौज पहरी भी तैयार हुई, हाने भी तैयार है। ये सिंदूर का बाहर छो ना निकर, सिंदूर तो औरतों के लगे वो है। कें आजमायणो है तो तैयार आयो, कंजो पी भी पाकिस्तान जो कुछ बिगाड़े न तो सके। डीजी एस पी आर पारा 14 अगस्त से फौजी परेड जो ऐलान। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है 14 अगस्त से ताकत जो नंढो हिस्सो आवाम की ॾेखारे वेठो। असां रियासत पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज आहियूं, कंहिं बि सियासी सोच जी नुमाइंदगी नथा कयूं। डी जी एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाक फ़ौज एलीट जी न पर ग़रीब जी फ़ौज आहे। सिंतास मुआदे जी कंहिंखे बि भंजकड़ी करणु न ॾींदासीं। 6 दरियानि ते सिर्फ़ु पाकिस्तान जो हक़ आहे।

है। कैसे? इसलिए कि अल्लाह ताला सबको उनके आमाल का बदला दे। दुनिया में तो ये मुमकिन ही नहीं कि एक अच्छे इंसान को उसकी अच्छाई का पूरा बदला मिले और एक बुरे इंसान को उसकी बुराई का पूरा बदला मिल जाए। जैसे एक शख्स ने 100 बच्चों को कत्ल किया और जब उसको कैद किया गया तो उसने खुदकुशी कर ली। अब खुद तो एक था, लेकिन उन सब का बदला एक से तो नहीं चुकाया जा सकता। एक शख्स एक के बदले में ही खत्म हो सकता है ना, सबके बदले में तो नहीं। तो फिर कोई एक जगह हो कि जहां इंसान को पूरे का पूरा बदला दिया जा सके। इसी तरह एक इंसान 10 लोगों के साथ भला सलूक करता है, अब वो 10 लोग अगर उसको जवाब देना चाहे तो बदले में तो एक ही जवाब बनता है एक तरह से। तो कोई दिन ऐसा हो कि जहां ये सब कुछ मुमकिन हो, इसलिए अल्लाह ने कयामत का दिन रखा। और फिर बसा औकात इंसान अच्छा कर जाता है, दुनिया में उसको कुछ भी नहीं मिलता, खुद चला जाता है, लोग उसके किए से फायदा उठाते रहते हैं। लिहाजा कयामत का दिन हो कि जब उसको नस्ल दर नस्ल फायदा पहुंचाने का बदला मिल सके। तो गोया अल्लाह ताला की रहमत का इजहार है कयामत का आना, कि जब बुरा करने वालों को उनकी बुराई का बदला मिलेगा और अच्छा करने वालों को उनकी अच्छाई का सिला। लेकिन जो लोग अपने आप को खसारे में डाले हुए हैं, वो नहीं मानते, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वलहू, और उसी के लिए है, मा सकन फिल लैली व नहार, जो कुछ ठहरा हुआ है रात में और दिन में। सकना का ताल्लुक लैल से है, जो कुछ रात के वक्त ठहरा हुआ है। रात होती है तो ऐसा लगता है ना हर चीज ठहर गई, खामोशी हो गई, परिंदे चरिंदे सब अपने घोंसलों में लौट आते हैं, अपने घरों में वापस आ जाते हैं, सो जाते हैं, इंसानों की भाग दौड़ रुक जाती है, हर चीज यूं लगता है ठहर गई। और वन नहार, दिन में, तो सकाना का ऑपोजिट जो है वो तहर्रक है, यानी हरकत करती है, तो वो यहाँ पर महजूफ है। तो उसके लिए है जो कुछ रात में ठहरा हुआ है और जो कुछ दिन में हरकत कर रहा है, खा वो आसमानों पे सितारे हैं या वो परिंदे हैं या हवाएं हैं या बादल हैं या इंसान हैं या जानवर हैं या हशरात हैं, हर रुकी हुई चीज और चलती हुई चीज, हर चीज का मालिक वो खुद है। वहुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। वो रब जो इन तमाम चीजों का मालिक है, क्या उसको छोड़ दिया जाए? कुल अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलियन, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को दोस्त बना लूं, सरपरस्त समझूं? फातिर समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, वहुवा युतइमु वला युतअम, और वो खिलाता है और खिलाया नहीं जाता। यानी ऐ लोगो, जो रब इतनी ताकतों का मालिक है, तुम चाहते हो मैं उसको छोड़कर दूसरों की तरह मुतवज्जे हो जाऊं, किसी और को इलाह मान लूं, किसी और को अपना मददगार समझूं? हालांकि वो रब तो ऐसा है जो खिलाता है और खुद नहीं खाता। दुनिया में क्या होता है कि इंसान जिसका भी सहारा ढूंढता है वो खुद कमजोर और मोहताज होता है। यानी अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा करने का नतीजा खुद इंसान का अपना नुकसान है, क्योंकि अल्लाह के सिवा बाकी सारी मखलूक मोहताज है। क्योंकि खाना जो है ना, ये कमजोरी है, एक वीकनेस है इंसान की। आप ना खाएं तो आपको वीकनेस हो जाती है, और अगर आप खाते हैं तो वीक हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, दोनों सूरतों में एक शदीद मोहताजी। खाना नहीं खाया तो हाल क्या है, और खा लेंगे तो हाल क्या होगा? अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं, इसलिए असल ताकत उसके पास है। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा है, वो सारे इस मोहताजी का शिकार है, लेकिन वो इससे बाला है। इसलिए उसको छोड़कर किसी और की तरफ तवज्जो कैसे की जा सकती? कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा, कह दीजिए कि मुझे तो हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहले उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। किसकी तरफ इशारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि मुझे तो हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले खुद उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। वला तकूनन मिनल मुशरिकीन, और हरगिज ना हो आप शिर्क करने वालों में से।

0: हे वट एडियम शायुं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियण वाली माँ जी बेहतरीन गिजा भाव बार इन्हीं जो हक है ये पैगाम कश फाउंडेशन कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 500 बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो सेहत तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरणमी मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभिनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ते जे लाए 0327-99-84-763
7: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आपने हुरमत से बरपास से ईरान सा चक्रन बावजूद जंग बंदी बरकरार आए ईरान सा गाल जारी आयन मुआदो कहम पे डी थी सके तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आए तो अमेरिका जा टे जंग की बेड़ा कामयाबी से आपने हुरमत पार करे व्या अमेरिकी चाहन से हमला पिण क्या व्या पर उनके को भी नुकसान न पे तो हमले आवर ईरानी नंडर बेडन के तबाह के व्यो ईरान नॉर्मल मुल्क न आए ईरान की क्यादत जुनून के हथ में आए जिनके एटवी हथियार इस्तेमाल करने जो मौके मिले हाँ तो हमले में देर न कन हाँ ट्रंप जो एक भेरों बीहर वजीर आजम शहबाज शरीफ आई फील्ड मार्शल आसिम जीवा खान सदर ट्रंप जो है तो पाकिस्तानी क्यादत के चवण से अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम से अमल दारामंद रोको

अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते जंगबंदी नुमाइंदे जे भञकड़ी जा इल्ज़ाम अमरीका अबनाए हुर्मुज़ में ॿई ईरानी सामूंडी जहाज़ तबाह करे छॾिया। ईरानी ॿेटनि ते बि शदीद बमबारी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मूजिबि अमरीकी फ़ौज फुजरा ऐं जासम में ईरानी बहरी खे निशानो बणायो ऐं खुमेर ऐं सरक कुसम ऐं बंदर अब्बास गाह ते बंदरगाह ते हमला कया। ख़ातमुल अंबिया फोर्स जा बि कार्रवाई कंदे चाह बारवे जो अबनाए हुर्मुज़ जे ॾखण में अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणायो। सेंटकॉम जो चवणु आहे त ईरान नंढनि ॿिन्हिनि ते हमिलो कयो, जवाबी कार्रवाई तौर ते उन्हनि हंधनि खे निशानो बणायो जितां हमिलो कयो वियो। अमरीकी फ़ौजी असासनि खे को बि नुक़सान आहे पए थो। उहा मुख़्तसिर कार्रवाई हुई जेका मुकमल थी वई आहे। उन सां सीज़ फायर मुआदे ते फ़र्क़ु न पवंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जे सुप्रीम लीडर मुश्तफ़ा ख़ामेनेई सां मुलाक़ात। मसूद पज़ेशकियान चयो त आयतुल्लाह मुश्तफ़ा ख़ामेनेई सां मुलाक़ात एतमाद, आजिज़ी ऐं पुरख़लूस माहौल में थी। आला तरीन अथार्टी जी आजिज़ी ऐं अख़लाक़ी वर्ताउ मुल्क जे इंतज़ामी मिसाल लाइ आहे। ईरान ते हमले खां पोइ दुश्मन जो ख़्यालु हो त माण्हू रोडनि ते अची वेंदा। दुश्मन हुन करे सिक्योरिटी ऐं फ़ौजी मर्कज़नि खे निशानो बणाया। दुश्मन ईरान खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। मुश्तफ़ा ख़ामेनेई पंहिंजे हिकु बयान में चयो आहे त एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न थींदियूं। अबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल बि ईरान वटि ई रहणु घुरिजे। गैर मुल्की फ़ौज अमरीकी हुजे या यूरोपी खिते मां निकिरी वञे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जो नायब वज़ीर आज़म एहसान डार सां फ़ोन ते राबितो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई मूजिबि ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि खे तंहिंजे हाणोकी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। रिश्त खां बरक़रार रखण ऐं शिकताण घटाइण लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी वारे अमल जारी रखण ते ज़ोर पियो।

0: भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ दहशतगर्द तंज़ीमुनि खे फंडिंग करे रहियो आहे। भारत सां मौजूदा शिकताण कंहिं बि वक़्तु वधीक तकरार जो सबब बणिजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुटो ज़रदारी जो फ्रांसी टीवी खे इंटरव्यू। बिलाल भुटो ज़रदारी चयो त अब्दुल्ला हुर्मुज़ वारे मसइले जो को बि फ़ौजी हल न आहे। ईरान अमरीका जंग ॿीहर शुरू थी त हुन जा असर महदूदु न हूंदा। समूरी दुनिया खे हिन तकरार जा नतीजा भोगणा पवंदा।
1: जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायदे आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है कोई शक है उसकी एक किस्त दिखाई है हमने। वी हैव री एस्टेब्लिश्ड ये ठोक के बम ने दोबारा डिटरेंस री एस्टेब्लिश की मिनटों में की। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हिंदुस्तान के बच्चों के सामने हिंदुस्तान के आवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था?
0: अल्लाह जे फजल सा कवारी जंग में पाण खां वॾे दुश्मन के हर महाज ते बरतनाक शिकस्त ॾिनी। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी जो हर कीमत से दिफा किया वो। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है पाकिस्तान ए फील्ड मार्शल डी रात भारत के ख्वाब में इंदा है। वालियारन कश्मीर भारत जो हिस्सों न पर आलमी सतह से मंझल तकरारी इलाको है। पाकिस्तान में थन्द दहशतगर्दी में भारत मुलवस है। पाक फौज पहरी भी तैयार हुई हाँ भी तैयार है। ये सिंदूर का बाहर छो ना निकरन। सिंदूर तो औरतों के लगे वो है कें आजमायनो है तैयार आयो कें पी भी पाकिस्तान जो कुछ बिगाड़े न तो सके। डीजी एसपीआर पारा 14 अगस्त से फौजी परेड जो ऐलान। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 14 अगस्त से ताकत जो नंढो हिस्सों आवाम के ॾेखारे वेठो। असां रियासत पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज आहियूं। कंहिं बि सियासी सोच जी नुमाइंदगी नथा कयूं। डी जी एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाक फ़ौज एलीट जी न पर ग़रीब जी फ़ौज आहे। सिंतास मुआदे जी कंहिंखे बि भंजकड़ी करणु न ॾींदासीं। छह दरियानि ते सिर्फ़ु पाकिस्तान जो हक़ु आहे।

श्रीनगर का बटंडा तई पाक फिजाया दुश्मन के सबक सिखारियो। पाक फिजाया भारतीय डिफेंस सिस्टम के भी तबाह कियो। साइबर शाहीन दुश्मन के साइबर सिक्योरिटी के भी तबाह कर छो। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू चो है पाकिस्तान पलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की अणधुरी जांच की आश कई। दुश्मन पाकिस्तान के कमजोर समझी हमलो कियो। पाक फिजाया के वेढ़ाक जहाजन दुनिया के मंझल जहाजन के मिट्टी के ढेर में तब्दील कियो। पाक फिजाया वतन के दिफा लाए मुतहरक पुरसम है। अकबारी जंग में पाकिस्तान जहाँ बंदरगाह फाल ए समुंद्री माग महफूज रहा। जंग दौरान भारतीय बहरिया जंगी बेड़ो मुकर्र करने वाली कोशिश में नाकाम रही। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन जंग दौरान फौज की हमायगी कामयाबी जामिन बनी। अमुन चाहूंता पर अमुन की कमजोरी ना है। पाक बहरिया दुश्मन के वाजे पैगाम दिनों तक कें भी अकड़ाई जो जवाब खतरनाक होंद असन सबब भारतीय बहरिया पनाह गांह तहदूद रही है।

0: बुजार का लाड़कर मुसाफिर बस जलमग थी वो हादसे जो शिकार फोत अठ थी वो टीह का जख्मी मुसाफिर कोच के रफ्तारी सबब विंगू वे इलाके में कल्टी थी पी हादसे की फोतिन में पंज ण ड्राइवर फिदा हुसैन क्लीनर रुजवान मोहम्मद बचल आमिर अली ए सदाम हुसैन तौर सु फोतिन लाश ए जख्मी शहदादपुर की अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची बार चूंडन के इलेक्शन कमिश्नर अमले के हिसाण ए बैलेट पेपर्स के गलत इस्तेमाल वाले इल्जाम की जांच जो मुतालबो कर छो। बार चूंडन में इलेक्शन कमिश्नर तौर मुकर्र एडवोकेट अब्दुल सत्तार लोहानी सिंध बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन के खत लिखी छो। इन खत में जाना है तो सिंध बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी पारा कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन लाए मुख्य इलेक्शन कमिश्नर मुकर्र किया हो। हर पोलिंग लाए 300 बैलेट पेपर रखा वह हुआ। कें भी मेंबर के बैलेट रूम अंदर अचान की इजाजत न हुई। इतला मिले तो जिले ओभर की एक पोलिंग स्टेशन से धांधली थी रही है। उतें पैतासी तो बैलेट पेपर वकील के हथन में हुआ ए नारेबाजी थी रही हुई। असिस्टेंट रिटर्निंग मुख्य हिरासा के वो बगैर के सूबत के धांधल जहाँ इल्जाम हया वह शफाफ जांच कराई वे कें ऑफिसर या मेंबर के मुलस अचान या सबूत होजन तो उन खिलाफ सख्त कार्रवाई की वे।
1: लदो खी भजी असा फोन पे ये बुधायस तो छोक मारे छी अस पुछा कई तो छो मारी मारी तुम टेंशन न कर छोक पढ़ा छी अस तू किथे पढ़ाई आ कड़ी जाते पढ़ाई असा जा बुधाई अस लाश उन घर में बराबर थे जिता भजी उत घर में थे
2: जवाबदार गिरफ्तार थो
1: न जवाबदार अगर गिरफ्तार रो मुझे तरफ कार्रवाई हल पी
3: फिल्म अचे तो तू खपा छी अस कनी थी अस बुधा कें तू बाद में अच्छी मारे पूरे छी इन कर नंबर बंद कर
0: सिंध में वधीक एक नारी कार की कुदी रस्म के भर चढ़ी वही झोल वेझो जवाबदार पांजे 15 साल की धी के कतल करण बाद लाश घर में पूरे छो। चैन ढीन बाद पूरे लाश हथ गाजी शाह वरसा जवाबदार सिकंदर लिगारी 15 वरी की धी फरीदा के कतल कर लाश घर अंदर दफनायण बाद कर छे फरार। वाके जो पहरे ढी इतला मिलने बावजूद पुलिस चैन ढीन का वाके वाले हंध पची घर में पूरे लाश कर अस्पताल मुंतकिल कर छो। वाके जो केस भी दाखिल

0: तो खास बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो करप्शन है इसका मास्टरमाइंड डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मारूफ हसन है और इसके साथ डायरेक्टर फैज़ अमान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल है और ये पैसे ऊपर डीजी तक जाते हैं। मारूफ हसन हर डिवाइस से 2 लाख से 5 लाख रुपए एडवांस हर रिटेलर से वसूल करता है। फ्रेंचाइज पे कंपनी का नुमाइंदा वजाद खान है जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कंपनी में रबते का काम करता है। हमारे पास 40 डिवाइसें हैं और हर रिटेलर बेनिफिशरी से 5 से 5,000 से 8,000 रुपये तक की कटौती करते हैं। निपो खास पुलिस हर डिवाइस होल्डर से 1.5 से 2 लाख रुपये हर किस्त वसूल करती है। निपो खास के सहाफी है तो हर डिवाइस होल्डर से 1.5 से 2 लाख रुपये हर किस्त वसूल करते हैं।
1: मीरपुर खास में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मृतक औरतुन की रकम में कटौती वा पैसा आला मिलदारन तीन पहुंचने जो शाह पुलिस जांच इदार साफन फ्रेंचाइज मालिकन समेत डिवाइस होल्डर्स लाइ हिस्सों मुकर थियन। करप्शन के इल्ज़ाम हेठ गिरफ्तार फ्रेंचाइज मालिक जीशान शबीर इनकशाफ किया मृतक औरतुन के पैसों में कल कटौती में डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर ए डीजी तीन हिस्सों वे तो करप्शन ए कौमी जो मास्टर माइंड मीरपुर खास जो डिप्टी डायरेक्टर मारूफ बाबण डायरेक्टर फेज अमान पिण शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर डिवाइस होल्डरन का 5 लाख रुपया एडवांस वसूल करे तो डिवाइस होल्डर सर मुस्तक औरत का 5 से 8,000 रुपया कटौती कन था। कटौती वाली रकम में पुलिस वफाकी जांच इदार साफन फ्रेंचाइज मालिकन डिवाइस होल्डर्स ए प्रोग्राम आला अमलदारन तीन हिस्सो पती वे तो केर पे रहे न तो। पाड़े में दर्सी किताब गरीब शागिर्दन के डेण बदरा पानी की खड में उछलाया पाया। नवा ए पुराना दर्सी किताब गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल भरसा पानी की खदमात सिंध हुकूमत पारा सूबे में तालमी वर्जिस लागू होने बावजूद दर्सी किताब शागिर्दन तीन न पहुंता। सरकारी दर्सी किताब शागिर्दन के हथ में डेण बदरा एक खड में फिटा किया पाया। सुजाण धुरन चवण है तो एक तरफ हुकूमत तालीमी सुधार एमरजेंसी की दावों कर रही है बे तरफ गरीब शागिर्दन लाए आंदल किताब जया क्या पाया। टंडो अलायर वेझो सोट रथा सोट कतल बरोही गोठ में 22 वर के नेक मोहम्मद उर्फ नेकू शेख के जालदार पिटर जा फायर करे कतल करे छो। पुलिस जो चवण है तो सोटर में जड़ो हलंदड़ हो जैता वाक्य पेश आयो है जवाबदार की गिरफ्तारी लाए छापा है पे वन।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवी।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
5: सोना साईं कुछ खबर अथव
6: छा थियो आहे सोणी
5: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
6: सोणी इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोन्हे पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारन डां अॼु ई खणी पियो वञा उहे अधु कीमत में पुराणी बैटरी में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरी खे सफ़ा नओं करे छॾींदा
5: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी
6: न न सोणी कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि
5: वाह वाह पोइ साईं जल्दी करियो हाणी वञी बैटरी ठाराए अचो
6: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे कराची बैटरी सर्विस एड्रेस मोहनी बाज़ार झूलेलाल बिरयानी नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी नवाबशाह मोबाइल नंबर 0301845719।
7: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

साईं मुंहिंजा हक़ीक़ी इल्मु इंसान खे संदसि तारीख़ी हैसियत जो शौर ॾींदो आहे। उहो शौर तनक़ीदी हूंदो आहे पर उन जो बुनियादु सवाल जवाब ऐं पुछागाछा ते मुश्तमिल हूंदो आहे। जीअं त उन जो बुनियादु हक़ीक़ी तारीख़ी हालतुनि ते पवंदो आहे, तंहिं करे उन शौर वारो फ़र्द इज्तिमाही मुफ़ाद में तब्दीलीअ लाइ पंहिंजे चौधारी हक़ीक़ी माहौल सां वाबिसा थी उनखे सम्झंदो आहे ऐं उन मां हिकु नओं इल्मु ऐं नओं शौर पैदा कंदो आहे। उहा ॻाल्हि तय आहे त सिखण जी ख़्वाहिश ॿार में फितरी तौर ते मौजूदु हूंदी आहे। उन ख़्वाहिश जो इज़हार हू तजसुस ऐं सुवाल जी सूरत में कंदो आहे। अहिड़नि ई नंढड़नि ज़िननि खे जवाबु सुठे नमूने सां ॾियणु घुरिजे ऐं असांजी उन्हनि नंढड़नि नौजवाननि खे असांजी इल्तिजा ई आहे त तालीम सां गॾु पंहिंजो पाकिस्तानी हुजणु ज़रूरी आहे, पंहिंजे मोहब वतन पाकिस्तान सां प्यारु हुजणु ज़रूरी आहे ऐं असांजी सभिनी नौजवाननि खे इहा इल्तिजा आहे त पंहिंजे जेको आहे सो पाक आर्मी सां ताल्लुक़ु रखनि, पाक आर्मी में भर्ती थियनि ऐं पंहिंजो जेको हिसो थियनि पाक आर्मी थियनि ऐं उन में पंहिंजे मुल्क ख़ातिर जेको आहे सो कोशिशि कंदा रहनि ऐं मुल्क सां जो जज़्बो आहे, जुनून आहे, उहो उन में पंहिंजे नौजवान में हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। त समय असांजो जेको हीउ अॼोको प्रोग्राम आहे उहो मारकाई हक़ ऐं बनानी मरसूस जे नाले ते आहे। असांजो प्रोग्राम पाक फ़ौज जे नाले आहे ऐं पाक आर्मी नाले आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

दुनिया वारे दौर खां तूं त भोड़ा उथी भॼु हाणे वाजे वांगुरु पियो वॼु मथे खे मुरली करियो घड़ी लॻी घड़ियाल ते घड़ियाल जो घोड़ा पुभी की न बोड़ा या त घड़ी घटि थी न को जस जागण में न को सुम्हण में आ सुख सखावत जो शाह इनायत चए हाणे गाज़न लधो गस तूं कराते विहाणी पस घयूं ते घड़ियाल जो जो पियो घुमी उथरी को कर्ज याद कर खणी आयो खुण ते सो त पिनी सिनी भर बख्शई त बख्शाइस न त वञी मेल में न छल जा कर हाणे न त घोरा तुंहिंजे घर बंदा अॼु

जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबुह अवां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं रोशन सुबुह में असां अॼु जेका बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे उहा जेको आहे सो पाकिस्तान जे हवाले सां आहे पाक आर्मी जे हवाले सां आहे त वरी पाकिस्तान जे हवाले सां वरी ॻाल्हि कंदासीं पाण आज़ादीअ जी त साईं मुंहिंजा आज़ादी हर इंसान जो बुनियादी हक़ु आहे कंहिं बि मुल्क कंहिं बि क़ौम या कंहिं बि माण्हूअ खे उहो कतई हक़ु कोन्हे त हर कंहिं बि मुल्क क़ौम या माण्हूअ खे ग़ुलाम बणाए उनजे वसीलनि माल मिल्कियत ते कब्ज़ो करे उनखे मज़लूम करे छॾे आज़ादीअ लाइ जिदोजहद कंदड़ फ़र्द मज़लूम ऐं महकूम क़ौमनि जा अनमोल हीरा हूंदा आहिनि वतन ऐं वतन जे माण्हुनि जे हक़नि लाइ जेकी बि माण्हू मैदान ते निकिरी ज़ुल्म ॾाढ ऐं जबर ख़िलाफ़ु उथी बीहनि था ऐं बुलंद आवाज़ ज़ुल्म खे ज़ुल्म चवनि था उन्हनि जा नाला तारीख़ में सुनहरी अखरनि सां लिखिया वञनि था ऐं ॿी तरफ़ बावकार माण्हू ऐं क़ौमूं वतन जे आज़ादीअ लाइ वेड़ कंदड़नि खे पंहिंजी अखियुनि जे ऐं अखियुनि ऐं जीअ में जायूं ॾींदा आहिनि छो त उन्हनि जो रुतबो उत्तम ऐं आला आहे जेके पंहिंजे मुल्क लाइ विढ़नि था ऐं पंहिंजे मुल्क जे आज़ादीअ लाइ विढ़नि था उहे माण्हू तमामु आला आहिनि पर उहे माण्हू आला आहिनि जेके असांजी पाकिस्तान जी पाक आर्मी आहे असांजी पाक फ़ौज आहे ऐं उनखे जस आहे त असां उन सां गॾु आहियूं बनाने मरसूस ऐं जेको आहे सो उन सां गॾु आहियूं असां हर ॻाल्हि में ऐं जेको आहे सो असां उन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं असां उन्हनि जे मार्क हक़ बनाने मरसूस सां असां मल्हायूं पिया असांजो हीउ अॼोको सॼो प्रोग्राम पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी ऐं पाक फ़ौज लाइ आहे।

जी असां मैंने हिन वक़्तु असां उन्हनि दोस्तनि जा नाला शामिलु कंदासीं जिन असां सां साथ ॾिनो आहे हिन प्रोग्राम में, ऐं उन्हनि बि इहो ई चयो आहे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाईंदाबाद। त दोस्त आहिनि इमदाद अली दायो, रुस्तम अली गोपांगो, इम्तियाज़ डोमकी ऐं अकबर डोमकी आहे लोअर कॉलोनी लाड़काणे खां, ऐं रुस्तम पंवर आहे ॻोठ पनू पंवर सेवण खां, फ़तेह अहमद कनासरो, फारूक अहमद कनासरो, फराज़ अहमद ऐं बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठ मोहम्मद नवाज़ धूण खां, ऐं अरीबा मुगेरी ऐं इरम कंबर सिटीअ खां, हबीबुला बुगियो लाड़काणे, हबीबुला थेबो लाड़काणे खां, मंज़ूर जलबाणी, मोहम्मद इब्राहिम जलबाणी, सरमद सिंधी ऐं नंढिड़ो इनाम जलबाणी ॻोठ अलह रखियो जलबाणी खां, ऐं दोस्तनि ज़ोहेब कटबर, ज़ैनलाब्दीन कटबर रहमतपुर लाड़काणे खां, नूर हुसन तुनियो लाड़काणे खां, अलह बचायो नुहाणी शाहपुर खां, ऐं आसिफ़ अली चाचड़, वासिफ़ अली भुगटी लाड़काणे खां, चनेसर बेहण, आज़ादु बेहण मीरपुर मोरी खां, अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलक, ख़ालिक लाशारी पंहिंजो मीरपुर ख़ासि खां, ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि कली झंडो मरी खां, रांझन कोरी वॾेरो ख़ान मोहम्मद जूणे जो मीरपुर ख़ासि खां, बदरदीन केहर, नवीद केहर ॻोठ केहरनि खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं समन ई कलाम उन्हनि दोस्तनि जे नां कयूं पिया जेके चवनि पिया पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद।

हा जी असां कुझु दोस्तनि जा नाला फेसबुक वारनि जा ऐं असांजो भाउ नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं सैद गुलामीदर शाह खां दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया। मुरीद अहमद थेबो सदाम ख़ासकेली जमील अहमद दिलावर वहाब ख़ासकेली भाइरनि जी वॾी महिरबानी ऐं ॻोठ रोहल खान बुगटी खां एहसान अली बुगटी मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार उमेंद अली कुंभार हालेपुरा स्टॉप मीरपुर ख़ासि खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी ऐं ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफ़ीज़ रहमान ऐं हबीब मलक ख़लील मलक अली रहमान मुल्तान खां गुल यासमीन नाज़ ऐं वॾी महिरबानी ऐं दोस्त आहिनि ॻोठ पाबो वेरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेंगवाड़ नवल राय ऐं सूरज गुल दानिश कुमार भाइरनि जी शंकर लालपुर सां गॾु आहे भाइरनि जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब ऐं असांजा ॻोठ मोल ॾिणे माशी खां लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर सैन सोलंगी मुख़्तियार अली ऐं ज़हीर अब्बास सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठ अहमद खान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी ॻोठ हसू जतोइनि खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अहसन फहद अहद शादाब चांडियो ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻ कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप सखर लॻ सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जुणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो यारमंद कलोड़ा कॉलोनी खां इरशाद अली महेसर हरसा जी गढ़ी ॻोठ कोरकाणियुनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। हीउ आख़िरी नगमो पाकिस्तान नगमो दोस्तनि जे नाम।

जी असां मुंहिंजा वतन पाकिस्तान सां मोहबत ईमान जो हिसो आहे। हर इंसान खे पंहिंजे वतन सां मोहबत हूंदी आहे ऐं उहो फितरी अमल आहे। इंसान जंहिं मिटीअ ते जनम वठे थो उहा मिटी उन जी माउ जो रुतबो रखे थी ऐं हर नेक ऐं साले ॿार पंहिंजे माउ सां लाज़वाल मोहबत कंदो आहे। असां जॾहिं पंहिंजे वतन जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं तॾहिं वतन जी मिटीअ जी ख़ुशबू असांजे मन खे मुअत्तर करे छॾींदी आहे। छो त ज़िंदगीअ जो नाम, ज़िंदगीअ जो रुतबो, मान ऐं शान वतन जी धरतीअ सां ई हूंदो आहे। ऐं साईं मुंहिंजा त चवंदा आहिनि त हाइफ तनी खे होए वतन जन वसारियो, सो वतन तमामु घणो प्यारो हूंदो आहे। असांखे बि पंहिंजो प्यारो वतन पाकिस्तान तमामु प्यारो आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। समिन ऐं असांजो वक़्तु पंहिंजे पुॼणी ते पहुची पियो, असांखे हिन वक़्तु पंहिंजो इजाज़त वठणु कोन पियो ॾिए। ऐं समिन आख़िर में अव्हां सां ॻाल्हि इहा ज़रूरु कंदासीं त असांजो हीउ अॼु सुबुह जो प्रोग्राम आख़िरी हुयो। वरी असां ईंदड़ हफ़्ते इनशाला तव्हां सां राति जो 8 बजे खां पंहिंजो मुलाक़ात तव्हां सां ज़रूरु थींदी हिन प्रोग्राम में। ऐं प्रोग्राम जो नालो ऐं प्रोग्राम जे नए टाइम सां ज़रूरु अव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bengal Habib. Rishta Bharose Ka.
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आहे त अमेरिका जा टे जंगी बेड़ा कामयाबी सां अपने हरमुस पार करे विया। अमेरिकी जहाज़नि ते हमला भड़किया विया पर उन्हनि खे को बि नुक़सान न पए थो। हमले आवर ईरानी नंढे बेड़नि खे तबाह कयो वियो। ईरान नॉर्मल मुल्क न आहे। ईरान जी क़यादत जुनैदी जे हथ में आहे, जिन खे एटमी हथियार इस्तेमाल करण जो मौक़ो मिले हा त हमले में देर न कनि हा। ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम रिजवा खां सदर ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो।

अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिते जंगबंदी माहिदे जे भञकणी जा इल्ज़ाम अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ में ॿई ईरानी सामूंडी जहाज़ तबाह करे छॾिया। ईरानी ॿेटनि ते बि शदीद बमबारी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मूजिबि अमरीकी फ़ौज फुजेरा ऐं जासम में ईरानी बहरी खे निशानो बणायो ऐं खुमेर ऐं सरक कुसम ऐं बंदर अब्बास गाह ते बंदरगाह ते हमला कया। ख़ातमुल अंबिया फोर्स जा बि कार्रवाई कंदे चाबहार वेझो अबनाए हुर्मुज़ जे ॾखण में अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणायो। सेंटकॉम जो चवणु आहे त ईरान नंढनि ॿिन्हिनि ते हमिलो कयो। जवाबी कार्रवाई तौर ते उन्हनि हंधनि खे निशानो बणायो जितां हमिलो कयो वियो। अमरीकी फ़ौजी असासनि खे को बि नुक़सानु आहे पए थो। उहा मुख़्तसिर कार्रवाई हुई जेका मुकमल थी वई आहे। हुन सां सीज़ फायर मुआदे ते फ़र्क़ु न पवंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जे सुप्रीम लीडर मुश्तफ़ा ख़ामेनेई सां मुलाक़ात। मसूद पज़ेशकियान चयो त आयतुल्लाह मुश्तफ़ा ख़ामेनेई सां मुलाक़ात एतमाद आजिज़ी ऐं पुरख़लूस माहौल में थी। आला तरीन अथार्टी जी आजिज़ी ऐं अख़लाक़ी वर्ता मुल्क जे इंतज़ामी मिसाल लाइ आहे। ईरान ते हमले खां पोइ दुश्मन जो ख़्यालु हो त माण्हू रोडनि ते अची वेंदा। दुश्मन हुन करे सिक्योरिटी ऐं फ़ौजी मर्कज़नि खे निशानो बणायो। दुश्मन ईरान खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। मुश्तफ़ा ख़ामेनेई पंहिंजे हिकु बयान में चयो आहे त एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न थींदियूं। आमने हुर्मुज़ जो कंट्रोल बि ईरान वटि ईरान घुरिजे। गैर मुल्की फ़ौज अमरीकी हुजे या यूरोपी खिते मां निकिरी वञे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां फ़ोन ते राबितो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई मूजिबि ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि खे तंहिंजे हाणोकी सूरताल ते ख़्याल जी ॾे वठि कई। इस्तक़ाम बरक़रार रखणु ऐं शिकताण घटाइण लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी वारे अमल जारी रखण ते ज़ोर ॾिनो।

0: भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ दहशतगर्द तंज़ीमुनि खे फंडिंग करे रहियो आहे। भारत सां मौजूदा शिकताण कंहिं बि वक़्तु वधीक तकरार जो सबबु बणिजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुटो ज़रदारी जो फ्रांसी टीवी खे इंटरव्यू। बिलाल भुटो ज़रदारी चयो त अब्दुल्लाह हुर्मुज़ वारे मसइले जो को बि फ़ौजी हल न आहे। ईरान अमरीका जंग ॿीहर शुरू थी त हुन जा असर महदूद न हूंदा। समूरी दुनिया खे हिन तकरार जा नतीजा भोगणा पवंदा।
1: जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायद आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने। वी हैव री स्टैब्लिश, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस री स्टैब्लिश की मिनटों में की। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के आवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था?
0: अल्लाह जे फजल सा कवारी जंग में पान का वडे दुश्मन के हर महाज से बरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी जो हर कीमत से दिफा क्यों भी दो। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चो आया था पाकिस्तान ए फील्ड मार्शल डी रात भारत के ख्वाब में इंदा है। बालियारन कश्मीर भारत जो हिस्सों न पर आलमी सतह से मंजर तकरारी इलाको है। पाकिस्तान में थींद दहशतगर्दी में भारत मुलवस है। पाक फौज पहरी भी तैयार हुई, हाने भी तैयार है। ये सिंदूर का बाहर छो न था निकलतों के लगाया वो है कें जो पी भी पाकिस्तान जो कुछ बिगाड़े न तो सके। DGSPR पारा 14 अगस्त से फौज परेड जो ऐलान। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चाहे तो 14 अगस्त से ताकत जो नंढो हिस्सो आवाम की ॾेखारे वेठो। असां रियासत पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज आहियूं, कंहिं बि सियासी सोच जी नुमाइंदगी नथा कयूं। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाक फ़ौज एलीट जी न पर ग़रीब जी फ़ौज आहे। सिंतास मुआदे जी कंहिंखे बि भंजकड़ी करणु न ॾींदासीं। 6 दरियानि ते सिर्फ़ु पाकिस्तान जो हक़ आहे।

0: रोजगार का लाड़का रविंदर मुसाफिर बस जलमंगसी में जो हादसे जो शिकार फोते जो अठ थी वो टीह का जख्मी मुसाफिर कोच से रफ्तार सबब विंगूवारे इलाके में कल्टी थी पी हादसे की फोतन में पंज जन ड्राइवर फिदा हुसैन क्लीनर रुजवान मोहम्मद बचल आमिर अली और सदाम हुसैन तौर सु फोतन या लाश जख्मी शहदाद कोची अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची बार चूंडन के इलेक्शन कमिश्नर अमले के हिसाण ए बैलेट पेपर्स के गलत इस्तेमाल वाले इल्जाम की जांच जो मुतालबो कर छो। बार चूंडन में इलेक्शन कमिश्नर तौर मुकर्र एडवोकेट अब्दुल सत्तार लोहानी सिंध बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन के खत लिखी छो। इन खत में जाना है तो सिंध बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी पारा कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन लाए मुख्य इलेक्शन कमिश्नर मुकर्र किया हो। हर पोलिंग लाए 300 बैलेट पेपर रखा वह हुआ। कें भी मेंबर के बैलेट रूम अंदर अचान की इजाजत न हुई। इतला मिले तो जिले ओभर के एक पोलिंग स्टेशन से धांधली थी रही है। उत पैतासी तो बैलेट पेपर वकील के हथ में हुआ ए नारेबाजी थी रही हुई। असिस्टेंट रिटर्निंग मुख्य हिरासा के वो बगैर के सबूत के धांधली का इल्जाम हया वह शफाफ जांच कराई वे कें ऑफिसर या मेंबर के मुलस होने या सबूत होजन तो उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की वे।
1: लद खी भजी वे फोन ये बुधा अस तो छोक मारे छी अस उनका पुछा कई तो छो मारी मारी तुम टेंशन न कर छोक परणा छी अस तू किथे परणाई कड़ी जाते परणाई अस जा बुधाई अस लाश उन घर में भरवन थी जिता भजी वे घर में थी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: सोना साईं, कुछ खबर अथव?
5: छा थियो आहे सोणी?
4: बिन ॾींहन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
5: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरीअ जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
4: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
5: न न सोणी, कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि।
4: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो।
5: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो। असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे। कराची बैटरी सर्विस, एड्रेस मोहनी बाज़ार झूलेलाल बिरयानी नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी नवाबशाह। मोबाइल नंबर 03018457919।
6: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय
7: अंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 03279984763।
9: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

त मुंहिंजा मिठा साईं, समाज में सुधारो कीअं आणिजे? कुझु तजवीज़ूं तव्हां सां शेयर कंदासीं। समाज में सुधारो आणण जे लाइ हिकु फर्द खे पंहिंजी ज़िमेवारी समुझणी पवंदी, छो त सुठो समाज सुठनि माण्हुनि सां ई ठहंदो अथव। जंहिंजूं कुझु अहम नुक़्ता आहिनि जेके मुंहिंजे नज़रिए मुताबिक़ आहिनि। वधीक हर माण्हूअ जो हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि अलॻि नज़रियो हूंदो आहे। त सभ खां पहिरियां त आहे त तालीमी शऊर पैदा कजे ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जी तादादु उहा तमामु घणी कराइजे। ऐं हक़ ऐं जेके फ़र्ज़ सुञाणनि था न माण्हू, उन्हनि जी तरबियत कजे ऐं उन्हनि खे अॻिते आणिजे। ऐं उन करे ॿारनि जेके आहिनि, असांजी जेका यंग जनरेशन आहे, जेका असांजा मुस्तक़बिल जा महिमार आहिनि, ऐं जेके असांजे मुल्क जूं वागुजनि जे हथनि में हूंदियूं, असांजी वागुजनि जे हथनि में हूंदियूं, त उन्हनि ॿारनि खे तालीम ज़रूरु ॾिजे। ॿियो आहे माण्हुनि सां इज़त मुहबत ऐं बर्दाश्त सां पेश अचिजे। सुठो इख़लाक समाज खे पुरअमन बणाईंदो अथव। ग़रीब ऐं अमीर, नंढे ऐं वॾे सां हिकु जहिड़ो वर्ताउ थियणु घुरिजे। इंसाफ़ सां समाज मज़बूत थींदो आहे। कानून जी पासदारीअ सां बदअमनी, करप्शन ऐं ॾोहनि में घटिताई ईंदी आहे। उन जे लाइ कानून जी पासदारी बि ज़रूरी आहे। औरतुनि खे तालीम, इज़त ऐं बराबरीअ जा हक़ ॾियणु घुरिजनि। ऐं नौजवान क़ौम जो मुस्तक़बिल आहिनि, उन्हनि खे मुस्बत सरगर्मियुनि, इल्म ऐं सुठनि क़दरनि खां आणणु ज़रूरी आहे। साफ़ सुथरो माहौल सिहतमंद समाज जी निशानी आहे। वण पोखण ऐं गंदगीअ खां बचणु ज़रूरी आहे। सुखे वक़्त सां गॾु, ॾाढी अहम पॉइंट अथव, सुखे वक़्त सां गॾु ॾुखे वक़्त में बि माण्हुनि जो साथ ॾियणु घुरिजे, छो त गॾियल सहकार सां ई समाज मज़बूत थिए थो। इहो ई चई सघंदो आख़िर में त समाज में सुधारो कंहिं हिकु माण्हूअ सां न, पर सभिनी जो ई गॾियल कोशिश सां ईंदो आहे। जेकॾहिं हर माण्हू पंहिंजे किरदार खे बहितर बणाए त समाज पाण मुरादो सुधरी सघे थो।

तर प्रोग्राम जे आगाज़ में आबदा प्रवीण हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रेक आहे मुंहिंजे प्ले लिस्ट में, ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हांखे मां ॿुधाईंदो न तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था बज़रे SMS करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे असां लाइ। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां।

अहमद मुगल जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हां जूं सुंदर समा तूं मारगो तो ॾे ॾिसां तूं रुगो मूं ॾे ॾिसी दिलि चवे थी ओ पिरी तूं मुंहिंजे साम्हूं हुजे शामिल थी सघो था ज़रिए जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां हां 888-1 ते त मुंहिंजे मिठा साईं क़िस्मत इंसान जी ज़िंदगी जो हिकु अहम तसवुरु हूंदो अथव जंहिंखे तकदीर बि चयो वेंदो आहे उनखां अलावा हिन जा खोड़ ॿिया बि नाला अथव जीअं चऊं त नसीब या भाग हर इंसान जी दिलि में उहो सवाल ज़रूरु हूंदो आहे त असां ज़िंदगी में जेके वाकिया थियनि था न उहे अॻुवाट लिखियल आहिनि या इंसान पाण पंहिंजी क़िस्मत सां पंहिंजी क़िस्मत बदिलाए सघे थो क़िस्मत बाबति मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ख़्याल आहिनि पर सचो उहो आहे त क़िस्मत ऐं महिनत ॿिन्ही जो पाण में गहरो लाॻापो अथव कुझु माण्हू सम्झंदा आहिनि त हर शइ क़िस्मत में अॻुवाट लिखियलु आहे तंहिं करे इंसान खे घणी महिनत करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे अहिड़ी सोच इंसान खे सुस्त बि करे छॾींदी अथव जेकॾहिं को शागिर्दु पढ़ाई नथो करे चवे थो त जेकॾहिं क़िस्मत में हूंदो त पास थी वेंदुसि त इहा ज़ाहिरी आहे ग़लति सोच आहे न ऐं क़िस्मत ते भरोसो करणु सुठो अमल आहे पर बग़ैर महिनत जे कामयाबी हासिलु करणु सफ़ा नामुमकिन अथव ॿिए तरफ़ वरी कुझु माण्हू पंहिंजी महिनत ते मुकमल भरोसो कनि था ऐं क़िस्मत खे नज़रअंदाज़ कनि था पर हक़ीक़त में इंसान जी महिनत सां गॾु क़िस्मत जो बि किरदारु ज़रूरु हूंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं इंसानु तमामु घणी महिनत करे थो पर नतीजो संदसि मर्ज़ीअ मुताबिक़ नथो मिले उन मां ज़ाहिरु थिए थो त क़िस्मत बि पंहिंजो असरु ॾेखारे रही आहे असल में कामयाबी जे लाइ महिनत लगन ऐं दुआ सां गॾु क़िस्मत ते बि ईमान रखणु ज़रूरी आहे जीअं चयो वेंदो आहे त महिनत कंदड़ जी मदद क़िस्मत बि करे थी यानी जेको इंसानु सचाई ऐं ईमानदारी सां महिनत करे वेठो न उन लाइ क़िस्मत जा दरवाज़ा बि खुली वञनि था त हुनजे करे असांखे घुरिजे त क़िस्मत खे इल्ज़ाम ॾियणु बदिरां पंहिंजे कम ते ध्यानु ॾियूं नाकामी खे क़िस्मत जो ॾोहु ॾियणु आसान आहे पर पंहिंजी ग़लतीअ खे सम्झणु ऐं उनखे दुरुस्त करणु वॾी अहमियत जी ॻाल्हि आहे हिकु मज़बूत इरादो ऐं मुसलसल महिनत इंसान खे संदसि मंज़िल ताईं पहुचाए सघे थी

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemet Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemet Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
5: सिंध के माथे का झूमर
6: DFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज.

तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, कोशिशि कंदासीं, छो जो पसंदि हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू पंहिंजी पंहिंजी पसंदि मोकिलींदा आहिनि। असां कोशिशि कंदा आहियूं त सभिनी जी जेके बि असांखे प्यारा मैसेज कनि था उन्हनि जी असां पसंदि जा सॉन्ग हलायूं, पर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थी वेंदो अथव त टाइम असां वटि थोरो हूंदो आहे ऐं माण्हुनि जी चॉइस वधीक हूंदी आहे, उन्हनि जी पसंदीदा गाननि जी तादाद वधीक हूंदी आहे, पोइ उनजे करे उहे रहिजी वेंदा आहिनि। मैडम नूरजहां पाकिस्तान जी तमामु वॾी ॻाइणी आहे, इनशाला ताला उनजो सॉन्ग असां पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कंदासीं। ऐं अदो आहे चवे थो, अदा वॾी महिरबानी मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधाइण ते, त मुंहिंजा मिठा महिरबानी अदा, नालो तव्हां पंहिंजो कोन लिखियो आहे, बहरहाल तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। दादू खां इमदाद जतोई अब्दुल ख़ालिक जतोई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, मुबशर हुसैन जतोई हुन सां गॾु आहे ऐं किफ़ायत उल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई ऐं जलाल चांडी जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि, त जलाल चांडी जी ही कलाम जी ईअं सम्झो त ॿी फरमाइश आहे, त भाउ मुंहिंजा ज़रूरु जलाल चांडी खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। ऐं ग़ुलाम फारूक, शकील, ख़लील, सबीन, अकील, अतीक, मुकीम, सुलेमान, गोट, मेहर, हाजी, राजपुर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि। अदा साईं महिरबानी तव्हांजूं, स्पेशली मां ग़ुलाम फारूक समेत जेके बि माण्हू आहिनि जेके तव्हां मैसेज में जंहिं जंहिंजा नाला लिखिया आहिनि उन्हनि सभिनी खे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवां थो। दादू खां अहमदाद जतोई भाजन जो ही ॿियो मैसेज, जंहिं सां गॾु अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफ़ायत उल्ला जतोई आहे ऐं फारूक हैदर जतोई आहे, त मुंहिंजा मिठा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, मुंहिंजी तरफ़ खां खोड़ दफ़ा तव्हांखे भली कार।

0: 0318-4040.
1: की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि में छॾनि प्यारनि ॿारनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती जे आख़िरी लम्हनि में बि भली कार सां चऊं था त मुंहिंजा वेठासीं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो आहे ऐं हिन प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ में तव्हां सां हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं ऐं तव्हां पारां मोकिलियल प्यारा प्यारा मैसेजिस।

तव्हांजा वेठा साईं प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि शामिल कंदा हलूं गॾु गॾु हिन सां असांजे प्रोग्राम में हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे कुर्बान अली डेपर ऐं मोहम्मद आचर डेपर सावण खान हाली पोटरो डेडिकेट कंदा अब्दुल जबार चन्ना खे ऐं चवंदा सोढ़ल फ़क़ीर जे आवाज़ में असांखे कलाम उतरायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं सोढ़ल फ़क़ीर जो तालुक़ु मोरो शहर सां रहियो आहे मोरो जे बराड़ी सां रहियो आहे सिंध जो तमामु वॾो फ़नकार आहे ऐं रहियो आहे अलाह ताला हुनखे जन्नत में जॻह ॾिए ऐं ज़रूरु अदा अगरि टाइम बचियो त तव्हांखे सोढ़ल फ़क़ीर जी आवाज़ में ज़रूरु कलाम ॿुधाईंदासीं अगरि न त नेक्स्ट प्रोग्राम जेको हूंदो न उन में तव्हांखे ज़रूरु सोढ़ल फ़क़ीर जे आवाज़ में कलाम ॿुधाईंदासीं त असां सां गॾु आहे दादूअ खां इमदाद जतोई अब्दुल ख़ालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई ऐं किफ़ायतुल्ला जतोई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे त उन्हनि खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चऊं था ऐं उन खां अलावा ग़ुलाम फारूक शकील ख़लीक ऐं असां सां गॾु आहे अकील मुकीम ऐं सुलेमान ॻोठ मेहर हाजी राजपुर खां त महिरबानी प्यारा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा

मारवी सिंधू जो खूबसूरत आवाज़ है तव्हांजो सुंदर समातो तुंहिंजा मिठा ते प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुचण वारो आहे ऐं प्रोग्राम जे पुॼाणीअ ते हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदा आहियूं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो ऐं उनखां अलावा पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, दोस्तनि जो मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। त मुंहिंजा मिठा साईं, हमेशह ॿियनि जी तकलीफ़ खे पंहिंजी तकलीफ़ सम्झो ऐं पंहिंजे वस ऐं वित आहार जेके माण्हू आहिनि असांजे मुआशिरे में जेके तव्हां महसूसु कयो था त उन्हनि खे सख़्त ज़रूरतमंद माण्हू आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजे वस ऐं वित आहार मदद ज़रूरु कंदा कयो। इंशाल्लाह ताला हयाती रही त वरी ॿिए प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं जे लाइ ॾींदा पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान।

0: अमेरिका जो हिकु ॿिए ते जंग बंदी जी भञ करनि जे इल्ज़ाम अमेरिकी फ़ौज कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते हमलनि जी तसदीक करे छॾी। ईरानी फ़ौज जो बि भरपूर जवाब अमेरिकी बहिरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमेरिकी सेंटकॉम पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते ॿिनि हंधनि खे निशानो बणायो आहे। हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करणु नाहे। अमेरिकी जहाज़नि ते हमलनि बाद ईरान ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई आहे। ईरान जी ख़ादम लंबिया हेडक्वार्टर मूजिबि ईरानी फ़ौज अमेरिकी हमलनि जो जवाबु ॾिनो आहे। आबना हरमुज़ जे ओभर ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमेरिकी फ़ौजी ॿेड़नि खे निशानो बणायो वियो, जिन सां खेनि घणो नुक़सान पहुतो आहे।
1: It is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in
1: the talks? No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: झड़पुनि ऐं हमलनि बावजूदि ईरान सां जंगबंदी बरक़रार आहे। तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। वाइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका जा टे जंगी ॿेड़ा आबनाए हरमुज़ पार करे विया आहिनि। जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो। ट्रंप जी हिकु भेर ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखा सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो।

हक जी जंग में कौम मुतहद फौज से कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही पाकिस्तान राफेल जहाज किराए भारत जो गुरूर बीठे में मिलाया सुषमा वाले वफाकी वजीर अता तारड़ चाहे तो पाकिस्तान के भरपूर जवाब बाद भारत चैन कलाक में शिकस्त तस्लीम कई सजी दुनिया पाकिस्तान की कामयाबी भारत की शिकस्त की शाहिदी दई रही है। टनो मोहम्मद खान में औरत बिन मासूम बार्डर समेत फुलेली किनाल में ठपो दई आबखात कर छोड़ो औरत और बारन जा लाश शहर से सुणप नी सकी पुलिस मूजिब औरत के शहर किनाल में ठपो डींदे डिठो हो औरत और बारन की सुणप ना थी सकी वाकई की जांच जारी है। नौशहर फिरोज की अदालत में लंजार हाउस के बाहर रहने समेत अठ केसिस बुधड़ियों अगूणों वफाकी वजीर गुलाम मतदा जतोई संदन भा मसरूर जतोई अदालत में पेश एटीसी में जज मुकर न होने सबब जतोई बाहर सेशन कोर्ट में पेश थे अदालत समूरन केसिस की बुधड़ी 19 मई तीन मुलतवी कर छी। राधण भरसा विरोही सोलंकी बिरादरी की विंदड़ में तकरार में जख्मी थियल नौजवान फौत जख्मी राबेल जुने जो लाड़कानों की अस्पताल में जख्मन की सट न सहंदे दम दई छो। हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थे मुख्तलिफ शहर में बे डी भी रैली खैरपुर में सेप्को मुलाजमन पारा बाबदा ऑफिस का प्रेस क्लब तीन रैली कढ़ी वही कंदकोट में डीसी ऑफिस का घंटा घर तीन रैली शहर की शिरकत सखर में भी रैली कढ़ी वही उस्तादन शागिदन शहर की शिरकत नौदर में स्कूल के उस्तादन शागिदन पारा रैली खरड़ो में प्राइमरी स्कूल के उस्तादन शागिदन पारा रैली कढ़ी वही पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Jade maa panjo khyal rakhandi aahe. Ta sehat naslan tai halandi aahe. Hi pegam Kash Foundation ay Canadian Government je tarfan pesh kayo vayo.
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम. लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम.
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे. होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत. टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई. बरोज जुमू मोकल आहे. एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण. वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
6: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

संभालू।

Voyez

0: इट्स 2 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

हक जी जंग में कौम मुतहद फौज से कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल ही पाकिस्तान राफेल जहाज के राय भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलाया सुषमा वाले वफाकी वजीर अता तारा चवाए तो पाकिस्तान के भरपूर जवाब बाद भारत चैन कलाकन में शिकस्त तस्लीम कई सजी दुनिया पाकिस्तान की कामयाबी भारत की शिकस्त की शाहिदी दे रही है। खान में औरत बिन मासूम बारन समेत फुलेली केनाल में टपो डे आप खात कर छो औरत बारन जा लाश थे सुणप नी सकी पुलिस मूजिब औरत के शहर केनाल में टपो डींदे डिठो औरत बारन की सुणप ना थी सकी बाकी जांच जारी है। हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थे ते मुख्तलिफ शहर में बे डी भी रैली खैरपुर में सेपको मुलाजमत पारा वापदा ऑफिस का प्रेस क्लब तीन रैली कड़ी वही कंदकोट में डीसी ऑफिस का घंटाघर तीन रैली शहर की शिरकत सखर में भी रैली कड़ी वही उस्ताद शागिदन शहर की शिरकत नौदर में स्कूल के उस्ताद शागिदन पारा रैली खरड़ो में प्राइमरी स्कूल के उस्ताद शागिदन पारा रैली कड़ी वही पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी मिठी वेझो गोठ गोधियार में सुमराधुर में झेड़ो फायरिंग में बिन औरतों ने टिन बार समेत बारह जणा जख्मी बारसन जो सिविल अस्पताल मिठी के मजसी गेट अगर धरनो मुतासिर धुर जो एमएनए महेश कुमार बलानी के पीए सिराज सुमरों से हमलों कराने जो इल्जाम एफआईआर दाखिल कर जवाबदार के गिरफ्तार कर इंसाफ ए तहफुज फराहम करने का मुतालबो नवाबशाह में मोहसिनाबाद वासन निंगरी संदस भा मुबैना तौर अगवा बारसन जो एहतजाज बारसन मुजिब हथियारबंद निंगरी जरी ना संदस पंज साल भा इरफान सोलंगी के अगवा कर वह एनसी दाखिल कराने बावजूद पुलिस धी ए पुट के बाजियाब करण लाइ मदद न कर रही है बिन्हीं जणन के बाजियाब कराया वे पीर जो गोठ में नारी जो बासरन से अगवा कर लजा लुट कर इल्जाम वालदेन से गड एहतजाज मुजाहद कॉलोनी वास पारस शेख मूजिब बासर अरबेलो रोहन शेख ए बन अगवा कर बाद कैद कर तीन महीनों तीन लजा लुट जो निशानो बनाया हयाती के खतरो है जवाबदार खिलाफ कार्रवाई कर तहफुज ए इंसाफ फराहम किया वे

केपी में दहशतगर्द हमले में शहीद थियल मौलाना शेख इदरीस के कातिल की गिरफ़्तारी के लिए जेवाई जो सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में एहतजाज कंबर नवदेरो बीरखान रोड़ी बेन शहर में कारकुनन जा मुजाहरा आलिम के कतल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करने का मुतालबो

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
4: सोना साईं कुछ खबर अथव
5: छा थियो आहे सोणी
4: बिंडियन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कॾहिं आणींदा
5: सोणी हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा
4: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी
5: न न सोणी कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि
4: वाह वाह पोइ साईं जल्दी करियो हाणी वञी बैटरी ठाराए अचो
6: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे कराची बैटरी सर्विस एड्रेस मोहनी बाज़ार झूलेलाल बिरयानी नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी नवाबशाह मोबाइल नंबर 03018457919
3: This program is brought to you by
7: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
8: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 03279984763
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
9: सुनते रहो GFM 90.8

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327 9984763

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

गड़ियल कौमनि में ईरान मुखालिफ़ अमेरिकी ठहराउ रद्द रूस पारां ठहराउ खे ख़िते में छिकता वधाइण जी कोशिश करार ॾिनो वियो गड़ियल कौमनि में रूस जे मुसकिल नुमाइंदे वेस्ले जो चवणु आहे त ईरान ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ो बयानी उठाइण वारी हर कोशिश खे रद्द कयूं था अहिड़े ठहराउ जी हिमायत न कंदासीं जेको ख़िते में जारी बुहरान जे असल सबबनि खे नज़रअंदाज़ करे विचो भर में बहरी सलामती हिकु तरफ़नि क़दमनि सां मुमकिन नाहे तकरार जो ख़ात्मो ऐं फ़ौजी कारवायूं रोकणु ज़रूरी आहिनि छिकताण वधाइण वारनि क़दमनि खां पासो कयो वञे हक जी जंग में क़ौम मुतहद ऐं फ़ौज सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही पाकिस्तान राफ़ेल जहाज़ खे राय भारत जो गुरूर मिटीअ में मिलायो सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त पाकिस्तान जे भरपूर जवाब बाद भारत चइनि कलाकनि में शिकस्त तस्लीम कई सॼी दुनिया पाकिस्तान जी कामयाबी ऐं भारत जी शिकस्त जी शाहिदी ॾेई रही आहे मोहम्मद खान में औरत ॿिनि मासूम ॿारनि समेत फुलेली कैनाल में टपो ॾेई आपघात करे छॾियो औरत ऐं ॿारनि जा लाश हथ पुलिस मूजिबि आपघात कंदड़ औरत जी सुञाणप श्रीमती रतना बाई निंगरी आशा ऐं निंगर संजय जे नालनि सां थी आहे आपघात कंदड़ औरत ऐं ॿार यूसी लाखाट जे कोली ॻोठ जा रहवासी आहिनि

हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿिए ॾींहं बि रैली हैदराबाद में शहरी इंतज़ामिया पारां रैली कढी वई। खैरपुर में सेप्को मुलाज़मनि पारां बाबरा ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। कंदकोट में डीसी ऑफिस खां घंटाघर ताईं रैली, शहरनि जी शिरकत। सखर में बि रैली कढी वई। उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी शिरकत। नवदेरो में स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां रैली। खडड़ो में प्राइमरी स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां रैली कढी वई। मिठी वेझो ॻोठ गोधियार में सूमरा धुरन में झेड़ो। फायरिंग में ॿिनि औरतुनि ऐं टिनि ॿारनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। वारसन जो सिविल अस्पताल मिठी जे एमरजेंसी गेट अॻियां धरणो। मुतासिर धुर जो एमएलए महेश कुमार बलाणी जे पीए सिराज सूमरो ते हमिलो कराइण जो इल्ज़ाम। एफआईआर दाख़िल करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम करण जो मुतालबो। नवाबशाह में मोहसिनाबाद वासी निंगरी ऐं संदसि भाउ मुबैना तौर अॻवा। वारसन जो एहतजाज। वारसन मुजिबि हथियारबंद निंगरी ज़रीना ऐं संदसि 5 सालनि जे भाउ इरफान सोलंकीअ खे अॻवा करे विया आहिनि। एनसी दाख़िल कराइण बावजूदि पुलिस धीउ ऐं पुट खे बाज़ियाब कराइण जे लाइ मदद न करे रही आहे। ॿिन्ही ॼणनि खे बाज़ियाब करायो वञे। झोलबेझो कार इल्ज़ाम हेठि क़तल कयल 14 सालनि जी निंगरी फरीदा जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पधिरी। निंगरीअ खे सिरोटा हणण बाद घुटा ॾेई मारण जी तसदीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुजिबि लाश 6 ॾींहं पुराणो आहे। पुलिस वाके जो सरकारी फरियाद ते मक़तूल नारी जे पीउ सिकंदर लिगारी मथां केस दाख़िल करे वरितो। केस में कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल वारो क़लम शामिल न कयो वियो। पुलिस नामज़द जवाबदार सिकंदर लिगारी खे गिरफ़्तार करण में बि नाकाम। केपी में दहशतगर्द हमले में शहीद थियल मौलाना शेख इदरीस जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ जेयूआई जो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। कंबर, नवदेरो, बीरो खान, रोहड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में कारकुननि जा मुज़ाहिरा। आलिम जे क़तल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।

0: نواب شاہ ऐं कोरबा में एस टी पी जा बुनियादी मसलनि जे हल ऐं महांगाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा नवाब शाह में एस टी पी पारां शहर जे बुनियादी मसलनि जे हल जे लाइ इजाज़ कयो वियो। कोरबा में बि एस टी पी पारां शहर जे बुनियादी मसलनि जे हल लाइ रैली कढी वई, शहर जा मसला हल करण जो मुतालबो। ऐं शहदादपुर में नवाब शाह पुलिस जी हिरासत में पहुतल अरशद भट्टी जे वारसनि ऐं शहरनि जो احتجاج। मुज़ाहिरीन चयो आहे त नवाब शाह पुलिस बासर जी चुर्च ते अरशद भट्टी खे वेशियाणे तशद जो निशानो बणाए मारियो आहे। बासर ऐं अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: सोना साई, कुछ खबर अथव?
6: छा थियो आहे सोणी?
5: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
6: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
5: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
6: न न सोणी, कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि।
5: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो।
6: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो। असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे। कराची बैटरी सर्विस, एड्रेस मोहनी बाज़ार, झूलेलाल बिरयानी, नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल, सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी, नवाब शाह। मोबाइल नंबर 03018457919।
7: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: GAFM 88
5: नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो
5: ईरान ऐं अमेरिका जे हिक ॿिए ते जंगबंदीअ जी भंजकड़ियुनि जो इल्ज़ाम. अमेरिकी फ़ौज कश्मीर में बंदर अब्बास पोर्ट ते हमलनि जी तसदीक करे छॾी. ईरानी फ़ौज जो बि भरपूर जवाबु. अमेरिकी बहरी जहाज़नि खे निशानो बणायो. अमेरिकी सेंटकॉम पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त कश्मीर में बंदर अब्बास पोर्ट ते ॿिनि हंधनि खे निशानो बणायो आहे. हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करणु न आहे. अमेरिकी जहाज़नि ते हमलनि बाद ईरान ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई आहे. ईरान जे ख़ातिम अलंबिया हेडक्वार्टर मूजिबि ईरानी फ़ौज अमेरिकी हमलनि जो जवाबु ॾिनो आहे. आबदा हरमुज जे ओभर ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमेरिकी फ़ौजी ॿेड़नि खे निशानो बणायो वियो, जिन सां खेनि घणो नुक़सान पहुतो आहे.
6: I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
7: Could you give us an update on what is the latest in those talks?
6: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it.
5: झड़पुनि ऐं हमलनि बावजूदि ईरान सां जंगबंदी बरक़रार आहे. तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि. वाइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका जा टे जंगी ॿेड़ा अब्दुल हरमुज़ पार करे विया आहिनि. जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो. ट्रंप जी हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जी वाखाण. सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो.
6: Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
5: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सिंगापुर जे परे वज़ीर बालाकृष्णन सां राब्तो. अमेरिकी हिरासत में मौजूदु ईरानी बहरी जहाज़नि जे पाकिस्तानी ऐं ईरानी अमले जी वापसीअ जे लाइ सहकार करण जी दरख़्वास्त. इसहाक़ डार चयो त मामले ते ईरानी परे वज़ीर अब्बास इलाक़ी सां बि राब्ते में आहियां. पाकिस्तान ईरानी शहरनि जी महफ़ूज़ वापसी जे लाइ सहूलियत फराहम करण जे लाइ तयारु आहे. अमेरिका पारां ज़ब्त कयल ईरानी ॿेड़नि ते 11 पाकिस्तानी ऐं 20 ईरानी शहरी मौजूदु आहिनि. गॾियल क़ौमुनि में ईरान मुख़ालिफ़ अमेरिकी ठहराउ रद. रूस पारां ठहराउ ख़िते में छिकतार वधाइण जी कोशिश करार. गॾियल क़ौमुनि में रूस जे मुस्तक़िल नुमाइंदे वेस्ली ईरान ख़िलाफ़ वेस्ली चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ो बयानियूं ठाहिण वारी हर कोशिश खे रद्द कयूं था. अहिड़े ठहराउ जी हिमायत न कंदासीं जेको ख़िते में जारी बहरान जे असुल सबबनि खे नज़रअंदाज करे. विचोभर में बहरी सलामती हिकु तरफ़नि क़दमनि सां मुमकिन आहे. तकरार जो ख़ात्मो ऐं फ़ौजी कार्रवाई रोकणु ज़रूरी आहिनि. छिकतार वधाइण वारनि क़दमनि खां पासो कयो वञे.

0: ईरान यूए के पारसी मुल्क तौर न पर दुश्मन थाक तौर ऐसे तो यूए ईरान खिलाफ जंग में दुश्मन के तेहरान बाबत अहम जान दिनी है। ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर अली खिजरियान है तो यूए के जंगी जहाजन भी सीधे रीत ईरान से हमला किया हाँ सिक्योरिटी हिकमत अमली में यूए के भी शामिल कर जड़ी तरह अजमेर में दुश्मन के थाकन के निशानों बनाया पे वे अड़ी तरह यूए में मौजूद अदन के निशानों बनाया वो वरी वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाबत इजलास बुनियादी ढांचे तालीम ट्रांसपोर्ट ए सनती तरक्की वन मनसूबन की मंजूरी दिनी वही। सिंध में गाड़ियों की फिटनेस बाबत इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने जो फैसलो मुराद अली शाह चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत अहम मनसूबन जो कम जारी है नवन मनसूबन से भी कम जल्द शुरू थो जैसा सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी इंदी। हक की जंग में कौम मुतहद फौज से कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही पाकिस्तान राफेल जहाज के राय भारत जो गुरूर बिठे में मिलाया सुषमा वाले वफाकी वजीर अता तारर चाहे तो पाकिस्तान के भरपूर जवाब बाद भारत चैन कलाक में शिकस्त तस्लीम कई सजी दुनिया पाकिस्तान की कामयाबी भारत की शिकस्त की शायदी दई रही है। कनबोध खान में औरत भी मासूम बारन समेत फुलेली किनाल में टपो दई आबघात कर औरत बारन जा लाश थे पुलिस मुजिब आबघात कदड़ औरत की सुणप श्रीमती रतना बाई निंगरी आशा ए निंगर संजय के नारन से थी है। आबघात कदड़ औरत बार जूसी लाखाट जी जे कोली गोठ जा रहवासी है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
4: सोना साईं कुछ खबर अथव
5: छा थियो आहे सोणी
4: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
5: सोणी इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोने पंहिंजी पुरानी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारन डा अजु ही खणी पयो वणा उहे अधु कीमत में पुरानी बैटरी में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लगाए बैटरी के सफा नओं करे छॾींदा
4: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त खराब कोने थींदी
5: न न सोणी कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि
4: साईं जल्दी करियो हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो
5: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाराए नओं बणायो असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे कराची बैटरी सर्विस एड्रेस मोहनी बाज़ार झूलेलाल बिरयानी नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी नवाबशाह मोबाइल नंबर 03018457919।
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
6: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: सिंध के माथे का झूमर
8: DFM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: GFM 88
5: नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

ये गंढे सजन तो नाता छिना।

0: इट्स 5 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: ॿिनि हंधनि खे निशानो बणायो आहे. हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करण नाहे. अमरीकी जहाज़नि ते हमलनि बाद ईरान ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई आहे. ईरान जे ख़ातम लंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिबि ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलनि जो जवाब ॾिनो आहे. अपना हुरमुस जे ओभर ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फ़ौज ॿेड़नि खे निशानो बणायो वियो, जिन सां खेनि घणो नुक़सान पहुतो आहे.
4: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
5: Could you give us an update on what is the latest in
4: those talks? No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
3: झड़पनि ऐं हमलनि बावजूद ईरान सां चकबंदी बरक़रार आहे. तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि. वाइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका जा 3 जंगी ॿेड़ा अपनाए हुरमुस पार करे विया आहिनि. जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो. ट्रंप जे हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जीवा खान. सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो.
4: Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
3: सिफारती हल मेज ते ईंदो आहे त अमरीका गैर ज़िमेवारो फ़ौजी एडवेंचर कंदो आहे. जेके सबब जेके बि हुजनि, ईरानी क़ौम कंहिं बि दबाउ तोड़ी धमकियुनि आड़ो न चुकंदी. तेहरान शहरियुनि जे दिफ़ा लाइ 1000 सैकड़ो तयार आहे. समाजी वेबसाइट एक्स ते जारी कयल बयान में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त ईरान जे मिज़ाइल प्रोग्राम बाबति अमरीकी CIA जी रिपोर्ट बि ग़लति आहे. ईरान वटि मिज़ाइल सलाहियत 75% न पर 120% आहे. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सिंगापुर जे परडे॒ही वज़ीर व्यून बालाकृष्णन सां राब्तो. अमरीकी हिरासत में मौजूद ईरानी बहरी जहाज़नि जी पाकिस्तानी ऐं ईरानी अमले जी वापसी लाइ सहकार करण जी दरख़्वास्त. इसहाक़ डार चयो त मामले ते ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखची सां बि राब्ते में आहियां. पाकिस्तान ईरान शहरियुनि जी महफ़ूज़ वापसीअ लाइ सहूलत फराहम करण लाइ तयार आहे. अमरीका पारां ज़ब्त कयल ईरानी ॿेड़नि ते 11 पाकिस्तानी ऐं 20 ईरानी शहरी मौजूदु आहिनि. में ईरान मुखालिफ़ अमरीकी ठहराउ रद. रूस पारां ठहराउ ख़िते में चिकटाण वधाइण जी कोशिश करार. गडि॒यल क़ौमनि में रूस जे मुस्तक़िल नुमाइंदे वेसली नेबेज़िया ईरान ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ो बयानियो ठाहिण वारी हर कोशिश खे रद्द कयूं था. अहिड़ी ठहराउ जी हिमायत न कंदासीं जेको ख़िते में जारी बहरान जे असल सबबनि खे नज़रअंदाज़ करे. विच ओवर में बहरी सलामती हिकु तरफ़नि क़दमनि सां मुमकिन नाहे. तकरार जो ख़ात्मो ऐं फ़ौजी कार्रवायूं रोकण ज़रूरी आहिनि. चिकटाण वधाइण वारनि कदमनि खां पासो कयो वञे. चीन अपनाए हुरमुस में चीनी बहरी ॿेड़े ते हमले जी तस्दीक करे छॾी. चीनी परडे॒ही वज़ारत मूजिबि तेल सां भरियल चीनी बहरी ॿेड़े खे निशानो बणायो वियो आहे. ॿेड़े ते चीनी अमलो सवार हुयो. अमले जे ज़ख़्मी थियण जा इतला नाहिनि मिलिया. मामले खे वधीक ॾिसी रहिया आहियूं.

0: बिल्कुल, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ये देखिए गाड़ी भी मेरी प्राइवेट है और मेरे पीछे कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों, बाइक अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलरली इंशाल्लाह इस्तेमाल करूंगा, बहुत बड़ा मजा आया चलाने में।
1: इफ़ाचारी मुहिम में कराची जे मेयर बुर्जा वहाब जे सबनी के बात चैन गाड़ियन जे प्रोटोकॉल में बिना हेलमेट जे मोटरसाइकिल ते सिंध असेंबली आमद। बुर्जा वहाब चयो आहे त बाइक ते आयो हुयस, को भी प्रोटोकॉल न हो, हाणे जाती गाड़ी ते वापस वेंदस, मोटरसाइकिल जो लाइसेंस ऐं हेलमेट भी वठंदस। टंडो मोहम्मद खान में औरत बिन मासूम बारन समेत तुलेली केनाल में टपो डेई आपकात करे छो, औरत ए बारन जा लाश रथ पुलिस मूजिब आपकात कदड़। औरत की सुणप श्रीमती रत्नाबाई नींगरी आशा ए नींगर संजय के नाले साथी है। आपकात कदड़ औरत ए बार यूसी लाखाट के कूली कोट जा रवासी है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: सोना साई, कुछ खबर अथव?
7: छा थियो आहे सोणी?
6: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे, नई बैटरी कदे आणींदा?
7: सोणी, इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारन ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
6: साई, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
7: न न सोणी, कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि।
6: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो।
7: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS, ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो। असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे। कराची बैटरी सर्विस, एड्रेस मोहनी बाज़ार, झूलेलाल बिरयानी, नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल, सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी, नवाबशाह। मोबाइल नंबर 03018457919।
8: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर से हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे और राबते के लिए 0327-99-84-763।
9: अजरक के रंगों से रंगी,
10: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
9: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
10: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 03-3678-188.
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: महसूस।
1: असांजा पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
2: केॾो सियाणो पुट आहे मुंहिंजो।
1: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
3: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तनि खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं।

0: बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखिन जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-760-63।
5: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: छा अव्हा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर सुमेरा बिरोही MBBS FCPS कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़कानो माहिर
1: अज ट्रे चार ही थ्यान भच इते त सफा क्यामत लगी भैया
2: इते हाने सफा है जी
1: हां अल्लाह कंदो त ढरी थी या गर्मी आई थोड़ो मौसम सुठो थिंदो अच्छा यो बता गानो तो हलाया आदि ज़ैनब जी फरमाइश से कहन नाल था करना चाहो
2: गदन ये पप्पू पिता भी जे
1: सिर्फ पप्पू पिता भी जे
2: उसा दानो गदन भी
1: आ अच्छा अच्छा अच्छा बेओ
2: वकार पिता ही सतार पिता ही
1: वाह वाह वाह गुड दिमाग ते जोर दियो मतलब या भी निकरन
2: या अपना घर
1: जेगा बुधन ता उन सबनी दिनाले है ना
2: थैंक यू
1: निसार भाई थैंक यू सो मच हमारे साथ निसार भाई और जनाब निसार भाई के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे कॉल जनाब लेते शो की एक और अस्सलाम वालेकुम
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारा भाई केर सा सबनी सा गडो गड जी जी बिल्कुल वापडा में थोड़ी कॉल कई आप
3: अच्छा
1: बिल्कुल प्रोग्राम तो क्या कुरान खड़ा भला
3: अच्छा
1: कहीं के नाले करना चाहता केड़ो मुमताज मलाई जो गानो अच्छा मुझे प्यारा भा कें नाले तक करना चाहे वो गानो
3: रियाज
1: हुसैन ओके रियाज भाई मां हाने एकडो बियो गानो तो हलाया उन जे बात आंजी फरमाइश से सलाह जरूर पूरी करना ठीक है दा
3: अच्छा एक मेहरापुर या एक लाड़कानो में हले
1: तो नहीं नहीं यो 88 सखर में हले तो पर मेहरापुर लाड़कानो जिते जिते भी 88 बुझो पे वनी लाड़कानो मीरपुर खास हैदराबाद सब जगह ते मां हला तो इन वक्त नेटवर्क ते आप
3: अच्छा सखर नेटवर्क एटी के अच्छा इन ते मना आता ते लेसन पुराना बुंदा राउ बिल्कुल
1: अच्छा माशाल्लाह
3: तो असा के जहां मंतात रे मलाई नताब करा सबो असा के यो मनोर मलाई के था
1: जरूर मुझा प्यारा भाई जरूर बुधरायंदम जरूर इंशाल्लाह
3: ठीक है इंशाल्लाह हां मैं बोल रहा हूं हां तो मतलब मैं बोल रहा हूं
1: ओके ओके मुझे प्यारा भाई ओके ओके ओके
3: ओके मेहरबानी बाबा
1: थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यारे से रियाज भाई तो मुझे ब्रेक भी नहीं चलाने दे रहे थे खैर एनीवे हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आप गाना सुनेंगे जैनब की फरमाइश पर जैनब की फरमाइश के बाद हम मुनव्वर मुलाई और मुमताज मुलाई चलाएंगे जो कि हमारे रियाज भाई की फरमाइश पर होगा
4: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM 88 की आवाज
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया कि जिन्होंने इंतहाई कम मुद्दत में स्टेट बैंक की खुसूसी पेशकश रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार कर पाया वतन से दूर होकर भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी से बेहतरीन मुनाफा हासिल किया आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं
6: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहा भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
7: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे?
4: मैकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: आज शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद मरीजन जो मुआइनो कर रहे आहे। हर किस्म के आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी, बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज कर रहे आहे। प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान रोजाना सुबह 10 का शाम 5 ताई। जुम्मो मोकल एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर राब्ते जे लाए 03-26-22-00-440
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खिबसे की बनी है आवाज
4: जीए FM 88 नेटवर्क।

0: ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आप जितने हंसी हैं आप खुद भी नहीं जानते, अरे जनाब ना जानते हैं ना मानते हैं, खैर कोई बात नहीं, जान भी जाएंगे मान भी जाएंगे। आपका अपना अशफाक आपके साथ मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। और जनाब अब हम लेते हैं शो की एक और कॉल और कहते हैं अपने कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम। केरदास सबनी संग असद सकरण खां गलायो पिया, कड़ा हाल चाल है असद तांजा?
1: बिल्कुल
0: असद तांजी वॉइस के छा थे वाय सफा माना इया लगो पियो त जण ता ते कोई मानू बैठो आ तांजी आवाज ही नथी निकरे। हेलो
1: हेलो असद कलाम उधरायो
0: केड़ो केड़ो
1: वंतान मोलाने जो कलाम उधरायो?
0: हां हुजूर साईं हाजिर, हियर त बुधायो तहां पांजी थोड़ी आवाज के ठीक कयो तहां के जरूर मुंतजर मलाई बुधाया तो तहां अगर कोई गाय बुधाइंदो तो तहां जी मेहरबानी। गाय बुधाइंदो मुमताज मलाई तुम भी हलो तेना चाहो थैंक यू सो मच अदा पांजो खास ख्याल रखो दुआउन में याद रखो। ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हमारे साथ है जनाब इस वक्त बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं इस वक्त जो कि अपने ट्यूशन से आने के बाद मुझे सुन रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे से भतीजे हैं जनाब लाला फुरकान। हमारे साथ अभी बहुत प्यारे प्यारे से भतीजे हैं जो कि अभी ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं, लाला फुरकान खान जमाली, दादा शेर जमान जमाली, फैजान खान जमाली, सुफियान खान जमाली, हसनैन खान जमाली, इब्तिशाम असद जमाली, एहतिशाम असद जमाली और रईस इनामुल्ला खान जमाली। तो ये तमाम रईस और जनाब वडेरे और छोटे मोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको हम थैंक्स करना चाहते हैं कि वो इतने प्यार से और मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतने प्यार और मोहब्बत से सुनते हैं और टोले टोले की सूरत में इस वक्त हमें सुन रहे हैं, बहुत घेरा बना के बीच में रेडियो रखा हुआ है। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए और यूं ही इंजॉय करते रहिए। थैंक यू बेटा। तो जनाब आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और यूं ही इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यूं ही इंजॉय करते रहें। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब बहुत प्यारी प्यारी सी हमारी भतीजी मौजूद हैं इस वक्त जो कि हमें सुन रही हैं, कावी कामरान शेख जो कि इस वक्त हमें सुन रही हैं।

0: that is, it's they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, huh? But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
1: झड़पा ऐं हमलनि बावजूदि ईरान सां जंगबंदी बरक़रार आहे. तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि. मुआदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो. अमरीका जा डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी बेड़ा अपना हुर्मुज़ पार करे विया आहिनि. जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो. ट्रंप जी हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जी वाखाण. सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो. अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अॼु ईरान जो जवाब मिलणु घुर्जे हा, पर हिन वक़्त ताईं को बि 75 न पर 120 सैकड़ो वधीक आहे. ईरानी अवाम जे दिलि सां वरी सलाहियत 28 फरवरी जी भेट में 75 न पर 120 सैकड़ो वधीक आहे. ईरानी अवाम जे दिलि लाइ असांजी तयारी 1000 सैकड़ो आहे. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो सिंगापुर जे परडेही वज़ीर वियन बालाकृष्णन सां राब्तो. अमरीकी हिरासत में मौजूद ईरानी बहरी जहाज़नि जी पाकिस्तानी ऐं ईरानी अमले जी वापसी लाइ सहकार करण जी दरख़्वास्त. इसहाक डार चयो त मां हुन ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखी सां बि राब्ते में आहियां. पाकिस्तान ईरानी शहरियुनि जी महफ़ूज़ वापसीअ लाइ सहूलत प्राप्त करण लाइ तयारु आहे. अमरीका पारां ज़ब्त कयल ईरानी ॿेड़नि ते 11 पाकिस्तानी ऐं 20 ईरानी शहरी मौजूदु आहिनि.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां. GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: तो ना तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो किरु शोक हो ना तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो.
5: तू आज भी हसी
4: थोरो पाए त ॾेखार.
6: न मां मां थकी पई आहियां.
4: न पुट, ही थक न आहे, रत जी कमी आहे. ॾिस त केॾो न फिको थी वियो आहे तुंहिंजो चहिरो.
6: छा कयां मां?
4: 6 महीना थी विया आहिनि पुट, तूं उमीद सां आहीं. ऐं हाणे वञी तो शुरू कई आहे फौलाद जी गोरी. कचूं भाॼियूं खाईंदी कर पुट, तोखे ख़बर आहे असां त मेवनि जूं खलूं बि खाई वेंदा हुआसीं. उन्हनि सां ई त खून ठहंदो आहे. इन सां न तोखे कुझु थींदो ऐं न ई ॿार खे. पुट, हाणे तूं मां थियण वारी आहीं. पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी आहे.
5: मेरी बाते तेरे ज़िम्मे अब ये तुझको निभानी है.
7: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
8: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो. हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयारु कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो. पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूस करियो. हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो. हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज.
9: सोना साईं, कुझु ख़बर अथव?
10: छा थियो आहे सोणी?
9: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे. नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
10: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरीअ जी ज़रूरत ई कोन्हे. पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा. उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा.
9: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
10: न न सोणी, कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि.
9: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो.
10: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो। असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे। कराची बैटरी सर्विस, एड्रेस मोहनी बाज़ार, झूलेलाल बिरयानी, नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल, सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी, नवाबशाह। मोबाइल नंबर 03018457919।
11: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 03279984763।
12: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Hello, Varna. खबर न मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो होंदी आया
4: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है
5: सोच

0: चैन है तता उन के रोज अंडा खाराए जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: आप सुन रहे हैं सिंध की आवाज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: गुलाम रसूल मरी
1: है। सही सही सही, थैंक यू खालिक भाई, मैं आप प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश तो क्या। थैंक यू, हमारे साथ है जनाब इरशाद मलिक और जनाब बहुत से लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहिए और हमें यूं सुनते रहिए। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम। केरसा सबनी सा गडो
0: रहमान अली चंबानी।
1: रहमान भाई केड़ा हाल चाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सही तां बुधायो पुछायो।
1: सफा मजे में, सफा मजे में। यो बुधायो त छा पिया कयो, केड़ो कम कंदायो?
0: बस फिलहाल तो ताजो प्रोग्राम बुधो पिया, डाडो एंजॉय कियो पिया, डाडो मजेदार प्रोग्राम ताजो।
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, त की हले तो तां कदा की लगे तो प्रोग्राम?
0: तमाम जबरदस्त है, तमाम बेहतरीन असली।
1: अच्छा बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 शाम के ढलते साए, और गर्मी ने काम होने का नाम नहीं लेना। खैर क्या कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं कि ठंडी ठार हवाएं चल जाए। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, दिल से करे यार इरफान, खुश के आएगा।
1: इरफान देखो मैंने अभी याद किया आपको,
2: अभी याद किया, मैंने अभी शो सुना
1: हाँ?
2: और मेरी कॉल भी लग गई है शाक भाई, बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है।
1: अच्छा मैं आप बताएं, सुनो मैंने याद करके गलती तो नहीं की ना? आई एम जस्ट किडिंग यार। और सुना इरफान कैसे हो?
2: वो सिंधी में एक कहावत है ना,
1: हाँ हाँ,
2: इरफान
1: भाव
2: बस अचाक बात तुझे प्रोग्राम में न पे शामिल थी सको सच सच बुधाव तो करे करे जो फोन धोखो पे करे ना
1: स्टेटमेंट गानो गाइंदो मां तुंजो आया जानी तुके वहम आ जायो। अच्छा इरफान भाई तां जो कम कार किया तो हले आई, तां जी पढ़ाई भी आई थिंक हलंदी हुंदी त की हले थी?
2: ना बिल्कुल असांजी पढ़ाई ना है, बाकी कम कार सुठो थो हले। तो अश्ताक भाई
1: जी जी,
2: हाँ सरमत सिंधी जो जेको सॉन्ग तव्हांखे प्ले करणो आहे खबर अथव कहिड़ो प्ले करणो आहे?
1: मारुआड़ा जांगीअड़ा।
2: न छो त सिंगर तव्हां ॿियनि खां पुछियो आहे त सॉन्ग असां खां?
1: एक्ज़ेक्टली, उन भाउ असांखे गानो बि चयो आहे मारुआड़ा जांगीअड़ा।
2: मुंहिंजो सॉन्ग ॿुधो त सही न?
1: ॿुधायो ॿुधायो।

0: કેત્રી જમા ખાસ કરીની તમામ સુખી શાયરી આ વાત
1: ભાઈ શું વાત હે તમા બડા સુરીલા થી આવ્યા છે કેડા ગમ મિલા થા મેની ઇની અરસે મે
0: ટાઈમ
1: ના બુધાઈ જાય ના હવે એ બધા ગાનો કેમ લાગણ ચાહો
0: છા
1: ગુજરી વઈ
0: કપ્તી બી ગુજરી વઈ
1: અચ્છા ઓકે આગે આગે આગે આગે
0: કપ્તી અચ્છા
1: ઓકે માચો જેકા મેહું ખાંદી કટ્ટી ઉહા
0: અચ્છા
1: ઓકે ઓકે સહી આ કંઈ લાઠ કરણ ચાહો
0: ॾाढी ख़ुशी थी हाणे 22-23 मिंट थी विया आहिनि मां चवां थो कुझु सॉन्ग बि हले
1: त
0: हिन जे करे मुख़्तसिर ॻाल्हायूं सॉन्ग बि तमामु सुठो आहे जीअं सॉन्ग हलंदो न मां रेडियो जो आवाज़ु कोन
1: कंदुमि
0: मज़े सां इंजॉय कंदुमि हिन सॉन्ग खे सलाम तव्हांखे तव्हांजी पूरी टीम खे हुन खां पोइ सिस्टर मिसिस अली फौजिया फरज़ाना राय कुमरो हाफिज़ गुलाम अहमद सांबल बचल चंबाणी बाक़ी जेके दोस्त मिलनि था सभिनी खे इरफान अली चइबो
1: वालेकुम सलाम इरफान साहिब जिते बि रहो ख़ुशि रहो थैंक यू सो मच अदा
0: थैंक
1: यू हमारे साथ है जनाब बहुत ही प्यारे से कॉलर इरफान जो कि बदर से बाद आए थे तो जनाब आप इतने अरसे मत लगाया करें जो भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं हमारे साथ आ जाए कर जी हफ्ते के हफ्ते यानी कि जुम्मे के जुम्मे अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो यार ये जो कॉलर आके बात नहीं करते ना फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉल लगे आप बात भी करें और आप हमारे साथ आए भी अस्सलाम वालेकुम हेलो चलें जनाब कोई बात नहीं आप बात नहीं करना चाहते हैं और आप कॉल तो मिला लेते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते खैर एनीवे लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम चलें जनाब हाँ केड़ा हाल है ना ठीक ठाक

0: at 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Gloss Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hamay Diamond Gloss Bleach Cream.
2: Noro, nau shehron, Mirpur khas, Larkana, Sakhar, goonj rahi hai har jagah par. Sindh ki awaaz. Ye FM 88 Network.
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घूमती रही हां पहरों भेरो मा

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सजो डी दिसां थी तो के परेशान घुमंदी रही आ पहरो भेरो मां थी रही आ ही ना मुझो भी यो ही हाल हो
2: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: छा अवा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: सोना साईं कुछ खबर अथव
2: छा थियो आहे सोणी
1: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
2: सोणी इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोन्हे पंहिंजी पुरानी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारन डा अजु ही खणी पियो वणा उहे अधु कीमत में पुरानी बैटरी में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लगाए बैटरी के सफा नओं करे छॾींदा
1: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त खराब कोन्हे थींदी
2: न न सोणी कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि
1: साईं जल्दी करियो हाणी वञी बैटरी ठाराए अचो
2: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाराए नओं बणायो असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे कराची बैटरी सर्विस एड्रेस मोहनी बाज़ार झूलेलाल बिरयानी नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी नवाबशाह मोबाइल नंबर 03018457919
0: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8

0: के बाद देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केर पे गलायो कि था पे गलायो।
1: जी सर मैं गलायो तो अब्दुल्ला भंगवार सोहन जी शहर कंदकोट
0: है। वाह वाह वाह अब्दुल्ला भंगवार साहब सोहन जी शहर कंदकोट का गलायो था। ता तमाम यो बतायो कंदकोट वाला सब की है ना
1: और कंदकोट वाला सब सोहा तो सलाम मिला तमाम जबरदस्त मौसम है।
0: वालेकुम अस्सलाम। बाकी कोई कंदकोट में सुटो मौसम आओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंदासे कंदकोट में इन चक्कर भी इंदासे मां पेरी भी तो आयो आया शादी ते वरी हलयो आ अच्छा अच्छा इंशाल्लाह जरूर इंदासे यो बुधायो गानो भलाया तो अहमद मुगल जो केंजे नाले था करना चाहो
1: हां सर मां कुछ दोस्त है
0: जी जी
1: हमने जो दोस्त था सर गवार

0: बात है लुबना, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह ताला। हाँ तव्हांजी आवाज़ तमामु घणी प्यारी आहे। तव्हां जा अला नसीब भला करे, तव्हांखे हमेशह अला साईं ख़ुशि रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लुबना। पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं हमेशह ख़ुशि रहो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, ओके अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ ही जनाब लुबना, और लुबना के बाद अब हम शो को करते हैं पर वाइंड अप और गाना चलाते हैं। जनाब लुबना की फरमाइश पे तो गाना नहीं चल सका, आई एम सो सॉरी लुबना, और हम चलाते हैं जनाब वो वसीम भाई आए थे उनकी फरमाइश पे, चलें एक कॉल ले ही लेते हैं। ले चलें जनाब, अब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आई
0: फाला भा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यारा भा, केरे सा सबनी सांगा दो। अमित मंगार
1: दिल गोटी मिश्री गोडमा।
0: उम्मीद भा।
1: अमीर बख्श।
0: अमीर बख्श साहब केड़ा हाल चाल है न? यार बिल्कुल मैं प्रोग्राम एंड करने वाला हूं, पर मां चम तो आईया काल वठा भला। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर भाई साहब केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आए हो गर्मा गर्मी की? थैंक यू सो मच अदा, ये दुआ कंदा रहो, अल्लाह ताला तांके हमेशा खुश रखे। आए मुझे प्यारा भाई लव यू यार। यो गानो हलायो
1: के यार कलाम भलो बुझायो, भलो कलाम है बिल्कुल, ये भला भलो थी।
0: हां कहीं जनाल थे करना चाहो
1: यार दोस्त हालात मोहम्मद अली माल इतने भंगे तन जो प्रोग्राम दे दे पठान खान तक के यार
0: जी। ओके मुझे प्यारा, थैंक यू सो मच जी। जनाब बाबा ये गाना सुने वसीम की फरमाइश पर, आप अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी। और थैलेसमिया के हवाले से हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट कीजिए और थैलेसमिया के बच्चों को अपना बच्चा समझ कर उनकी जान बचाइए। अशफाक नियाज़ी चाहते हैं इजाजत, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह।

जे खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिब ईरानी फौज अमरीकी हमलन जो जवाब दिनो है। आबदा हुरमुसी ओपर ए चाबार बंदरगाह वेझो अमरीकी फौजी बेड़न के निशानो बढ़ाए वो जिनसा खेन घणो नुकसान पहुंतो है।

0: that is, it's let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? It's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
1: झड़पनि ऐं हमलनि बावजूदि ईरान सां जंगबंदी बरकरार आहे। तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। माइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी वेड़ा अबनाए हुर्मुज़ पार करे विया आहिनि। जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी वेड़ा अबनाए हुर्मुज़ पार करे विया आहिनि। जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो। ट्रंप जे हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण। सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो।
0: Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज हाँ नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज दे कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स

चमकती, नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान दे श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत, चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी एस अखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम सेहत सेहत नंबर के रौनक महफिल सान करे आऊं आया हां जो पंजो मेजबान बाबर शेख इन उम्मीद सां तो आवां बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। अल्लाह पाक अवां सबनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे। अवां जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो। लिसनर्स, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे, जी एफएम नेटवर्क आहे। इन प्रोग्राम में 8 वॻे ताईं अवां जो ऐं असांजो साथ इनशाला ताला जारी रहणो आहे। अॼु जी तारीख़ आहे 8 मई 2026 ऐं जुमे जी शाम आहे 7:12 टाइम थियो आहे, यानी प्रोग्राम अवां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहिया आहियो। लिसनर्स, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर आहे अवां ताईं पहुचाइण लाइ तावन कयो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि, ऐं हेमे नेचुरल्स वारा जेके आहिनि उहे बाक़ाइदा तौर ते इन ॻाल्हि खे कन्वे करण लाइ मूंखे चयो अथनि त हिन जी जेका प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम, इन में शामिलु आहे SPF 30, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटमिन सी, आरबूटीन ऐं ॿिया केतिरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जेके अवां जे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि। बिल्कुलु दोस्तो, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि इन्हनि जे लाइ

इन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त जेको SPF 30 जो शामिल आहे हिन में इहो तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो, यानी सिज जे नुक़सान कार रेस खां महफ़ूज़ रखे पियो। सेकेंडली हिन में जेको कोजिक एसिड शामिल आहे इहो तव्हांजे चहिरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो करे पियो, ऐं ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी ऐं आरबूटीन जेको हिन में शामिल आहे इहो अवांजे चहिरे जे स्किन खे तमामु घणो फ़ाइदो ॾिए पियो। लिसनर्स, विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो, ऐं हिननि इन ॻाल्हि खे ते इंसिस्ट कयो आहे त तव्हां जॾहिं हेमे ब्यूटी क्रीम वठणो त हिक त शहर जी शाही बाज़ार तव्हां वञो, उते तव्हांखे आसानी सां सुठी कॉस्मेटिक्स वारी वटि हेमे ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी। ऐं सेकेंडली तव्हांखे छा करिणो आहे, कुझु निशानियूं हिननि ॿुधायूं आहिनि, उहे निशानियूं तव्हांखे ज़हन में रखी पोइ तव्हांखे इहा परचेस करणी आहे। सो निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि, हिकु त हिन जी डबी गुलाबी रंग जी आहे, ऐं टॉप लेफ्ट साइड तां गुलाब जो गुल छपियल आहे, सो बि गुलाबी कलर में, ऐं हेमे नेचुरल्स लिखियलु आहे ब्लैक राइटिंग में। इहे तव्हां निशानी तौरु ज़हन में रखी करे पोइ तव्हां इहा परचेस करे सघो था। ऐं सिर्फ़ु इहो ई न, तव्हां जॾहिं वठी अचो पिया त हिन सां गॾु पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी जेकी आहे उहा असांखे व्हाट्सएप ते सेंड कंदो, तव्हांजी उहा सेल्फी असीं कुरानदाज़ी में शामिल कंदासीं। ऐं एवरी वीक जेका आहे कुरानदाज़ी थींदी आहे, सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो आहे। त तव्हां बि 500 रुपियनि जो कैश इनाम खटी सघो था सिंपली हेमे ब्यूटी क्रीम सां गॾु पंहिंजी सेल्फी सेंड करे। सो दोस्तों, सेल्फी सेंड करण लाइ नंबर आहे व्हाट्सएप जो 03000113488। इन खां अलावा हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा तव्हांजे शहर में जेकर न मिले या इन मुतालिक़ तव्हांखे का बि मालूमात घुरिजे त तव्हां हिननि जे नंबर ते राबितो करे सघो था। राबते जे लाइ हिननि जो नंबर आहे 03000367135407। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, तव्हां नोट करे सघो था 03-3631-35-470। हिन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था, हिननि खां पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। सो लिसनर्स, बिल्कुलु हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हांखे वधीक बि मालूमात मां ॾींदो रहंदुसि, ऐं इहो बि ॿुधाईंदो हलंदुसि त हिन जी तरीक़ा इस्तेमालु छा आहे। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त अॼु जे प्रोग्राम में सेगमेंट आहे गुजारत गुजरी ऐं अवां जी फरमाइश। बिल्कुलु दोस्तो, इन गुजारत गुजरी सेगमेंट में अवांजे लाइ जेका गुजारत आहे उहा कहिड़ी आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। अॼु जी गुजारत आहे त उहो केरु आहे जेको गूंगो, ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशह सच ॻाल्हाए थो। तमामु सवली गुजारत आहे। उहो केरु आहे जेको गूंगो, ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशह सच ॻाल्हाईंदो आहे, ठीकु आहे। इन जो जवाबु तव्हां प्रोग्राम में शामिलु थी ॾींदो, ऐं अवां जी फरमाइश सेगमेंट में सिंपली तव्हां पंहिंजे फेवरेट सिंगर जी फरमाइश कंदो, जंहिं सिंगर जा वधीक वोट हुया उहो सिंगर मां प्रोग्राम में शामिलु कंदुसि। ऐं कल्ह जीअं मां ॻाल्हि करे वियुसि त अॼु वधि खां वधि तव्हांजी लाइव कॉल्स इंक्लूड कंदुसि, त तव्हां लाइव कॉल करे सघो था। असांजो नंबर आहे 03000113488। सो हींअर प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे, तव्हां कलाम ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहो रौनक महफ़िल में पूरे 8 वॻे ताईं।

0: Glow by Hammy Naturals.
1: जी दोस्तों, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में ज़बरदस्त कलाम तमाम ॿुधो, उमीद आहे तव्हां खे पसंदि आयो हूंदो। सो इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रौनक महफिल प्रोग्राम में अॼु अव्हां जे लाइ गुड न्यूज़ आहे लाइव कॉलर्स जे लाइ, छाकाणि त अॼु व्हाट्सअप जेको आहे न असांजो जवाबु ॾेई बीठो आहे, ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वधि खां वधि प्रोग्राम में शामिल थींदा। ऐं व्हाट्सअप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत, अॼु व्हाट्सअप वारा जेके आहिनि उहे जॉइन न करे सघंदा, बल्कि व्हाट्सअप जे ज़रिए जॉइन न करे सघंदा, बाक़ी लाइव कॉल त नंबर on I call you

0: ॾिसंस पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे, अगरि राति जो तव्हांखे टाइम नथो मिले त ॾींहं में कंहिं बि टाइम जंहिं टाइम तव्हां फ्री हुजो तव्हांखे छा करिणो आहे, चेहरे खे वॉश करिणो आहे, पोइ चेहरे ते हैमे ब्यूटी क्रीम लॻाइणी आहे। जिते दाग दॿा मुहिड़ा हुजनिव उते थोरी वधीक क्वांटिटी में तव्हां हैमे ब्यूटी क्रीम लॻाईंदव, सुम्ही रहंदव, जॾहिं सुबुह जो उथंदव उथण महिल अगेन तव्हां पंहिंजो चेहरो वॉश कंदव, ठीकु आहे। ऐं विद इन 7 days तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट वाज़े तौर ते महसूसु थींदो, तव्हां पाण फील कंदा त यार वाक़ई हैमे त हैमे आहे, ऐं हैमे जो कमाल अव्हांजो चेहरो 14 जे चंड जीअं चमकी सघे थो। जी हा, तव्हां हिन खे इस्तेमालु करे सघो था, देन तव्हां इहो फ़ैसिलो करे सघो था। ऐं असांजा लिसनर्स जेके इस्तेमालु कंदा आहिनि उहे पंहिंजो फीडबैक ॾींदा आहिनि, तव्हां हुननि जी फीडबैक मां पिणु फ़ाइदो हासिलु करे सघो था। ऐं तव्हां पाण ई अंदाज़ो लॻाए सघो था त हैमे जेका आहिनि उहा ॿियनि प्रोडक्ट्स सां बिल्कुलु डिफरेंट आहे। छो डिफरेंट आहे? छाकाणि त हिन में जेके नेचुरल इंग्रीडियंट्स आहिनि ऐं हिननि जो जेको मोटो आहे तव्हांखे नेचुरल गिलो ॾिए पियो, मां सम्झां पियो फ़ाइदे वारो आहे। सो लेट्स सी, फर्स्ट कॉलर असां सां गॾु केरु मौजूदु आहिनि? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जेके आहिनि त अॼु मसलो पिया कनि, बल्कि कॉलर्स बि मसलो पिया कनि जेके मां रिज़ॉल्व करण जी कोशिशि कयां पियो। सो अचूं पिया 888 वारे मैसेजिस ॾांहुं। सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जुनेजो साहिबु जॉइन कयो आहे, लिखनि पिया, बाबर साहब हैमे नेचुरल्स ब्यूटी क्रीम नाइस है एंड जवाब है। ओके जी, आपका जवाब मैंने नोट कर लिया है। और सलाम कहा है आपने नादिर अली गबोल को एंड पठान जुनेजो को। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गनी जुनेजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, क्या हाल है? सिकंदर अली जावरी, अरसलान अली जावरी एंड कामरान अली जावरी, जावरी रिजवान अली जावरी गुट रोशन अली जावरी खां अलीआबाद स्टॉप से हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया जावरी साहब। एंड इन खां अलावा जो है 888 वारा मैसेज थोड़ा स्लो आहिनि, बाक़ी लाइव कॉलिंग जे लाइ हिन बि मूं ऑन कयो आहे, तव्हां कॉल करे सघो था। ऐं लिसन्स, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जो हिकिड़ो इहो बि फ़ाइदो आहे त लेट सपोज तव्हां हैमे ब्यूटी क्रीम कुझु अर्सो इस्तेमालु कयो था ऐं पोइ अॻिते हली इस्तेमालु करणु छॾे पिया ॾियो, त इन प्रोडक्ट जो तव्हांखे हीउ चवंदा साइड इफेक्ट न मिलंदो। छाकाणि त काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कयो था वक़्ती त ठीकु आहे तव्हांखे फ़ाइदो मिले वियो, पर कुझु अर्से खां बाद में उहो फ़ाइदो जेको आहे त साइड इफेक्ट्स में तब्दील थी वेंदो आहे। पर हैमे नेचुरल्स वारनि इहा दावा कई आहे त हिन जी जेका इहा प्रोडक्ट आहे हैमे ब्यूटी क्रीम, या इस्तेमालु करण सां तव्हांजे चेहरे तां दाग धबन निशानात जो ख़ात्मो थी सघे थो ऐं तव्हां पाण जेको आहे न अंदाज़ो लॻाए सघंदव त वाक़ई यार हैमे में जेके नेचुरल इंग्रीडियंट्स आहिनि इहे अव्हांजे चेहरे जे स्किन खे बाक़ाइदा तौर ते फ़ाइदो ॾियनि पिया। सो फर्स्ट कॉलर मौजूदु आहिनि, लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहिनि? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: साईं, केरु था ॻाल्हायो भाउ? अदा अब्दुल मजीद, कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? अदा इहो ॿुधायो त तव्हांजी कहिड़ी फरमाइश आहे, कहिड़ो सिंगर ॿुधणु चाहींदव? अहमद मुगल, ठीकु आहे। सो अहमद मुगल कंहिंखे डेडिकेट कंदव अदा? ठीकु आहे, ठीकु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। सो दोस्तो अहमद मुगल जी हिननि फरमाइश कई आहे, लेट्स सी अॻिते फरमाइश कंहिंजी अचे पई। मां टे कॉलर शामिल करे पोइ उहो सिंगर प्ले कंदुसि तव्हां सभिनि जे लाइ। ऐं लिसनर्स, तव्हांखे मां हेल्पलाइन नंबर बि ॿुधाईंदो हलां, छाकाणि त काफ़ी सारा अहिड़ा लिसनर्स आहिनि जेके चवंदा आहिनि त बाबर भाउ असां काफ़ी जांच कई आहे पर असांजे शहर में ॻोठ में इलाइक़नि में हैमे ब्यूटी क्रीम नथी मिले, उन जे लाइ छा करणु घुरिजे? त बाबा सिंपली तव्हां इन्हनि जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कंदव। इन्हनि जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407। जी हा, 0336-7135-407। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं पुछी सघो था त जी अव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे नेचुरल्स अवेलेबल आहे। सो लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहे? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अदा केरु था ॻाल्हायो भाउ?
1: शिकारपुर खां बाबर साहब जमाल दीन भयो।
0: साईं भयो साहब, छा हाल आहे? ठीकु आहियो? ममताज लाशारी, ठीक है। ऐं इहो ॿुधायो हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में अव्हां जो छा रायो आहे? ठीक आहे, तव्हांजी महिरबानी भाउ शामिल थियण जे लाइ। थैंक यू। त दोस्तो ममताज लाशारी एंड कहिड़ो अहमद मुगल, इन ॿिन्हिनि मां हाणे कहिड़ो सिंगर प्ले करिणो आहे इहो हाणे ही कॉलर डिसाइड कंदो। सो लेट्स सी, अस्सलाम वालेकुम। साईं अलाह जो शुक्र, तव्हां पंहिंजो ॿुधायो। साईं साईं ख़ुशि आहियो न अदा?
1: الحمدللہ
0: الحمدللہ اللہ جو شکر ہے. سائیں احمد مغل یا ممتاز لاشاری؟

0: मैसेज आया है 888-1-3 चौन था बाबुल भा अहमद मुगल पे लेके आओ तो बेहतर आधा 888-1 लाइक गुजार था बाकी फरमाइश आए लाइव कॉलर से लाए सो लेट्स सी लाइन ते गरी के रहे ना सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम बाबुल भा खले क्लास आ गए तो जरूरी काम
0: साईं मुझे खुश आयो ना दादा
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैर बात आ रहे
0: हो अल्हम्दुलिल्लाह साईं अहमद मुगल बुधंदो या मुमताज लाशारी
1: साईं मुमताज लाशारी
0: ओके केंजे नाव कंदो चलो अवां जी महरबानी भा शामिल छा तो दोस्तों हियर जेको आए तो मां अवां जे लाए मुमताज लाशारी जो कलाम प्ले कयो आए तो आई कलाम बुधो ए मुसां गड रहे जो रौनक महफिल में आई मां तवां के बुधाइंदो हलां त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आए अवां इस्तेमाल कंदो त विद इन 7 डेज तवां के न जो रिजल्ट मिली सके थो आई तवां पाण जेको आए त अंदाजो लगाए सकंदो त ही प्रोडक्ट बे प्रोडक्ट्स का बिल्कुल डिफरेंट आए ही कलाम ॿुधो मुमताज लाशारी जी आवाज़ में ऐं रौनक महफ़िल में पूरी 8 वॻे ताईं मूंसां गॾु रहिजो।

0: हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिकु क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबुटीन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: बिल्कुल जबरदस्त गानो तव्हां शमन अली मीराली जी आवाज़ में ॿुधियो उमेद आहे अव्हां खे पसंदि आयो हूंदो सो प्रोग्राम में बाक़ी 15 मिंटनि जो साथ रहियो आहे ऐं गुजारत अॼु जी चए पई त उहो केरु आहे जेको गोंगो ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर जेको आहे त हमेशह सच ॻाल्हाए थो इन जो जवाबु तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾियो पिया ऐं अव्हां लाइव कॉलेज ज़रिए जॉइन करे सघो था कल जीअं मूं ॻाल्हि कई त सुभाणे मां वधि खां वधि कॉलर्स खे शामिल कंदुसि त अॼु कॉलर जो वारो आहे उहे लाइव कॉल करे सघनि था नंबर आहे 03000 11 3488 ऐं मैसेज जे लाइ तव्हां SKR लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 8881 ते यानी 8881 ते अव्हां सेंड करे छॾियो दिस इज़ हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे इन जो हिकिड़ो इहो बि फ़ाइदो आहे त इहो तव्हांजे चेहरे ते अगरि पिंपल्स आहिनि या एक्नी जो प्रॉब्लम आहे या डार्क सर्कल्स आहिनि या वरी चेहरे ते झुरियूं अची वियूं आहिनि त इहे तव्हांजी दूरि थी सघनि थियूं ऐं गॾु गॾु अधा हुजनि या अधी हुजनि यानी हर टाइप जी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे त तव्हां इन जो फ़ाइदो हासिलु करे सघो था ऐं गर्मियुनि जी मुंद में स्पेशली ही तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾे पई हाणे ईअं हरगिज़ न करिणो आहे त तव्हां हेमे ब्यूटी क्रीम लॻाए वरी पिया ईअं उस में घुमंदा वरितो ऐं चओ असांखे सन प्रोटेक्शन मिले पई ईअं नाहे ठीकु आहे तव्हांखे इन जो जेको तरीक़ो इस्तेमालु हिन रिकमेंड कयो आहे सभ खां सुठो हिन तरीक़ो इहो ॿुधायो आहे त राति जो सुम्हण खां पहिरियां चेहरे खे तव्हां वॉश करे वठो देन चेहरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻायो जिते दाग दॿा मोइड़ा आहिनि उते वधीक क्वांटिटी में लॻाइणी आहे पोइ तव्हां जॾहिं सुबुह जो उथो पिया त चहिरो वॉश करे वठंदव ऐं अगरि तव्हां राति जो नथा लॻाए सघो तव्हांखे टाइम नथो मिले त तव्हां ॾींहं में को बि टाइम यानी कलाकु कढी करे पंहिंजे चहिरे खे वॉश करे पोइ चहिरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं पोइ तव्हां कलाक खां बाद में चहिरो धोई वठो हाणे तव्हां मुसलसल कंदा ईंदव न जॾहिं तव्हां रुटीन लाइफ में हेमे ब्यूटी क्रीम खे शामिलु करे छॾींदो देन तव्हांखे सन प्रोटेक्शन मिलंदी अवांजी स्किन खे पोइ जेके सिज जा मुज़िर असरात आहिनि उन खां प्रोटेक्शन मिली सघे थी छाकाणि त हिन में SPF 30 शामिलु आहे या हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि जी दावा आहे ऐं हिन दावा ते ई पूरा लथा आहिनि यानी हिन जो वरी फ़ैसिलो कयो आहे असांजे लिसनर्स जिन इस्तेमालु कई आहे हुन जो फीडबैक तव्हां पाण ॿुधी सघंदा आहियो त हेमे ब्यूटी क्रीम हुननि खे केतिरो न बहितर फ़ाइदो ॾिनो आहे त तव्हांजे शहर में ईज़ीली तव्हांजे वेझे स्टोर ते अवेलेबल आहे जेकॾहिं नथी मिले या वधीक तव्हां का बि मालूमात हासिलु करणु चाहियो पिया त जी हिननि जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03671 3540 7 जी हा 03671 3540 7 ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था सो हींअर प्रोग्राम में जेको आहे त मां कुझु कॉलर खे शामिलु कयां पियो बल्कि असांजो लाइव कॉलिंग वारो नंबर थोरो हैंग थी वियो आहे हिन खे मां हाणे थोरो सही कयो आहे तव्हां हिन ते कॉल करे सघो था नंबर मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए चुको आहियां 03000 11 3488 सो हिकिड़ो ॿियो मुंहिंजी प्लेलिस्ट में गानो आहे जेको मां अव्हांजे लाइ प्ले कयां पियो तव्हां गानो ॿुधो फ़ाइज़ा अली जी आवाज़ में ऐं इंजॉय कयो ऐं रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं गॾु आहियूं गुजारत बि मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां ऐं हिन गाने जे दौरान ई तव्हांजी लाइव कॉल्स इंक्लूड कयां पियो मूंसां गॾु अचो बल्कि गाने खां पहिरियां ई लाइव कॉलर्स खे शामिल कयां पियो छाकाणि त हाणे लाइव कॉलिंग वारो नंबर ओके थी चुको आहे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अलहमदुलिल्लाह दादा तव्हां पंहिंजो ॿुधायो भाउ जी जी अदा कहिड़ो हाल आहे ख़ुशि आहियो न भाउ जी अलहमदुलिल्लाह अदा जेको आहे त अव्हांजी फ़रमाइश कहिड़ी आहे सेगमेंट अव्हांजी फ़रमाइश में कहिड़ो सिंगर ॿुधणु चाहींदव ममताज़ मौलाई अदा ॿीहर ॿुधायो आवाज़ क्लियर कोन्हे तव्हांजो तव्हांजो आवाज़ क्लियर कोन्हे सॉरी अदा तव्हांजी कॉल खे डिस्कनेक्ट कयां पियो ऐं नेक्स्ट कॉलर जी तरफ़ मूव ऑन कंदुसि लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि सो नंबर आहे 03000 11 3488 अस्सलाम वालेकुम जी केरु था ॻाल्हायो दादा जी लॻारी साहब अव्हां जेको आहे त कहिड़ो सिंगर ॿुधणु चाहींदव ममताज मौलाई। ओके, कैसे नाव करण चाहिदो? जी जी भा,
2: एतरा तेरो ग्राम कंदा हो हर असर आवाज कोन जो हत निसेवा जे खराब दिया छ मस्त दादो परेशान।
1: अच्छा, केडो केडो इलाको है ताजो?
2: हर पर दादू,
1: दादू में
2: इला दादो खैरपुर नाथन शाह।
1: खैरपुर नाथन शाह, चलो अदा ठीक है। असा रिसू पे आता जी जी ओके अदा ओके तांट नेटवर्क जा सिग्नल सी कंप्लीट कोनन तां जो आवाज ही क्लियर कोन तो जे बहरहाल मां कोशिश कां पियो तो तमा जो क्लाइन इन मसले के रिजॉल्व कराया। सो हियर जे कहते दोस्तों ममताज मौलाई जी फरमाइश आई है, सो मां ममताज मौलाई जी आवाज में गानो तो प्ले किया तो आई गानो बुदो एंजॉय कयो आई रौनक महफिल में मोसा गड रहे जो पूरी 8 बजे ताई। सो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग।

हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिकु क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमालु करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

सोनी सर बिल्कुल जबरदस्त गानों तव्हां एंजॉय कयो ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु बि तक़रीबन पंहिंजी पुराणी ते पहुची चुको आहे. व्हाट्सएप जा वॉइस नोट्स हुया मूंखे न हुया, पर मूंखे अॼु थोरी कमी महसूसु थी, छाकाणि त वॉइस नोट्स हूंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे. बहरहाल अॼु लाइव कॉलर जो वारो हुयो ऐं लाइव कॉल्स शामिलु करण जी मां भरपूर कोशिशि कई. प्रोग्राम में गुज़ारत हुई त उहो केरु आहे जेको गुंगो बोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशह सच ॻाल्हाए थो, त दोस्तो उहो आहे मिरर यानी आइनो. ठीकु आहे, ऐं जिन जिन असांखे 888 ते सही जवाबु ॾिना हुन में सभ खां पहिरियां अब्दुल गनी जुणी जो साहबु आहिनि ऐं ॿियनि मूंखे कंहिं बि जवाबु कोन ॾिनो आहे, जस्ट ईअं मैसेज मोकिलिया अथनि. सो अब्दुल गनी जुणी जो साहब जे लाइ मां वेंदे वेंदे प्यारो प्यारो गानो प्ले कयूं थो वञा. ऐं दोस्तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारा जेका आहिनि अवां जो वेट कंदा आहिनि अवांजी सेल्फीज़ जो, स्पेशली तव्हां जेके हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा आहियो ऐं सेल्फीज़ मोकिलींदा आहियो, त ही जेके आहिनि अवां जे इन फीडबैक जो इंतज़ारु कंदा आहिनि. छाकाणि त हिननि तमामु घणी महिनत खां बाद में मार्केट में इहा प्रोडक्ट लॉन्च कई ऐं मार्केट में जॾहिं इहा प्रोडक्ट लॉन्च कयनि त इन जो फीडबैक जे लाइ इहे मुंतज़िर हिन लाइ हूंदा आहिनि, त हिन में जेके SPF 30 कॉजिक एसिड ऐं ग्लूटाथायोन शामिलु कयो अथनि. इन जी ख़्वाहिश आहे त इन जो सभई फ़ाइदो वठनि, त तव्हां बि फ़ाइदो वठी करे इन जो फीडबैक ॾेई सघो था. 330 खां 360 रुपियनि ताईं इन जी क़ीमत आहे ऐं तव्हांजे शहर जे वेझे स्टोर ते ईज़ीली तव्हांखे अवेलेबल थी सघे थी. सो दोस्तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि इहा तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे बाक़ाइदा तौर ते इन जो फ़ाइदो मिले पियो ऐं हर टाइप जी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, स्पेशली तव्हां इन उन्हारे जे मुंद में इनखां सन प्रोटेक्शन वठी सघो था. त दोस्तो वधीक मालूमात लाइ इन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407. जी हा, 0336-7135-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था. त वेंदे वेंदे तमामु प्यारो प्यारो गानो आहे शैला गुल जी आवाज़ में, अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे. तव्हां गानो ॿुधो, इंजॉय कयो. अॻिले प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त. सदाई गॾु, अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर.

0: हाँ नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जी नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आरबुटिन जेके डियन तवा जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: ईरानी पढ़े वजारत से तर्जुमान इस्माइल बकाई चवाए तो ईरान अमरीकी तजीजन से गौर कर रो है कि हतमी नतीजे से पहुंचासी तो उनको ऐलान कदासी। ईरान परडेही वजीर अब्बास राखी चवाए तो जदे को सिफारती हल मेज से इंदो है तो अमरीका गैर जिम्मेवारो मिलिट्री एडवेंचर कर छी है वो भी सबब हुए पर नतीजो एक ही होंद तो ईरान कें भी सूरत दबाव अग्न न चुका। सीआईए असाजी मिजाइल सलाहित जो गलत अंदाजो लगा असाजी मिजाइल पैदावारी सलाहियत 28 फरवरी की भेट में 75 नफर 120 सैकड़ों है। ईरानी अवाम के दिफा लाए असाजी तैयारी 1000 सैकड़ों है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: सोना साई, कुछ खबर अथव?
3: छा थियो आहे सोणी?
2: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
3: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
2: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
3: न न सोणी, कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि।
2: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो।
3: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो। असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे। कराची बैटरी सर्विस, एड्रेस मोहनी बाज़ार, झूलेलाल बिरयानी, नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल, सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी, नवाब शाह। मोबाइल नंबर 03018457919।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर।
5: हाणे देर नथा कयूं, हलूं था डॉक्टर साहब तरफ़ ऐं उन्हनि खां ॻाल्हि ॿोल करे कुझु मालूमात वठूं था त अॼु असांखे बीमारियुनि जे हवाले सां कहिड़ी ॼाण ॾियनि था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
6: वालेकुम अस्सलाम
5: डॉक्टर साहब, कहिड़ा हाल आहिनि जा?
6: अलहमदुलिल्लाह
5: डॉक्टर साहब, अॼु को जेको पंहिंजो जेको आहे टॉपिक आहे या अॼु को अव्हां कहिड़ो असांखे बीमारियुनि जे हवाले सां असांजे सामिन खे मालूमात ॾींदा?
6: जी बिल्कुलु, अॼु जो प्रोग्राम असांजे प्रोग्राम जे वसीले सां अव्हांखे जेका ॼाण मिलंदी उहा मिलंदी माइदे जी बीमारीअ जे हवाले सां, जंहिंमें असां अव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियूं जेका माइदे जूं आहिनि से उन जे बारे में ॿुधाईंदासीं, जंहिंसां अव्हां सम्झी सघो त इहा तकलीफ़ूं इहा मर्ज़ अव्हां में मौजूदु आहिनि। अव्हांजी जेका दिलि मुतमिन थिए ऐं उन डॉक्टर खां पंहिंजो ट्रीटमेंट करायो, इलाज करायो। ॾिसो, बीमारी अंदरि में रखण सां का भलाई न थींदी आहे, इहा बीमारियूं अॻियां ॿिया बीमारियुनि खे पैदा कंदी आहे, त जंहिंसां अव्हांखे मज़ीद बीमारियुनि में, तकलीफ़ुनि में, मर्ज़नि में मुबतला करे सघे थी। इन जे लाइ इन्हनि थोरी ॻाल्हियुनि में पंहिंजे पाण खे, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे, पंहिंजी सिहत खे, पंहिंजी जान खे बचाइण जी कोशिशि कंदा कयो। असांजी कोशिशि रहंदी आहे त भरपूर अव्हांखे बीमारियुनि जे बारे में ॼाण ॾियूं, जंहिंसां अव्हां पंहिंजे मसलनि खे, पंहिंजी बीमारियुनि खे सम्झी करे उनजो इलाज ज़रूरु करायो। सामिन, अॼु जे प्रोग्राम में जेको असांजो टॉपिक आहे उहो ख़ासि रखियो वियो आहे माइदे जी बीमारियुनि जे हवाले सां, जंहिंमें बीमारी मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे, माइदे जी तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि, उन जे बारे में अव्हांखे ॼाण ज़रूरु ॾींदासीं।
5: डॉक्टर साहब, कॉल बि वठंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में, केरु ॾिसो अगरि मौजूदु आहिनि किथां खां? अस्सलाम वालेकुम।
7: हलो साईं, ऐं शायदि थो ॻाल्हायां?
5: जी साईं, किथां ॻाल्हायो भाउ?
7: साईं,
5: जी मुंहिंजा भाउ, छा सवाल आहे तव्हांजो डॉक्टर साहब लाइ? एफ एम रेडियो जो
7: घर वारी खे मौक़ा आहे।
5: अच्छा,
7: ऐं इहो डॉक्टर लागे वी बबा इन जो हाँ ऑपरेशन को बार का तकलीफ
5: है डॉक्टर साहब समझाइन था डॉक्टर सवाल तो बुध हों जी डॉक्टर साहब जी बिल्कुल सवाल में बुधम तो बाकी डॉक्टर लांगा साहब की बात बिल्कुल सही है तो उम्मीदवारी है तो इन में ऑपरेशन पहले बार का फारिग थी वे उन 40 दिन वक्फो उन बाद में ही ऑपरेशन जो सोचे सब मन सोचे करें को सोचे अच्छा मैं अवे यहाँ जरूर चवंदम तुम्हें फ्री चेकअप डे आचर जो ढी फ्री चेकअप डे सुे क्लिन अची दवाओं वी सोता इन में होम्योपैथी की दवाओं से यो अवे जरूर फायदो मिलों तो अवसा जो मसलो है जो बीमारी है उनकी दवा थी उन दवा से अवज बार से अवत घरवारी है जो अवज बार है पेट में उनके का भी साइड इफेक्ट नुकसान नो सके फिलहाल बादी वाली शूँ इस्तेमाल न कराइज डॉक्टर साहब कॉल वो था अस्सलाम वालेकुम
7: हेलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम केर गलाए पे साईं
7: कुछ हाल हाल सुठे हो खैर
5: साईं दुआ वाला जाए साहब तमा बताओ की आयो जी जी की आयो ठीक हो
7: शुक्र है दुआ है साईं का दवा वरती हो ना
5: जी जी
7: हाँ मारे प्यारे मसले में तो घणो फर्क है पर बुखार छो तो वने केदी मतलब शाम जो केदी मतलब सबु जो
5: अच्छा बुखार थे तो
7: मुझे साईं का यो गालायो बुखार थे तो ने बे जो को आ तो खंग बतिया इन दवा जो खणी आयो ना
5: जी जी
7: इन का पो वरी खंग भी थोड़ी थोड़ी निकती आ पर वो ने खंग के बर्दाश्त करा बुखार डाटो तंग जो करे
5: ठीक है एफएम पे तो डॉक्टर साहब वहां के बुधान था डॉक्टर साहब आज जो सवाल जी सर बिल्कुल जिसो थे इनमें हम परेशान थे ने जिसो मां ये ना सोची सका तो मुझे दवा सा थे उन छोटा बीमारी जो मुझे सामू आई है मायदे जी आई गवा के खंग थी तो मायदे जी दवा थदी हो थी सके आ चारो छाती में हो या मौसम की तब्दीली में थदो पानी वगैरह पे तो उन जे करे थी सके थी परेशान न थे दवा के तुम पानी में मिलाए पो इस्तेमाल के या खंग भी दबजी वी बुखार के लिए वे को डॉक्टर हुए तो उनका ट्रीटमेंट वी छो पर जैमल मोड़े अचो तो मुख्य यह बुखार और खंग जरूर बुझाज परचे दिंदा ना ओम शूँ लाजमी बुझाज उन अवे असल यो फायदा तो अंदर में जो तकलीफ होंगी है बीमारी होंगी है वह निकरे थी तो असा सुे वा तो हाँ इनसा यो मसलो असल है बीमारी तो ये मादे ही हाँ जाहिर थी पर असल बीमारी बुखार हुई अवे डॉक्टर साहब कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है
5: साईं सब खैर केर गलाए पे किथा का
7: सर इरफान खास के लिए गल है ब्रो स्टाफ का
5: इरफान खास के लिए ब्रो स्टाफ का छाला दा खुश हो खैरा
7: अल्लाह दे शुक्र आ ताम दायो
5: दुआ अल्लाह जा एहसान जी भा छा पूछन चाहे तो डॉक्टर साहब का
7: अच्छा एलर्जी आई जको आ तो हमरा के जिस्म में सूर तो रहे हमरा दर्द तो रहे
5: अच्छा एलर्जी छा जी आ
7: एलर्जी खारिश आ मना
5: अच्छा ठीक है दा ठीक है एफएम बताओ डॉक्टर साहब बुधाइन था जी डॉक्टर साहब ऐसे एलर्जी दिसो खारिश है तो अवां उन्हें के बेदो मच्छी कुकड़ वडो गोश्त यह शू इस्तेमाल न कराइज बाकी एलर्जी के बारे में अवां के यह पान कोशिश करनी पवी तो केदी मल घनी थे थी रात जो बिस्तर से जिन मल वनता गर्मी थे थी ओडी मल घणो थे तो या सिज से जिन मल निकरंदा मानू तो ओडी मल घनी थे थी ये बशो जरूर याद रखो उनका अलावा एलर्जी जिन मल थे थी जिस्म गाढ़ो थे तो दाणा निकरंदा दाणा में रक्त पानी या मिठी मिठी खारिश थे थी ये सब शूँ याद कर सुबह फिर चेकअप अची मुझे चेकअप कराए वनो दवा होंगी तो इंशाला अवज इलाज जरूर कस हाली अवं ये कह तो उनके निमारो पानी मिली वे तो उन विंजारे उनके बिस्तर से सुमारे छो बाकी दवा तुम चई हुए कें भी डॉक्टर की दिनल हुए तो अवं वह इस्तेमाल कराए छो सुबह अस इंशाला इन बीमारी की दवाओं दींदूँ अल्लाह रहम कह इंशाला अवं के तबियत में बेहतरी जरूर महसूस थी सभी प्रोग्राम में अस जल्दी हल्दी पे टॉपिक की तरफ छो तो असट कॉलू आन से तो उन्हें भी सवाल अस जरूर बुझना सो सवाल बुझी उन्होंने जवाब दें उनके मुश्किल उन्होंने आसानी पैदा कर यो अस डॉक्टर की फर्ज है असि कोशिश भी यहाँ है तो अवं के कोई सवाल हो तो उन सही जवाब अवे मिले जैसा अवं के इो न थे तो डॉक्टर अवं के खोश हुए तो अचे सुबह दवा वन न सही यहाँ आदत कने का बाकी यहाँ शे जरूर है कोई बीमारी है उनमें खतरा यहाँ अगे तीन जिंदगी है उनके नुकसान थी सके तो उनमें असर जरूर अवे
6: तव्हांखे खौफ़ विझण जी कोशिशि कंदासीं, छो त इहा अवांजी सिहत जे लाइ, अवांजी ज़िंदगीअ लाइ ज़रूरी आहे, छो त अवां हींअर इलाज कराईंदव त अॻे जेका मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि, वॾियूं बीमारियूं आहिनि, उन खां बची सघो था। साम्हूं प्रोग्राम में जेका टॉपिक हो असांजो, उहो टॉपिक हो मादे जी हवाले सां। मादे में सभिनी खां पहिरीं अवांखे ख़बर आहे हींअर गर्मियूं अचण वारियूं आहिनि, त इहे मादे जी तकलीफ़ूं अवांखे ज़रूरु थी सघनि थियूं। उन में सभिनी खां पहिरीं तकलीफ़ माह में सूर, अहाकचो, उल्टी, उन खां अलावा जेका बि शइ खाओ अहाकचो थी पवंदो, ऐं गर्मी में निकिरंदव त अवांखे गर्मी बर्दाश्त न थींदी। छो त अॻे मादे में गर्माइश आहे, छो त रमज़ान निकिरी विया आहिनि, उन रमज़ान में असां मज़े सां तरल शयूं, मिर्च, समोसा, पकौड़ा, बेगर चवण मज़े सां खाधासीं। अॻियां उज़ाए वारी ईद आहे, जंहिंमें असां गोश्त ज़रूरु खाईंदासीं, ऐं गोश्त में छाहे त गर्मी आहे, त गर्मी में गोश्त खाइणु ऐं उहा असांजी सिहत जे लाइ बहितर आहे या न आहे, त इहा सभु शयूं अवांजी जेका फ्री चेकअप वारा ॾींहुं अची चेकअप कराए वेंदव, पोइ ई असां अव्हांखे ॿुधाए सघूं था। कुझु शयूं ज़रूरु आहिनि त इहा शयूं ज़रूरु आहिनि त अव्हांजी मादे में गर्माइश आहे, जिगर में गर्माइश आहे, त तव्हां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा गोश्त जा तरीक़ेकार हूंदा आहिनि ठाहिण जा, त उन्हनि जे मुताबिक़ अव्हां नथा हली सघो, छो त अव्हांजी तबियत रहंदो ख़राबु थी सघे थी। मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जंहिं बारे में अव्हां चेकअप खां पोइ ई मां अव्हांखे ॿुधाए सघां थो अव्हां कहिड़े क़िस्म जो गोश्त खाए सघो था। उनजे लाइ सुभाणे फ्री चेकअप आहे, अची पंहिंजो चेकअप कराए पंहिंजो इलाजु कराए सघो था।
8: जीअं समीन, सुभाणे आहे आचर, ऐं डॉक्टर साहिबु हमेशह छंछरु आचर फ्री चेकअप कंदा आहिनि, तव्हां हिन मौक़े मां फ़ाइदो वठी सघो था। असां डॉक्टर साहिबु, हिन वक़्तु मौसम जेका आहे त गर्म थी चुकी आहे, ऐं हींअर गर्मियूं झोला स्टार्ट थी विया आहिनि, त उन में असांजे सामान खे कहिड़ो एहतियात करणु खपे? तव्हां निमकोल जो त तरीक़ेकार ॿुधाईंदा आहियो, पर एहतियात ॿुधायो त कहिड़ी शयूं खाइनि ऐं कहिड़ियुनि शयुनि खां परहेज़ कनि, छो जो हीउ मौसम चेंज थी चुको आहे, गर्मी अची चुकी
6: आहे। बिल्कुलु, इहा शइ बि लाज़मी आहे, छो त प्रोग्राम में जेको असांजो टॉपिक आहे मादे जे हवाले सां, त इहा शयूं मादे में ई वेंदियूं, त इन्हनि शयुनि ते बि असां ज़रूरु पंहिंजे टॉपिक में ॻाल्हि खे ज़रूरु रखंदासीं, जंहिंसां अवां इन शइ ते एहतियात कंदव त अव्हांखे डॉक्टर वटि वञण जी ज़रूरत न पवंदी। ऐं समुझ प्रोग्राम में मादे में गैस थिए थो, जलन थिए थी, कब्जी थिए थी, हा में सूर थिए थो, हा कचो थिए थो, उल्टी थिए थी, त इहे सभु शयूं छा आहे मादे जी तकलीफ़ूं आहिनि। पर सिर्फ़ु मादो ख़राबु न थींदो आहे, हमेशह मादे सां गॾु तिली या जिगर ज़रूरु ख़राबु थींदो आहे, त उनजे लाइ अव्हांखे सिर्फ़ु मादे जी न, उन्हनि शयुनि जो बि इलाजु ज़रूरु करणु पवंदो आहे। होम्योपैथिक वारा छा कंदा आहिनि, त हर मुकमल चेकअप कंदा आहिनि, जंहिंमें मादे जे बारे में मालूमात वठंदा आहिनि, त मादो केतिरो तक़रीबन केतिरो ख़राबु थी चुको आहे, ऐं उन में वजूहात छा आहिनि। लाज़मी न आहे त मादे में तव्हां अगरि गरम शइ खाधी आहे, उनजे करे मादो अव्हांजो ख़राबु थी चुको आहे। थी सघे अव्हां मेडिसिन्स जेका आहिनि उहा इस्तेमालु कयो पिया, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी दवाऊं अव्हां इस्तेमालु कयो पिया, उन में बि तव्हांजो मादो डिस्टर्ब थी सघे थो, ख़राबु थी सघे थो। उन में वजूहात छा आहे त एसिडिटी, मादे ते जलन थी सघे थी। उन खां अलावा अव्हांखे जेको मेडिसिन इस्तेमालु करण सां अव्हांजो मादो कमज़ोर थी सघे, इहा ज़रूरु शइ आहे, पर इन में होम्योपैथिक में इहा दवाऊं इस्तेमालु करण सां इहा ॻाल्हियूं न थींदियूं आहिनि। होम्योपैथिक फ्रेंडली आहे, मतिलबु की अव्हांजी जेका लाइफ आहे, ज़िंदगी आहे, अव्हांजी जेका सिहत आहे, उन सां दोस्ताना तालुकात हूंदा आहिनि, छो त इहा कुदरती जड़ी बूटियुनि सां ठहियलु आहे, त इन में नुक़सानु थियण जी ॻाल्हि न हूंदी आहे।
8: डॉक्टर साहिबु, कॉल वठूं था, केरु ॾिसी सघनि? अस्सलाम वालेकुम।
9: साईं वालेकुम सलाम।
8: साईं केरु ॻाल्हायो पिया ऐं किथां खां?
9: साईं मां नियाज़ अली सां ॻाल्हायां, साईं नौ शाह खां। साईं
8: अच्छा जी, मुंहिंजा भाउ तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो,
9: अलाह जा करम न कयो सां। साईं हिकु अर्ज़ु आहे।
8: हुकुम कयो था, छा सवाल आहे डॉक्टर साहिब लाइ?
9: साईं अर्ज़ु इहो आहे त जंहिं असांखे इहो जेके वॉशरूम वञूं था, त वॉशरूम में असां करे बस कयूं था, त इहो निशान अचनि था रत जा थोरा घणा, ऐं जलन थिए थी ॾाढी, वरी बस कयूं था पोइ जलन ॾाढी थिए थी।
8: अच्छा, घणे टाइम खां वठी अथव?
9: इहे तक़रीबन मां ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि मूंखे।
8: ठीकु आहे, तव्हां एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु ॿुधाइनि था। जी डॉक्टर साहिबु,
6: असीं इन में ख़तरे वारी ॻाल्हि कान्हे का, ऐं इन को एतिरो परेशान थियण जी ज़रूरत आहे। ॾिसो, हमेशह रत काकुस करण खां बाद ईंदो त सम्झो आंटरनि में इन्फेक्शन थी वियो आहे, ज़ख़्म थी वियो आहे। उनजी वजह छा आहे त पेट में गैस जो थी वञणु, खाधो पीतो सही तरह हज़म न थियणु, ऐं जेॾीमहिल काकुस ईंदो आहे त ज़ोर लॻंदो आहे त रतु ज़रूरु ईंदो आहे, सड़े थो, त उनजो मुरादु इहो आहे त आंटरनि में गर्माइश माशाला थी वई आहे। गर्म शयूं, तरल शयूं, मिर्च मसाला अवां बंदि कयो, त पाणी जूस जो इस्तेमालु लाज़मी कयो, बाक़ी जेका दवाऊं आहिनि सुभाणे अची वठी सघोसि था।
8: डॉक्टर साहिबु, कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साईं, छा सवाल आहे वांजो डॉक्टर साहिब लाइ?
9: सवाल आहे, इहो शिकायत लाइ सवाल बि आहे, हुनजी जे असां आयासीं इलाजु कराइण लाइ, डॉक्टर अलाए किथे गुस्से वारो हो, असांजे मथां गुस्सो लाथो।
8: अच्छा,
5: जी जी सवाल सवाल बुधायो
9: हा दवा तो वटको सु असन मतन गुसोला थई वो काटे यार थयो ठीक सलीम साहब सा हाल कंदा
5: साईं तवा सबै असन ले मोसन आयो डॉक्टर भी इंसान हों इंसान का खताऊँ थी रोन हमेशा माफ़ करण सुठो अमल आने वा बुजुर्ग असा भायर आ डॉक्टर साहब के अस भी चवंदी तो हर मानू से मोहब्बत से पेश अचे जी साई
9: सवाल
5: बिल्कुल चलो माजरत करें तो वा को मसलो को असा वा बुजुर्ग आयो दुआउन में असा याद कदा कर सवाल बुधायो तो डॉक्टर साहब तुम सवाल बुध इन जवाब दें जी साईं सवाल पुछण चाहियो डॉक्टर साहब का तव्हांजी
9: दवा आयो वठी आयो छोकिरो दवा वरी
5: चले को मसलो कोन्हे को तव्हां एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहब वधीक ॿुधाईंदा अच्छा डॉक्टर साहब चाचो जेको आहे तव्हां ते नाराज़ लॻो पियो आहे डॉक्टर साहब वटि क्लिनिक ते वियासीं ऐं उन्हनि मूंखे शिकायत बि कई आहे तव्हांजी त डॉक्टर साहब नाराज़ थियनि था डॉक्टर साहब तव्हांजे ॻाल्हाइण खां पहिरीं मां तव्हांखे एतिरो चवंदुसि त तव्हांखे अलाह पाक जेको हीउ शोभो ॾिनो आहे त हीउ सम्झो हिकिड़ो फ़रिश्ताणी शोभो आहे हिकु उस्ताद ऐं ॿियो डॉक्टर त उनमें हर क़िस्म जा मरीज़ अचनि था कोशिशि कंदा कयो त उन में हर माण्हू खे मुहबत ॾियो ऐं प्यार ॾियो वधीक हाणे तव्हां डॉक्टर आहियो तव्हां इन
10: ॻाल्हि टोटल ॻाल्हि अव्हांखे ख़बर कोन्हे का
5: अॼु उहा त
10: अव्हांखे तव्हांखे मूंसां गॾु 4 साल थी विया आहिनि तव्हां मुंहिंजी तबियत खां नेचर खां पाण वाक़िफ़ हूंदा मां यकदमि कंहिं ते कावड़ छो कंदुसि मां चरियो आहियां मां चकावट छो कंदुसि ॻाल्हि पोयां को न को शइ ज़रूरु आहे पर मां जीअं हुननि मुंहिंजे लाइ इहा ॻाल्हि चई आहे त मां नथो चवां त उन्हनि जे बारे में का बि शइ साईं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त दवा वठणु नथा अचो अलाह अव्हांखे ख़ुशि करे अलाह अव्हांखे इज़त ॾे ऐं अलाह उनखे शिफ़ा ॾे किथां बि मिले अलाह उनखे शिफ़ा ॾे पर इहा ॻाल्हि ज़रूरु यादि रखिजो त असांजी दवा में हू पेशेंट ज़रूरु तयारु थियो पर हू पंहिंजी हिकमत करे पियो त जंहिं शइ ते मां एफ एम ते बि वेंदो आहियां त सभिनी ते मां तेज़ ॻाल्हाईंदो आहियां इन जे बारे में ऐं उन शइ ते मां उनखे 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा मना कयो ॿार नंढिड़ो ॿार आहे न उनखे बि 3 दफ़ा झलींदा आहियूं 4 दफ़ा उनखे मार ज़रूरु ॾींदा आहियूं मूं सिर्फ़ु अहिड़े लहिजे में ॻाल्हायोमांसि त हीउ इन शइ खां परे थी वञे पंहिंजी ग़लती करे पियो पंहिंजी जान खां नुक़सानु करे पियो त उन में असांजो फ़र्ज़ु आहे त उनखे सिधी राह ते वठी अचणु
5: बिल्कुलु
10: उन में इहो छा आहे त उनखे फ़ोन ते बि सम्झायो साईं इहा शो न कयो न कयो उन पोइ बि इहा शइ कई त जंहिं ते असां उनखे दड़को ॾिनो असां इन करे दड़का ॾिना त उहो हिन शइ खां भाॻी थी वञे त इहा शो न करे बाक़ी दवा नथो वठे त जी बिस्मिल्लाह साईं असांखे को एतिराज़ु कोन्हे को पंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशि रहे असां इहो ई दुआ कंदासीं
5: बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि भली हुई डॉक्टर साहिबु अच्छा समीन मां मूंखे इहो ज़रूरु चवंदुसि त डॉक्टर ऐं माउ पीउ ऐं उस्ताद ईअं ई हूंदा आहिनि जीअं माउ पीउ पंहिंजी औलाद खे हमेशह भलाई जी तरफ़ जे लाइ धड़को बि ॾींदो आहे कॾहिं कॾहिं त मार बि ॾींदो आहे ऐं उहा असांजे लाइ तमामु फ़ाइदेमंद साबित थींदी आहे हाणे जीअं उस्ताद पढ़ाईंदो आहे त प्यार सां गॾो गॾु उस्ताद कॾहिं कॾहिं मार बि ॾींदो आहे उहा लाज़मी हूंदी आहे ऐं उनमें असांखे कावड़ न करणु खपे हाणे डॉक्टर आहे डॉक्टर जेके हीअं ॿुधाइनि पिया त अदो पंहिंजी हिकमत करे पियो हाणे ॾिसो नीम हकीम ख़तराए जान हूंदो आहे त उनजे लाइ या त पोइ पंहिंजी डॉक्टरी कयो डॉक्टर वटि अचो ऐं पंहिंजो इलाजु करायो ऐं सही थी वञो बहितरु आहे अगरि तव्हांखे इन शइ जी ख़बर आहे अगरि मालूमात न आहे त पोइ डॉक्टर जे चवण मुताबिक़ ज़रूरु हलंदा कयो इहो तव्हांजे लाइ असांजे लाइ सभिनीनि जे लाइ हिकु सबक़ु आहे त असां या त डॉक्टर जो चवणु कयूं या त पोइ पंहिंजी हलायूं अगरि पंहिंजी हलाईंदासीं त पोइ चाक कोन थी सघंदासीं अगरि डॉक्टर जी ॿुधंदासीं तॾहिं ई चाक थींदासीं ऐं मां वाखे ॿुधाईंदो हलां शफ़ा ॾियणु अलाह जी ज़ात जो कमु आहे पर जेके डॉक्टर पंहिंजो महिनत करे पढ़नि था त उन्हनि ते अमल करणु ज़रूरु खपे ऐं जीअं ई ईअं कमु आहे त डॉक्टर दवा ॾिनी ऐं रख ॿुधाई दवा खाइणी आहे रख न आहे किरणी पोइ दवा फ़ाइदो ई न ॾींदी बरहाल समीन असां वटि सां गॾु मौजूदु आहियूं पूरे 9 वॻे ताणी ऐं तव्हां असांखां मालूमात वठी सघो था बीमारियुनि जे हवाले सां ॼाण वठी सघो था अच्छा डॉक्टर साहिबु टॉपिक जेको पंहिंजो हुयो मैदे जे हवाले सां त उनमें गर्मियूं अचनि पियूं त हिननि गर्मियुनि में इहा तकलीफ़ तमामु घणी हूंदी आहे हर माण्हू खे इन मैदे जी तकलीफ़ जी त जाम असा बदनायो अजय डॉक्टर साहब उन हवाले सा अमा छा बदन चाहंदा
10: जी बिल्कुल असा टॉपिक जरो वापस इंदा थी आई वे तो अमा सब नी चोना थी जको कॉल करे चाहे तो का बीमारी के बारे में मालूमात वठन चाहे तो तू हम कॉल कर सको तो का बीमारी आ उने जसा इलाज करायो पे ट्रीटमेंट करायो पे आई असा के को फायदो दिसण में न पियो छ परेशान थे जरूरत कने का अमा सिर्फ उन डॉक्टर जा पर्चा मेडिसिंस जका टेस्ट रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड सिटीज के नाम वट मौजूद अन अब उने सा गत पेशेंट सा गत जरूर अचियो तो उहा सब शो अवा क्लिनिक ते वठी अचो इंशाल्लाह असा सिर्फ असन नियत यो हुंदी तो तवा जो चेकअप थेन का पो जका मेडिसिन अवा यूज कयो पे उने छे जे बारे में सा जरूर दिसना सो आई जका टेस्ट रिपोर्ट छापे चवन आई पेशेंट जी कंडीशन छापे जे उन सब शो उनके मैच करे अवा के जरूर एक इंफॉर्मेशन दिना सो ता हिया ट्रीटमेंट हेस्टानी इलाज आ है और उने जो जका ट्रीटमेंट हले पे या बेहतर हले पे ता सिका असा को इतराज कोने असा जरूर चो या दवा इस्तेमाल कयो इंशाल्लाह अवा जरूर तैयार इने सा अवा जी भलाई जरूर थी सके थी वा भलाई या है तो तवा जेन में या सवाल जरूर होंदा त या इलाज असा कयो पे ला फायदो थे न थे वा छे अवा जेन में खत्म थी दिया उने में भी असा चोंदा त इने छे मुताबिक बके मशवरो करन चाहो था तो अची सको था परेशान थे दी जरूरत काने का पैसा में टॉपिक के दौर अब ते बताना थी त वा या है त माते जी तक अच्छा इन सब जका तकलीफ हो हां में साड़ो जलन के स्फटी कब्जी ये सब छे जो इलाज असा वट मौजूद है पर उन में चाहे तो सिर्फ मादे जी तकलीफन जे करे इलाज और सिर्फ मादे में या तकलीफू खाधे पीते जे करे न थिन मेडिसिन जे करे बथिंदियो आई हूं तो उन्हें जे करे ब असा आवा के जरूर इन शेद को करना सो तो दिसो एहर ही मुजो टॉपिक हो उन टॉपिक में एक चाची जी काल अच्छी पई तो उन टॉपिक में मुता आवा के छा जो तो घणी मेडिसिन खाण का दवा खाण का मादो कमजोर थी पोंदो आ आई मादे में इत्तेजाबियत थी पोंदी आए इहा ही गाल मुके तो कट बस के तो चाची काल आई चाची इहा ही एतराज मुते मथा रखे हो तो मु आवा उनन के चाची के भी चंदो मां एफएम ते भी चोंदा ता पांजी डॉक्टरी न कना गयो बर पे 5 रुपए जी काग ब डेवलेट वठी स्टोर का मां इस्तेमाल कर आवा के उन टेबलेट जो सा यो जरूर महसूस इन दो मो जो सूर खत्म थियो पर का ब साइड इफेक्ट उंदो उवा आवा के खबर न पोंदी उन छे जे बारे में खबर न पोंदी ए एकड़ी साइकोलॉजिकल जी का हुंदी दिमागी जी का कैफियत हुंदी उवा ठई पोंदी त जेस टाणी मां या डोरी न खांदो मो जो सूर खत्म न थिंदो मां सुबह कम ते वणा ते या गोरी खाई विंदो आ सजो डी कम फर्स्ट क्लास थी पोंदो आ रात जो वरी सूर थिंदो वरी एकड़ी बी गोरी खाईंदो वरी सुबह जो ये साइकोलॉजिकल तौर ते तवा उन गोरी ते मोहताज थी जाओ असान जे इन जे ला इन तकलीफन का तवा कढण जे ला कोशिश कंदा हो त इया शो न कयो ॾिसो सूर जी गोरियूं घणियूं इस्तेमालु करण सां अवां जे गुर्दनि ते असरु थी सघे थो उन खां बाद में अवां छा कंदव अवां रहंदो परेशान थींदव त इन करे बहितर रहंदो कंहिं सुठे डॉक्टर खे अवां चेकअप करायो त जंहिंसां इहा ख़बर पए अव्हांखे इहा सूर इहा तकलीफ़ थिए पई त कहिड़ी वजह सां थिए पई उन शइ खे अवां ख़तमु करे अवां पंहिंजो इलाज ई मुकमल कराए जांच कराए ॾियो अव्हांखे इहा सुबुह शाम टेबलेट खाइण जी ज़रूरत ई न पए इन शइ खे चवंदा आहियूं मुकमल इलाज ऐं सिहतयाबी बाक़ी वक़्ती फ़ाइदे लाइ मां ख़ासि करे अव्हांखे ॾिठो हूंदो मूं वटि जंहिंमें पेशेंट आयो हूंदो जी त हुन पेशेंट खे मां चई छॾंदो आहियां यार इहा भाड़ो आहे मां इहो अल्फाज़ मुंहिंजो ज़रूरु हूंदो आहे पेशेंट साहिबु इहो भाड़ो आहे साईं भाड़ो कीअं त जेसिताईं अव्हां गोरी खाए था गोरी जो असरु आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियो का तकलीफ़ का मर्ज़ु अव्हांखे नथो महसूसु थिए गोरी जो असरात ख़तमु थियनि था त अव्हांखे साॻी तकलीफ़ूं मर्ज़ु अची था वञनि त हीउ छा थी वियो इन खे मां भाड़ो चवंदो आहियां इहा इलाजु मूंखे पसंदि आहे त मां इहो इलाज कंदो बि न आहियां अॼु समीन प्रोग्राम में असां वरी बि सां सां गॾु शेयर हूंदासीं पूरे नाए वॻे ताईं पर कुझु टॉपिक जे अॻिते हलाईंदासीं त टॉपिक में जेको मादे जे बारे में ॻाल्हियूं हुयूं त इहा सभु ॻाल्हियूं मादे जे हवाले सां हुयूं छो त टेबलेट मेडिसिन घणियूं इस्तेमालु करणु मादे जी ख़राबी आहे उन खां अलावा घणी शयूं अहिड़ियूं बि आहिनि त जंहिंखे गर्मी आहे गर्मी में असां निकिरी आया आहियूं घुमी फिरी आया आहियूं या कंहिं कमु कार सां बि असां विया आहियूं त मोटी आहियूं त असांखे छा करिणो आहे 5-10 मिंट पखे जे हेठि विहणो आहे उन खां बाद में असां पाणी वग़ैरह पीअंदासीं इन सां बि असांजो मादो बची वेंदो ख़राबु न थींदो
5: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
11: बड़ाई मेहरबानी इंतजार करना प्लीज होल्ड
5: साईं अमा कॉल कई लेकिन अमा का होल्ड थी वियो उन खे वरी असाने कॉल कयो को मसलो कोने को थी वेंदो आ असां सां गॾु हूंदासीं पूरे 9 वॻे ताईं तव्हां डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था बीमारियुनि जे हवाले सां ॼाण वठी सघो था डॉक्टर साहब मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक

0: कुदरती असाए जिसम में निज़ाम आए तो जेडी मल गर्मी घनी थी तो असा जिसम गर्मी के बर्दाश्त कंदो आए उन बाद में जेडी मल असा थद में वेंदा तो वह सजी गर्मी के रिलीज कर छो जागो जो थद वो टेम्परेचर होंद उन्हें बॉडी के वापस खड़ी इंदो तो इन्हें में थोड़ा वक्फो लगन है तो असा ओडी मल थो पानी पी छा तो जैसा असा जिसम जो मौजूद अंदर हॉर्मोन्स जहाँ मौजूद हूँ वह डिसबैलेंस पवंदा उन्हें का बाद में असि जहनी कैफियत खराब थी पवी अस मायदे जो खाधो थे तो निज़ाम खराब थी वो पेशाब जो निज़ाम वो भी डिसबैलेंस सके तो उन बेहतर रो अस पंज डायमंड वेहूँ पखे अच्छा वेझड़ो भी ना जी खास कर मुझा दोस्त हिंसर गर्मी हुआ तो कहना जुमे ढी खास कर गोठन में बनियन में टूवल से वेझण जला हाँ टूवल से वेझण जला तो उन्होंने मैं ये रिक्वेस्ट कस जी मेल तक टूवल से पोची वो तो यकदम पानी में न वो तक कें वण के हेठ बी रहो तो थोड़ा अव जिसम कुछ रिलैक्स थे उन बाद में तुम भले टूवल से वेझी शो कर इंजॉय पॉइंट पूरी कर बाद में तुम भले मोटी अची सको इन से अवी सेहत खुशगवार रही अवी सेहत के फायद नुकसान न थो मादे में खराबी फास्ट फूड जैसे शवारमो बर्गर उन बाद में जो पिज्ज़ा है खासकर असा शहर में तो यह शूँ जरूर बाकी गोठ इलाक में चाहे तो वह इंदान गर्मी में शहर सकड़ में उन बाद में या बिरयानी समोसा पकौड़ा अड़ी शूँ चटपटी शूँ इस्तेमाल कंदा पर वह गर्मी में हलन था तो यहाँ गर्म जी मैदे में वा गरमाइश कंदा तेजाबियत पैदा कंदा उन बाद में अंदर भी तेजाबियत बाहर भी गरमाइश तो वह गरमाइश के करे अवे चक्कर अची सकन था किरी सको था ओडी मल परेशान थे जरूरत ना उनके सुमारे छो मथे पास हेठ पेर वाले पास मथे हथन पेर के तिड़ियन के मालिश कंदा तो इंशाल्लाह जल्दी उठी पवो पर उनके कें डॉक्टर वट जरूर चेकअप कराए जो ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन थी तो उनके मेंटेन क्यों जैसा उनकी जिंदगी लाइफ सुठी थे वरी यह अटैक उनके वरी न थी सके अच्छा उनके अलावा गर्मी में निकलने का बेहतर है तो अव जी मेल दी ऐसो पे तथे पे तो अव इंतजार कर तो कुछ थदकार थे तो असा निकली सकूँ जो निकली सको तो मुझी गाल जहन में रहे तो अव जल्दी पहुंची उत इंतजार कर बाद में ही अव पानी जूस या लस्सी जो आम गोठन में होंगी अव इस्तेमाल कर सको यकदम यह शो इस्तेमाल न कजो डॉक्टरी भी पानी न कजो छो तो गर्मी लगन का बाद में घना कर कोशिश कंदा तो असा डॉक्टर वो वही ड्रिप लगाऊँ मुझी कोशिश यह रही है तो मैं मिट माइट अजीजन के भी यह समझाइंदा यह ड्रिप का बेहतर है छो ना असा एक निमकोल ठाए वो वह अस इस्तेमाल कर जैसा अस जिसम में मौजूद निमकियात पूरी थी वे असा कें ड्रिप लगाने की जरूरत न पे वह अच्छा जिसम में टे रस्ता है असो वॉशरूम कॉकूस यूरिन पेशाब बो है उल्टी इन टे रस्तन का अस जिसम बीमारियों निकली सकन थी बीमारी निकलने की मुराद यह है तो अगर गर्माइश करी सकूँ था निकली सके थी जी पेशाब उनमें भी जिनमें आवाम लुक हों पेशाब में भी साड़ो थे तो काकूस में भी थे तो हाँ कचो जिनमें उल्टी थी तो जहर वाता निकल तो वह भी सड़े थी नीड़ी सड़े थी अच्छा इन केस में अवं समझी सको था मुझे मायदो गरमाइश में आगर जिगर भी असि गरमाइश में थल असा उन टाइम से थदी शूँ इस्तेमाल क्यों खास कर असा साई भाजी तरफ वो चावर लस्सी टेक वा चावर बंद कर छूँ समोसा पकौड़ा बंद कर छूँ बाहर की शा भी शाँ कोशिश क्यों इस्तेमाल न क्यों घर की शूँ असा वह इस्तेमाल क्यों पानी जूस कमन जो रस कच्ची लस्सी निमकोल का भी शरबत वह असा इस्तेमाल क्यों उन अस जिसम के अंदर मौजूद जो हरारत है जो तेजाबियत है जो गरमाइश है वह घट थी सके जैसा असा जिंदगी में जो मुसीबत गरमाइश वाली वह खत्म थी सके
1: डॉक्टर साहब कॉल वूँ था कि मौजूद किथा का अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो साईं अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम साईं केर गलाए पे किथा का
2: साईं मां साजिद अली मक्तई तो गलाए नवाब साहब
1: अजीब अच्छा साजिद छ सवाल हो डॉक्टर साहब ला
2: जी कचेड़ा हालन कुछ है तेरा तो सही है
1: गांव वाला जाय सर अजी था
2: जी सर जी मुझे सवाल यो है से सर मुझे धूप में तो मां निकला तो मुझे अखिन वाला जो सड़न की अखिन में ना गोड़ हाथ हवा है तले साजे करे सर आने मने कुछ दी चांद जी गर्मी में मन थी मन चले तो धूप में भी स्कूल भी ना असेंबली में तो मतलब अखिन सड़न दी वन ला चाहिए ना हल्को हल्को पानी हुआ दो साजे करे
0: नजर जो तो मसलो को ने हवा सा नजर हवा जी सही है
2: जी
1: डॉक्टर साहब बाबा का पूछे पे तो मां जी नजर ठीक है
2: जी सर ना सा ब्लाइंड है
1: अच्छा तुम सफा ब्लाइंड हाँ ठीक है साजिद ठीक है दा एफ एम तो डॉक्टर साहब बुधा था अज डॉक्टर साहब ब्लाइंड पर्सन है साजिद
0: सही इनमें ऐसो ब्लाइंड हुए न हो बिन्न की सूरत असि गाल बिन्नी बेहतर हो गरमाइश है रोड रस्ता गरम रोड तपन पाया अगर गरमाइश हीट है तो जेमल वह अखियन में लगंदी लाजमी घोड़ा निकरंदा

0: आहे। केॾी कल में असां इहो केस बि ॾिठा आहिनि त अखियूं ॻाढ़ियूं बि थी वेंदियूं आहिनि। उन में तव्हांजी कोशिशि इहा रहंदी अवां उन में कारो चश्मो वठो या को अहिड़े क़िस्म जो फैंसी चश्मो अवां वठी सघो था, पर उन में अछो कलर न हुजे, उनजो कलर चेंज हुजे, फिको हुजे, नासी हुजे या ब्लैक हुजे, कारो हुजे, उहा अवां ओॾीमहिल पाए पोइ अवां निकिरी सघो था। उन सां छा आहे अखियुनि में गरमाइश न लॻंदी, अवांजी सिहत ठीकु रहंदी। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी वई, जनरल ॻाल्हि थी वई, आम जेका महसूसु माण्हू करे सघे थो, पर इनखे हटी करे हिकिड़ी ॿी बीमारी आहे जेको आहे जिगर जे मथां गरमाइश। उन में बि अखियूं सड़नि थियूं, हथ पेर सड़नि था, पर उन में यादि रहे अखियूं सड़नि थियूं, हथ पेर सड़नि था, सिर्फ़ु अखियूं न, हथ बि ऐं पेर टई शयूं सड़नि थियूं। त उन टाइम ते असां चवंदासीं त हीअ जिगर ते गरमाइश जे करे अखियूं सड़नि थियूं। उहा अवां राति जे टाइम बि ॾिसंदव अवांखे महसूसु थींदी अखियूं सड़नि थियूं, ॾींहं जे टाइम ते महसूसु कंदव अखियूं सड़नि थियूं। अवां सां जेको प्रॉब्लम आहे उहा उनजी वजह आहे त गरमाइश ऐं रोड रस्तनि में गरमाइश, सिज जी तेज़ रोशनी, उन जे करे अवां सां इहो मसइलो थिए। उन में अवां ग्लासिस इस्तेमालु करे सघो था, कारे कलर में, नासी कलर में या कोई ॿिए कलर में, वाइट कलर इस्तेमालु न कजो, उन सां रिफ्लेक्टिंग नथी थिए ऐं जेका गरमाइश आहे अखियुनि में जेका रोशनी जी शुआऊं आहिनि ऐं सिज जी जेका शुआऊं उहा ब्लॉक न थी सघंदी। उन जे लाइ कोशिशि कयो त कलरफुल चश्मो अवां ज़रूरु इस्तेमालु कयो। अच्छा सामिन, ॿी ॻाल्हि इहा बि आहे त जीअं का गर्मी में माण्हू निकिरनि था, ख़ासि करे मोटर साइकिल वारा ड्राइवर असांजा, उन्हनि खे मां इहा एडवाइस ज़रूरु कंदुसि, या त हेलमेट पाए वठो। हेलमेट असांजा जेका इलाइक़े वारा आहिनि उन्हनि में कंहिं कंहिंखे हेलमेट पाइण जो शौक़ु आहे, बाक़ी घणा कर जेका आहिनि उन्हनि खे इहा शौक़ु कान्हे का, त उन्हनि जे लाइ मां एडवाइस इहा ई कंदुसि त अवां टुवाल जेका आहे अवां वटि मौजूदु आहे, वेड़े वठो, चश्मो पाए वठो, उन सां अवांजी अखियूं बची वियूं, अवांजो जेको फेस आहे उहो बची सघे थो। ग्लव्स आहिनि, ग्लव्स पाए वठो, जंहिंसां अवांजे हथ बची सघंदा, पेर में त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां चोपल जॻह ते जूता पाए सघूं था। गर्मी अवां जिस्म में दाख़िल न थी सघंदी इन्हनि जी वजूहात सां, पर हिकिड़ी शइ ज़रूरु यादि रहे त इन्हनि शयुनि खां अवां बची वेंदव, बाक़ी जेको अवांजो जेको जिस्म आहे उहो बची सघे थो जेॾी महिल अवांजा लाइट कलर जा कपिड़ा हुजनि। डार्क कलर जा जेका कपिड़ा हूंदा, डार्क कलर वारा रंग वारा जेका तेज़ रंग वारा कपिड़ा हूंदा आहिनि, उन्हनि ते शुआऊं जज़्ब थी वेंदियूं आहिनि। लाइट कलर में जेका आहिनि सिज जेका शुआऊं उहा जज़्ब न थी सघंदियूं, ख़ासि करे वाइट कलर जेको सूट आहे उन में सिज जी जेका बि शुआऊं आहिनि उहा जज़्ब न थी सघनि। त गर्मी में वञो पिया त कोशिशि कयो वाइट सूट पाए वठो, अछे कलर जो वॻो पाए वठो, या अवां कंहिं हल्के कलर जा वॻा पाए वठो, इन सां अवांजो जिस्म बि बची सघे थो सिज जी शुआउनि खां।
1: जीअं समय तव्हां ॿुधो पिया जीअं सक्रे नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां। जीअं समय हाणे प्रोग्राम जो नालो आहे सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां, पेश कयो पियो वञे हिमाया, मुंहिंजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी, मूंसां गॾु सक्रे जा मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हर्ष जावेद राजपूत साहब। समिन, सुभाणे आचर आहे, बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। जीअं समिन मां वरी नोट कराईंदो हलां त बग़ैर फीस जे चेकअप कंदो, डॉक्टर साहब वटि जेका मशीन आहे उन जी फीस अधु हूंदी, मशीन ते चेकअप जी फीस अधु हूंदी, यानी 500 रुपया डॉक्टर साहब मशीन जो चेकअप फीस वठंदा, पाण जेको डॉक्टर साहब चेकअप कनि था उन जा फीस न वरिती वेंदी, छंछरु या आचर ते न वरिती वेंदी आहे, इहो अवां नोट कंदा। छो जो काफ़ी मरीज़ ईंदा आहिनि त उहे चवंदा आहिनि सलीम चयो आहे त छंछरु आचर फ्री चेकअप आहे, बिल्कुलु फ्री चेकअप आहे, लेकिन डॉक्टर साहब मशीन जो चेकअप फीस फ्री न आहे, इहा शइ नोट कंदा। ऐं मां तव्हांखे आगाही ॾियां पियो, ॿुधायां पियो त मशीन जी चेकअप फीस 500 रुपया आहे ऐं डॉक्टर साहब जी पंहिंजी चेकअप फीस फ्री आहे, जेका 300 हूंदी आहे आम ॾींहंनि में। छंछरु आचर ते डॉक्टर साहब फ्री चेकअप कंदो आहे, मशीन जी चेकअप फीस हूंदी, स्टोर तां दवा वठणी पवंदी, जेका डॉक्टर साहब वटि स्टोर मौजूदु आहे, डॉक्टर साहब तव्हां खां कोई चेकअप फीस जा पैसा न वठंदो। सामिन, मालूमात वठणी आहे, ॼाण वठणी आहे, बीमारियुनि जो तकलीफ़ आहे, इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो, फ़ाइदो नथो पवे, हिकु दफ़ा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सां इलाज कराए ॾिसो, या इलाज कराइण खां पहिरीं तव्हां चेकअप पंहिंजो कराए ॾिसो, दिलि मुतमैन थी वञे त डॉक्टर साहिब खां इलाज करायो, या कोई तकलीफ़ आहे जंहिंमें डॉक्टर साहिबान ऑपरेशन जो चयो आहे त ऑपरेशन कराइण खां पहिरीं बि हिकु दफ़ा डॉक्टर साहिब सां मशवरो कयो, थी सघे थो तव्हांखे जेको ऑपरेशन जो चयो वियो आहे त उहो तव्हांजो दवाउनि वसीले हल मसलो थी वञे। समिन, अवां ॿुधो पिया जीअं सक्रे नवाब शाह एफ एम 90.8 जे लाइ स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां गॾु। वधीक डॉक्टर साहब तरफ़ हलूं था, उहे असांखे मालूमात ॾींदा। जी डॉक्टर साहब,
0: जी बिल्कुल प्रोग्राम अजो को प्रोग्राम जो नालो है असो सेहत जो राज होम्योपैथिक सा होम्योपैथिक सा इन प्रोग्राम जो नालो अस इन कर मटाया तो उनमें वजह यह है सेहत जो राज होम्योपैथिक सा जो होम्योपैथिक इलाज अस मौजूद है उन्हीं दवाओं से उन ट्रीटमेंट से अवान जो सेहत जो है वह सही थी सके अवान की सेहत खुशहाल थी सके उन बारे में अस ये टॉपिक प्रोग्राम जो नालो रखो है इनमें कोई एतरी दिलचस्पी कान्ने का वजह चाहे तो होम्योपैथिक के बारे में अवे खबर पे इन करे प्रोग्राम में होम्योपैथिक जरूर अस रखो है अज अस प्रोग्राम में जो कुछ शूं टॉपिक के बारे में हुई अवसर शेयर करें कुछ गालू हुई वह रिसीव कर उन सवाल जवाब जरूर दिनासी उनका अलावा असि कोशिश रही है प्रोग्राम में अवजा मशवरा जो हूँ तो वह घने में घना मशवरा थन तो जैसा अवजा कुछ मसला अड़ा हूँ जैमें अस परेशान थी वादा क्योंकि बीमारी अड़ी तकलीफ है जो मर्ज़ अड़ो तकलीफ है तो जो हर मानू के किराए वो उनकी वजह छा है अस इन शे बारे में एतरी जान न होंगी एतरी खबर न होंगी यार हाँ कड़े डॉक्टर वो अड़े पाड़े में गोठ में तो मालूम वो या कैदे वो करो या कड़ो डॉक्टर सुनो बुधा कि डॉक्टर वो वनूँ था ट्रीटमेंट कराऊँ था सभी का पे टेस्टों रिपोर्ट जहाँ सज लिस्ट लकल होंगी उन बाद में कोई दवा दारू मिली है तो मूँ गोठ मोटी तो उन्हें मैं हर वाले एडवाइस क्या तो ऐसो डॉक्टर के बारे में मालूम वी तो उन सिंपल आसान तरीक़ेकार यो है अवं ऐसो अवे तकलीफ छा थे पी मिसाल तौर से मैं नंढी नंढी मिसालू दई डॉक्टर के बारे में बुधाई हल्ला तो जैसा अवे जल्दी में या कुछ शोस जहन में अची पन जेदी मल ऐसो का फालिश थे तो या अवं फालिश थी साजो पासो खाओ पासो फेस जो थी या दिमाग थी छाती में सूर थे तकलीफ थे पीड़ी बी गाल मेन जहन में रखो लाजमी रखो उनमें इन बीमारी में इंतजार कर जरूरत कान्ने का खाबो हथ सुन थे पो हेट जंगुर नंढड़ी अंग चीच उन गड़वारी हि बई शुन थे पो आस्ते आस्ते जो सूर है वो अस छाती तरफ अचे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दिल वे डॉक्टर वो वनो है या दिल की वालन जो मसलो थे पो इन तकलीफ थे पे तो दिल वे डॉक्टर वो वनो कें भी डॉक्टर वो ना वनो फालिज वो अटैक थे तो जब तुम दिल वे डॉक्टर वही सो तो ब्लड प्रेशर थे तो उन बाद में यह तकलीफ थे थी बाकी जो दिमाग से मसला दिमाग से रिलेटेड को बीमारी है जी निंड तो न अचन या सोच गंदी परेशानी तमाम घनी थी वन या दिमागी कमजोर थी वन तब तुम दिमाग वे डॉक्टर वो रबो कर सोलावा जैम अस खघ जारो घो टीबी वाले केस है तो अस टीबी वो डॉक्टर गोल्दा को आम डॉक्टर से गोल्दे साई है तो साई वो डॉक्टर अच्छा मायदो जिगर शुगर यह टे डॉक्टर लगे तो इलाज कह मन यह टीन बीमारी जो डॉक्टर मौजूद हों या जिगर हो मसलो हो तबू इलाज कह मायदे जो तब इलाज कह शुगर हो तब ही सागो डॉक्टर इलाज कर सके तो गुर्दन की का भी तकलीफ है पथरी आ किचरो आ जख्म आ पेशाब में जलन है साड़ो आ तो उन गुर्दे वो डॉक्टर वट वनो है तब परेशान न थो यह शो मुझे जहन में रखी अवं हड में धक लगो तो हड वाले डॉक्टर वो वनो तो यह शूं जहन में होंद का भी अड़े मिसाल तौर यहाँ इमरजेंसी कदें भी कें भी केल थी उन टाइम तो जहन में यह शूं जरूर होंद तो अस जल्दी से डॉक्टर वट पोची पाँच पान के जो इन बीमारी के पाँच पेशेंट के मरीज के घनी तकलीफन का वजन का बेहतर जल्दी से डॉक्टर वट पुजी इन इलाज करो वर्ड है जनरल फिजिशन यहाँ जो वर्ड है जनरल फिजिशन या फैमिली फिजिशन फैमिली कंसल्टेंट यहाँ जो वर्ड है इन वर्ड के तुम जहन में रखा तो यह वर्ड जै भी डॉक्टर वट लिखल होंद ऑपरेशन का अलावा सब बीमारी जो इलाज कर सो ऑपरेशन न तो कर सके सिर्फ बीमारी जो इलाज कर सो जैमें खंघ बुखार पेट में सूर थी छाती जो मसला थी मादे जो मसला थी जिगर जहाँ गुर्दन की पथरियन जहाँ सभी जो इलाज कर सके तो ऑपरेशन कें भी बीमारी जो न तो कर सके जैमें असा में लिखो वो अस हर डॉक्टर में जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हूँ उनमें लिखल हूँ जनरल फिजिशियन इन मतलब है तो हि को भी किस्म जो ऑपरेशन न था कर सकन या कानूनी तरफा अस इजाजत कान्ने का जनरल फिजिशियन जो मतलब यो है हाँ असा वो अची सो ऑपरेशन की नीयत से असा वो ना अची सो सिर्फ इन ला अची सो सके अवं पेशेंट वट एतरी मोहलत हुए तो एक बड़ी दवाओं से हली सके तो असा उन पेशेंट के ऑपरेशन का बचाए सकूँ था ऑपरेशन का बचाने जो मकसद यो थी तो यह गाल करन लाए तो मां वहां के क्लियर गाल पेरी करें तो जैसा वहां इन शे के जहन में रखी सको कुछ केस अड़ा हों जो ऑपरेशन ताणी जी कंडीशन न होंगी खास कर ऑपरेशन वाली कंडीशन थी अपेंडिक्स में अपेंडिक्स का मतलब ये नंढड़ी आंत है जो असें पेट में मौजूद होंगी उनको कम किरदार कुछ भी न होंगे असानी जिंदगी में असानी सेहत में का किरदार न होंगे केदी मल उनमें बैक्टीरिया जरासीम अची वन तो वह सुजी वी है जी का फोकणो है उनके फुलराइन तो वो उनमें जेडी मल वह फाटन जहाँ चांस इंदा तो ओडी मल उन सूर है पेशेंट के लाजमी सूर थोड़ा पेट के विच हिस्से में आर पार सूर उन टाइम से अस होम्योपैथिक वा डॉक्टर सिर्फ ब टे फोड़ा प्यारे ऐसी सकूँ था इनमें सूर में कुछ बेहतरी थी सके पी तो असिक ट्रीटमेंट इलाज कर सकूँ था न तो यह ऑपरेशन का बगैर हल नी गुर्दे में पथरी है तो उनमें भी असि होम्योपैथिक वा डॉक्टर कहता तो अल्ट्रासाउंड कराइंदा खास कर गुर्दन जो बाकी शो अल्ट्रासाउंड न कराइंदा पथरी केतरी वी साइज चाहे पथरी गुर्दे में कड़ी जगह से पई है और उनके अलावा पथरी जो निकलन जो चांस है या ना ये सब शूं अल्ट्रासाउंड में जाहिर थी पवंद उन टाइम से अस पेशेंट की कंडीशन भी दिखा तो ये अड़े किस्म जो पेशेंट है जो मेडिसन से दवाओं से अस पथरी कदूँ तो इनके नुकसान न थे तो अस उनके गुर्दे की पथरी जो ट्रीटमेंट कर छा उनमें अस होम्योपैथिक जहाँ ड्रॉप्स हों होम्योपैथिक जर्मन जहाँ खास कर ड्रॉप्स हों तो वह अस पेशेंट के दींदा जैसा पथरी सनी सनी रजन में टुकड़न में थी वी वह पेशेंट के चवंदा तो अव पानी जूस कमल जो रस कच्ची लस्सी लीमे जो शरबत ये इस्तेमाल कर जैसा अव के पेशाब जो यूरिन है डी में टे चार पांच दफा अचे तो पेशाब से वो रस्ते से बाहर अची पे और अन्य में असाजा होम्योपैथिक कहन तो पैर अल्ट्रासाउंड करा घट में घट 15 डी मेडिसन हल्दा वरी अल्ट्रासाउंड कराइंदा उनमें नोट कहन तो पैर पथरी जो साइज चाहो बाद में चाहो जो ऐसा तो इनमें बेहतरी अचे भी साइज नंढो थे पो या एकड़े का बी व्यूं तो उनमें अस होम्योपैथिक वा इलाज कहूँ छो तो सारी गल अस तोड़न की दवा दूँ पा वो बिन हिस्सों में थी वही तो नंढी थी वही नंढी थी वही तो वाणे पेशाब के रस्ते से निकली वी ये होम्योपैथिक तरीके का इलाज होम्योपैथिक कामयाब इलाज करे पी पथरी में भी इलाज करे पी गुर्दे में पथरी हुए मसाने पथरी के कामयाब इलाज करे पी चिटे में जो पथरी है उन्हें भी कामयाब इलाज करे पी उन भी तरीकेकार है उनके नंढड़े हिस्सों में डिवाइड करे जो नाली है जो खादे वाली नाली में आंडर में अचे पी पिते में नाली निकली आंडर में अचे पी जो इनमें एसिड हों तेजाब हों खादे पिते हजम कर होंगे कुदरत की तरफा तो उन्हें जो रस्ते से वो तेजाब हों उन रस्ते से यह पथरी बाहर निकलती है निकली आंडर में वी वॉशरूम में निकली है। अच्छा ये बी गाल जहन में रखो तो कुछ डॉक्टर चवंदा तो होम्योपैथिक में यह फ्रॉड है पर अस उनके चवंदा तो असें यह बुधा तो यह पथरी आई किथां पहरी गाल पथरी आई किथा पिते में पथरी आई किथा पिते में नकाश वन की इजाजत ही कान्ने का कुदरत की तरफा उनमें जो पानी पियो है उही उनमें पानी कुदरत की तरफा जिगर के वसीले से उनमें जमा है खादे पीते में जिस मेल अस मानी खाईंदा तो वह पानी उनमें निकली मायदे में आंडर में इन है तो खाधो हजम है जिस मेल उतना निकरण जो चांस है अचन जो चांस को तो पथरी इंदी किथा पथरी चाहे तो जिस मेल असो फैटी लीवर वा केस जिगर के मथा चर्बी वा सीन पवंदा तो इन मेल यहाँ जो वाटर है जो बाइल है जो डक है जो सफरा है जो तेजाब है जो पानी है इतने मौजूद है वह जमन शुरू थी पवन इन्हें चवंदा पत्थरियों यहाँ खास कर भुगड़ा खाईंदा अड़े कलर की होंद एतरी वडियो थी वो कें होंगी कें मल्टीपल मन घड़ी थी वन जिस मेल अस ऑपरेशन कराइंदा तो उनमें अस पिते बिन हिस्सों में टांका लगाना बिन जगह टांका लगाना विच में कट कर जो पिते के बाहर कड़ा पिते के खोलींदा तो एतरी सारी पत्थरियों भुगड़ा निकली भुगड़े वागुर होंद कलर भी अड़ो हों डिज़ाइन भी अड़ो हों जो पा भुगड़ा खाईंदा अड़े किस्म की होंगे लाइव डिठियम तस्वीर पन उनके अलावा पिते में पथरी जो भी अच्छा मैदे में अल्सर भी है जख्म भी है तो उनको भी होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है उनमें भी परेशान थे का जरूरत को ऐसा कुदरती इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज थे तो उनमें को भी साइड इफेक्ट को असल में होम्योपैथिक कहती है अंदर जिसम में मौजूद ताकत कुवत मदाफत कुवत हयात वाइटल फोर्स जो है अल्लाह की तरफा असा मिलल है उन्हें ताकत दी उन्हें स्ट्रॉन्ग कहती तो पान ही उन बीमारी का फाइट कर बिल्कुल जरे से खत्म कर छे जी मेल असि वाइटल फोर्स कमजोर थी तो आस्ते आस्ते जिसम में मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ जरासीम वायरस अटैक कहान उन जिसम में मुख्तलिफ़ बीमारियों पैदा थन्दूँ उन पैदा थियण से अलामतू ज़ाहिर थन्दू निशानियों ज़ाहिर थन्दू जै निशानियों के अस होम्योपैथिक वा समझी वो वेंदा इन पंहिंजे मर्ज़ ते पहुचण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं उन में पेशेंट सां असां जंहिंमहिल आम्हूं साम्हूं वेंदा आहियूं त ईअं असांजा ईअं ई क्वेश्चन थींदा जीअं मां अवां सां ईअं रेफन ते ॻाल्हायां पियो ईअं असांजा सुवाल जवाबु थींदा ॿियो असां वटि को अहिड़ो का ख़ासि तजुर्बे वारी जेके चवंदा आहिनि बाबा हीउ पेशेंट खे सुम्हारियो अल्ट्रासाउंड कराई इहा बाबा इहा शयूं असां वटि कोन्हनि सिंपल सिधो तरीक़ेकार जेको असल तरीक़ेकार आहे पुराणनि जे दौरनि जो तरीक़ेकार आहे उन तरीक़ेकार सां इलाजु चेकअप असांजो वटि थींदो आहे बाक़ी घणा अगरि पेशेंट चवंदा आहिनि असांखे जदीद मशीन सां चेकअप कराइण त उहा हिननि जे लाइ अलॻि रस्तो आहे उहा जदीद मशीन सां चेकअप कराईंदा आहिनि पर जेको आम चेकअप आहे उन में ई ख़ूब शयूं ज़ाहिर थी पवंदियूं आहिनि छो त असां वटि हिकिड़ी अलॻि किताबु ठहियलु हूंदी आहे जंहिंमें बीमारी लिखियल आहे उन जा गॾु अलॻि अलॻि तकलीफ़ूं मिसाल मैदो आहे त मैदे में कहिड़ी कहिड़ी तकलीफ़ थींदियूं उन में छा छा निशानियूं थींदियूं उन निशानी मुताबिक़ कहिड़ी कहिड़ी दवाऊं थींदियूं ऐं सॼी असांजो चैप्टर ठहियलु आहिनि उहा चैप्टर असां यादि करे पोइ पेशेंट सां असां क्वेश्चन आंसर कंदा आहियूं जंहिंसां असांखे सम्झ में ईंदो आहे त पेशेंट सां इहो मसइलो थी चुको आहे ठीकु आहे हिन खे कयो साइड में अॻ में छा हो अॻ में छा तकलीफ़ थी इहा बीमारी आई छो इन सभिनी शयुनि खे नोट कंदा आहियूं उन खां बाद में इहा शो कंदा आहियूं त हाणे जिस्म में जीअं मादे जो मसइलो आहे त मैदे खे केतिरो नुक़सानु थी चुको आहे उन शइ खे बि नोट कंदा आहियूं पोइ उन खां बाद में हिकु मुकमल ट्रीटमेंट असां पेशेंट खे ठाहे ॾींदा आहियूं जंहिंमें असां पेशेंट चवंदा फ़िलहालु अवां छह ॾींहं जी मेडिसन इस्तेमालु कयो असांजो जेका छह ॾींहं जो जेको कोर्स हूंदो आहे पहिरियों कोर्स उन में असांजी कोशिशि इहा रहंदी आहे त ॾिसो कुझु असांजा ॻोठ वारा हूंदा आहिनि उहा सलाह मशवरो ॾींदा आहिनि त इहा दवा खाओ इहा दवा खाओ इन सां फ़ाइदो थींदो त इहा दवाऊं जो हूंदा आहिनि कुझु पंहिंजी पतियूं ठाहींदा आहिनि कुझु जीअं हू छा थिए वरी ॻाल्हि वरी यादि अची उहो निम जी निमोणियूं खाए पियो तक़रीबन 10-12 सालनि खां असांजो हाणे बसकर एतिरी खाधियूं आहिनि त पोइ हाणे वरी बि खाई पियो त उन लाइ बसि इन शइ ते असां थोरो उहो आहे तेज़ थी वियो आहे मुंहिंजो बाबा मां ॻाल्हाईंदुसि तव्हां चवंदो डॉक्टर विड़े पियो डॉक्टर विड़े पियो मां उन टाइम ते केतिरी ॻाल्हियूं कई कोन सिर्फ़ु इहो जुमिलो मूं ज़रूरु चयो त उन शइ ते वरी साॻी ॻाल्हि अची वई त उन निमोड़ियुनि खां मां हुनखे चवां बसकर इहा शयूं तव्हांजे लाइ एतिरी खाइणु सुठी कान्हे कान तव्हां एतिरी शयूं न खाओ दवा सां आस्ते आस्ते अलहमदिल्ला तव्हांजा पेर माशाल्लाह बहितर थी चुका आहिनि तव्हां पाण ॾिसो पिया अॻियां खां तव्हांजा पेर कीअं भला थी विया आहिनि ऐं तव्हांजा मसला ख़तमु थियनि पिया त इन खे कुझु वक़्तु इलाजु हलाए ख़तमु कयो निमोड़ियुनि खे तव्हां बसि कयो नथा वञनि त अलाह उन्हनि खे ख़ुशि रखे ट्रीटमेंट जेको डॉक्टर करे पियो उहा सम्झी करे पियो असांजो जेको छह ॾींहं जो आहे त हुन में सभु इहा असरात दवाउनि जा फकियुनि जा बराड़ी जा टोटका वारा हूंदा आहिनि उन्हनि सभिनी शयुनि खे असां साफ़ु करे छॾंदा माना पेट इहे सम्झो असां धोए साफ़ु करे छॾंदा उन खां बाद में ॾिसंदा आहियूं त इन खां मसइलो छा हो ऐं ख़ासि करे असांजे पेशेंट खां जीअं अॼु बि हिकिड़ी कॉल आई त हुन चयो मूंखे मादे जी दवा वठी वियो मूंखे खंघु थी बुखार थी इहे शयूं मां पेशेंट खे बि सम्झाईंदो आहियां हिन छह ॾींहंनि में ज़रूरु हिकिड़ी शइ यादि कजो तव्हां ई कान का तकलीफ़ बीमारी ज़ाहिरु थींदी निकरंदी आहे जिस्म में उन शइ खे ज़रूरु यादि रखिजे उन सां फ़ाइदो थींदो आहे त असां जेका दवाऊं करे करे बीमारियुनि खे मसलनि खे दॿाए छॾंदा आहियूं त असां उनखे कढंदा आहियूं ॿाहिरि निकर पुटु शाबाशी उनखे असां कढंदा आहियूं त जंहिंसां ख़बर पए त इहा असल बीमारी हुई उन खां बाद में हीअ हीअ शयूं शुरू थी वियूं माना कहाणी हितां शुरू थी वई इन खे पकिड़णो आहे माना पुराणो जेको वेठो आहे हमरा जेको जहिड़ो करे पियो त उहो इहो अथसि इन खे वठो त असां इन लाइ दवा ॾींदा आहियूं छह ॾींहं जी त हुन में इहा शइ ज़ाहिर थींदी आहे पोइ असां ट्रीटमेंट शुरू कंदा आहियूं पोइ हिकिड़े कोर्स ॿिनि कोर्स टिनि कोर्स में अलहमदिल्ला तयारु थी वेंदा आहिनि कंहिंजा पुराणा केस थींदा आहिनि क्रॉनिक केस थींदा आहिनि त उनखे कुझु वक़्तु लॻी पवंदो आहे पर अलहमदिल्ला होम्योपैथिक दवाउनि सां एतिरा का बि कहिड़ा मसला कोन्हनि जेके इन दवा सां तयारु न थिया हुजनि पर छाहे त कुझु वक़्तु ज़रूरु लॻे थो पुराणी बीमारियुनि में नई बीमारी में एतिरो वक़्तु नथो लॻे
1: डॉक्टर साहिबु तव्हांजो पैगाम छा हूंदो असांजे सामान जे लाइ
0: बिल्कुलु प्रोग्राम जो आख़िरी सौ 5 मिंट बचिया आहिनि त पोइ मतिलबु की 9 बजे असांजो प्रोग्राम थी वेंदो ख़तमु त 8 खां 9 असांजो प्रोग्राम हो जंहिंमें असां अवां सां गॾु हुआसीं प्रोग्राम में सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां गॾु त उन में असांजी कोशिशि रही अवांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे जेका अचण वारी बीमारियूं आहिनि मौसम जे हिसाब सां उनजे बारे में एहतियात परहेज़ जे बारे में सम्झाइण जी कोशिशि कयूं था इतफ़ाक़ सां माण्हू को निकिरी अची सघे थो त उन में छा करिणो आहे पंहिंजी सिहत खे बचाइणो आहे तंदुरुस्ती आहे त हज़ार नेमत आहे न आहे त हिकिड़ी का बि शइ कान्हे का सिहत आहे त हर शइ आहे सिहत न आहे त का शइ कोन्हे को सिहत आहे त तव्हां जबल वांगुरु पहाड़ सख़्तु आहियो जी शइ तव्हां वटि सिहत कान्हे त पाणी वांगुरु रूड़ी हलिया वेंदव त इन जे लाइ अव्हांजी पंहिंजी सिहत जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगीअ जे लाइ ज़रूरु ख़र्चु कंदा कयो उन सां अव्हांजी सिहत सही हूंदी त तव्हां उन ख़र्च खे विञाईंदव कोन इनशाला तव्हां उहा शइ वापसि रिकवर करे वेंदव ठाहे वेंदव केॾीमहिल अव्हांजी सिहत ठीकु न हूंदी तव्हां का बि शइ करे वेंदव खाली हथु वेंदव का शइ कोन करे सघंदव का पंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशियूं ग़मनि में शामिलु थी सघो था त पंहिंजे पाण खे बीमार थी शामिलु करे सघो था केतिरो दुखु थिए थो कंहिंजे घर वञूं त पंहिंजे कुल्हे ते हिकिड़ो बैग हुजे जंहिंमें कपिड़ा हुजनि ॿियो बैग हुजे जंहिंमें दवाऊं हुजनि इहा शइ तव्हां पाण सोचियो त इहा शइ तव्हांजे लाइ बहितरु कान्हे का ज़ाहिरी गल घर आयो बीमार हो तो मू एग्जाम न कर पान के ठाए कर सके तो बेन जगह से वही बी जगह से वही बीमारी के बारे में सोचूँ तो तोचो तो परेशान थी यार मेहमान आयो उनकी तबियत खराब थी वही रो कुछ मसलो न थी परेशानी है ना इन्हें का बचण के लिए अव पानी जहाँ बीमारी आम बीमारी तक जहन में अचन थी मथे में सूर आ तो ज़ाहिरी गल मथे में सूर ये नो कहाँ वजह थी तो मायदो खराब थे कहाँ वजह थी मायदो खराब थी गोड़न में सूर थे कम कार के पर थकी था पो तो उनका वजह है ना तदन ता थको पा उन्हें जहाँ होम्योपैथिक तरीके से इलाज करा अलहमदुल्ला खोड़ अड़ी बीमारी जो इलाज अलहमदुल्ला कामयाब इलाज असि क्लिनिक थी चुका जैमें अव परेशान थे जरूरत कान सिर्फ फर्क यो है तो अस इलाज है होम्योपैथिक अस गोरियों दवाओं अस उन इलाज कह अस सुई ड्रिप थैलियन जो कम ना असि उन शे नए तो इन ला तुम सोचो था दवा में फायदो थो अल नो चक्कर अच्छी दवा वी खाए ऐसो इनशाला पा चवन यार ये शे बेहतर आसम में पा महसूस कराए पे तो हाँ ठीक आया मुख्य सुई लगने का बगैर ही तैयार थियाँ तो इन ला अव होम्योपैथी जो इलाज जरूर करा इनशाला अव खुशी मिली गम न मिल सामिन प्रोग्राम जो टाइम खत्म पे प्रोग्राम दाणी मुख्य दियो इजाजत अल्लाह ने के पास
1: जी सामिन मूसा गड सकरन जा मशहूरे मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह से वापस आए डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर माथे जी अल्सर मादे जलन तिली जो वधन जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन के इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन तोड़े औरतन में वजन जो न वधन इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वे तो डॉक्टर साहब मर्दन तोड़े औरतन के पोछीदा अमराज जब भी माहिर अमराज है डॉक्टर साहब रोजाना सुबह 9 का शाम 5 बजे तक सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेरापुर रोड नर्थ बाईपास सकरन में मरीजन जो इलाज कंदा है जुम्मो मोकल कंदा है हर छंछर आचर के बगैर फीस के चेकअप के वो है नोट से दवा स्टोर तो वी पवी है डॉक्टर साहब जो मालूमती नंबर 0827984789846 सामिन वक्त जो एहसास प्रोग्राम सेहत की गाल जो भी वक्त हो जाए तो पैसे पुजानी थे जैसे भी तौलायत खड़ो पैंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगानी की दुआओं में जरूर याद रखो जिंदगी अगर साथ दिनों बे प्रोग्राम में होंदस अव सी मुख्य दींदा इजाजत सदाई गड अलावा ही अलन गेबान जेडा पेर तेरा खैरो खैर।

0: ख़ात्मे ऐं कंहिं हतमी मुआदे ते पहुचण लाइ अमरीका खे पंहिंजी तजवीज़नि ते ईरानी जवाब जो इंतज़ार। ईरानी क़यादत अञा को वाज़े फ़ैसिलो न करे सघी। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अॼु ईरान जो जवाब मिलणु घुर्जे। हा जवाब नाहे मिलियो। उमीद आहे त ईरान संजीदा ॻाल्हियुनि तरफ़ वधंदो। गुज़िरियल राति ईरान ते कयल हमला ऑपरेशन एपेक फ्यूरी जो हिसो न हुआ। असां ते मिज़ाइल फायर कया वेंदा त जवाब ज़रूर ॾींदासीं। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान अमरीकी तजवीज़नि ते ग़ौर करे रहियो आहे। कंहिं हतमी नतीजे ते पहुचंदासीं त हुनजो ऐलान कंदासीं।
1: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Yes, could you give us an update on what is the latest in those talks?
1: No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: झड़पनि ऐं हमलनि बावजूदि ईरान सां जंगबंदी बरक़रार आहे। तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मुआहिदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी बेड़ा अपनाए हुर्मुज़ पार करे विया आहिनि। जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो। ट्रंप जी हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण। सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो।

0: leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
1: ईरान परडे वजीर अब्बास राखी चयो आहे त जॾहिं को सिपारती हल मेज ते ईंदो आहे त अमरीका गैर ज़िमेवारो मिलिट्री एडवेंचर करे छॾींदो आहे को बि सबबु हुजे पर नतीजो हिकु ई हूंदो त ईरान कंहिं बि सूरत दबाउ अॻियां न झुकंदो CIA असांजी मिज़ाइल सलाहियतनि जो ग़लति अंदाज़ो लॻायो असांजी मिज़ाइल पैदावारी सलाहियत 28 फरवरी जी भेट में 75 नंबर 120 सैकड़ो वधीक आहे ईरानी अवाम जे दिफ़ा लाइ असांजी तयारी 1000 सैकड़ो आहे

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: सोना साईं, कुछ खबर अथव?
3: छा थियो आहे सोणी?
2: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
3: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरीअ जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओ करे छॾींदा।
2: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
3: न न सोणी, कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि।
2: पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञी बैटरी ठाराए अचो।
3: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो। असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे। कराची बैटरी सर्विस, एड्रेस मोहनी बाज़ार, झूलेलाल बिरयानी, नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल, सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी, नवाबशाह। मोबाइल नंबर 03018457919।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 03279984763।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो जी FM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरणमी मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर से हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे. होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबुह 9 AM का शाम 5 AM तई बरोज जुम्मो मोकल आहे. एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण. मशोरे जे लाए 0327-99-84-763.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

जंग जे खात्मे के हतमी माहिदे ते पहुंचण लाए अमेरिका के पेंजी तजवीजुन ते ईरानी जवाब जो इंतजार ईरानी क्यादत या को वाजे फैसलो न करे सकी अमेरिकी परडे वजीर मार्को रूबियो चया है त आज ईरान जो जवाब मिलन घुरजे हा पर हन वक्त ताई को भी जवाब नाहे मिलियो उम्मीद आए त ईरान संजीदा गालिन तरफ वदंदो गुजल रात ईरान ते कल हमला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो हिस्सो न हुआ असा ते मिसाइल फायर कया विंदा त जवाब ईरानी परडेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान अमरीकी तजवीजन ते गौर करे रहियो आहे कि हतमी नतीजे ते पहुचंदासीं त उन जो ऐलान कंदासीं।

0: Massachusetts. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: सोना साई कुछ खबर अथव
4: छा थियो आहे सोणी
3: बिंडियन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कडे आणींदा
4: सोणी इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोन्हे पंहिंजी पुराणी बैटरी कराची बैटरी सर्विस वारन डां अॼु ई खणी पियो वञा उहे अधु कीमत में पुराणी बैटरी में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरी खे सफ़ा नओं करे छॾींदा
3: साई पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी
4: न न सोणी कराची बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि
3: वाह वाह पोइ साईं जल्दी करियो हाणी वञी बैटरी ठाराए अचो
4: कराची बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए नओं बणायो असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरीअ जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे कराची बैटरी सर्विस एड्रेस मोहनी बाज़ार झूलेलाल बिरयानी नज़्द मुस्लिम हाई स्कूल सिटी गेस्ट हाउस वारी घिटी नवाबशाह मोबाइल नंबर 03018457919
5: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 03